मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हर दिन अपने आप में बहुत खास होता है हमारे लिए। प्रत्येक दिन नई ऊर्जाएं, नई संभावनाएं, नया बहुत कुछ लेकर आते हैं। इसीलिए इस प्यारी सी सुबह को सोकर ना गवाएं। हमारे श्रोताओं, आप सभी उठिए, जागिए, आंखें खोलिए और देखिए कि आज का ये दिन आपके लिए क्या क्या नया और संभावित लेकर आया है। आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उत्साह को भरने के लिए तो उठिए, मुस्कुराकर स्वागत कीजिए इस बहुत ही उम्दा और खूबसूरत सी सुबह का। और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ, जुड़े रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज आपके साथ हूँ मैं नंदिनी मिश्रा। स्वीकार कीजिए नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह की 6 बजने वाले हैं, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

0: ओम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्ते लखनऊ, और आज नमस्ते लखनऊ में आपके साथ हूं मैं नंदिनी मिश्रा। और जैसे कि आप जानते हैं, नमस्ते लखनऊ में हम सबसे पहले आरंभ करते हैं समाचारों के बाद कृषि से जुड़ी बातों की। तो आज की कृषि चर्चा का विषय है मक्का की उन्नत खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
3: शुभ प्रभात। मक्का का विश्व खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा और अपने देश में तीसरा स्थान है। खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का अपने उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। इसका प्रयोग दाना, पशुओं के आहार, चारा के साथ साथ भुट्टा के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मक्के का प्रयोग विविध तरीके से किया जाता है, जैसे मांड, शराब, एसिटिक और फिर लैक्टिक के साथ साथ रेयान, कागज, गोंद, रंग, कृत्रिम रबर, जूते का पॉलिश, कई तरह से उत्पाद तैयार किए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी व्यापक मांग को देखते हुए, इसके महत्व को समझते हुए हमें खेती के लिए अभी सन्नद्ध हो जाना है, कारण कि मक्का की खेती खरीफ मौसम में बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए 25 मई से पूरा जून तक का समय होता है, जब तक कि बरसात अच्छी खासी होनी न शुरू हो जाए। वैसे तो यह कहा जाता है कि 25 जून तक किया जाता है, काफी कुछ निर्भर करता है कि बरसात कितना आगे हो रही है या पीछे जा रही है। ऐसी स्थिति में मक्का की खेती जब हम करने के लिए तैयार हैं, तो इसकी जो देशी जाति है उसको भुट्टा के लिए उत्पादन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। इनकी जो जातियां हैं वह बेहतर रहेंगी तो आपको इससे आय भी अच्छी होगी। मेरठ पीली और जौनपुरी सफेद, ये देशी मक्का में दो प्रचलित हैं और आज भी इनकी मांग है भुट्टा के रूप में। विशेषकर संकर मक्का में गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, प्रकाश, डक्कन 107 और शक्तिमान 2 ये अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। इसके लिए हमें जरूर इसके बीज अपनाने चाहिए। हाँ, पिछले वर्ष के जो बीज रखे हुए हैं उसका प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इन जातियों के बीज हर साल बदल देने चाहिए, नए लाने चाहिए। संकुल जो मक्का है उसमें तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता, D756, सूर्या, अमर, आजाद, उत्तम, नवज्योति, माही, कंचन, प्रभात और शक्ति 1, न जाने ऐसी कितनी किस्में हैं जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित हैं और ये संकुल श्रेणी में आती हैं, जो बेहतर उत्पादन देती हैं। थोड़ी सी देखरेख कर दी जाए तो बेहतर उत्पादन मिलता है। संकर की अपेक्षा। संकुल मक्का का बीज 3 से 4 वर्ष तक

स्वयं तैयार कर सकते हैं, यानी पिछले वर्ष का आपने रखा है तो उसे भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 3 से 4 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बीज की जो मात्रा प्रयोग की जाती है इसकी बुआई के लिए वह है संकर में 18 से 20 किलोग्राम और संकुल में 20 से 25 किलोग्राम। हाँ, बीज शोधन भी करना जरूरी होता है। 3 ग्राम थायरम व 1 ग्राम बावेस्टीन या फिर 3 ग्राम स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस व 1 ग्राम कार्बनडेजिम, इनका प्रयोग करें तो बेहतर स्थिति होगी। पौधों से पौधों की दूरी विशेष मायने रखती है मक्का में। आजकल हल के पीछे कोणों में बोने की प्रथा तो समाप्ति ही हो गई है, कल्टीवेटर से छिड़काव विधि से इसे किया जाता है। तो कोशिश पहले ये होती थी कि हल के पीछे कोणों में या सीट कम्फर्टी ड्रिल आप प्रयोग कर रहे हैं तो 60x20 से 25 सेंटीमीटर और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी होती है। छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो वह तो है ही, बाद में विरलीकरण करना होगा। तो विरलीकरण के लिए आप ये मान करके चलें कि 60x25 सेंटीमीटर की दूरी उसकी रहे, वह बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगी। हाँ, इसी में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होता है। जैविक खाद जो डालेंगे यानी गोबर की या कंपोस्ट की खाद डालेंगे वो तो आप डालें ही डालें, लेकिन बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 37 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, या फिर 87 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम एसएसपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। टॉप ड्रेसिंग बाद में की जाती है, उसको तो अलग से करना ही होता है। जो मात्रा बचाई जाती है 87 किलोग्राम यूरिया पौधों के घुटने तक की ऊंचाई होने पर बुआई के 30 से 35 दिन बाद करनी होती है, और द्वितीय टॉप ड्रेसिंग जो होती है 87 किलोग्राम यूरिया की वो नरमंजरी निकलने के समय 50 से 55 दिनों पर होती है। तो ये तो स्थिति रही है कि उसकी इस तरह से हम करते हैं और समझते भी हैं कि इसी के आधार पर बेहतर उत्पादन की स्थिति बनेगी। समय समय पर सिंचाई का भी ध्यान रखना होगा जिसे

0: तो कृषि चर्चा में श्रोताओं, आज आपने जाना मक्का की उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। और इसी के साथ अब नमस्ते लखनऊ में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का सुविचार, जिसमें आज का विषय है सकारात्मक सोच। स्वर एवं आलेख डॉक्टर रश्मि खंडेलवाल का।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना उसको अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी के ये बोल बहुत खूबसूरत हैं। अगर गौर से इन्हें सुने तो हमें एक ही बात समझ में आती है, सकारात्मक सोच हर मुश्किलों से लड़ने का हौसला देती है। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास से कुछ कर गुजरने का साहस पैदा होता है और इसी साहस से व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को सुलझा सकता है। सकारात्मक सोच एक जादू की तरह है, जो खुद को तो फायदा पहुंचाता ही है, अपने आसपास के लोगों पर भी अच्छा असर डालता है। इसके विपरीत नकारात्मक विचार हमारे शरीर, स्वास्थ्य, काम और रिश्ते पर भी बुरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक सोच का सही मायने में मतलब है इस बात को स्वीकार करना कि इस पल जो मेरे साथ हो रहा है यही ठीक है। सकारात्मक विचार का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने लिए अच्छा ही अच्छा सोचे और हमेशा सपनों में जिए, बल्कि इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों बुराइयों को जानते हुए खुद के प्रति आदर भाव रखना और खुद को कभी ना नकारना। जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में, हर परिस्थिति में

0: सही सोच रखना। हम इंसान हैं, हर कोई निराशा में, गम में कभी ना कभी डूबता है, लेकिन सकारात्मक सोच वाला इंसान इन सब से बाहर निकलता है और उत्साह के साथ अपनी पूरी ऊर्जा आने वाले पल को संवारने में लगा देता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हम तब खड़ी करते हैं जब अपने अंदर नकारात्मक विचार को भरना शुरू कर देते हैं। हम सबके बीच में एक छोटा सा फर्क है और वो है नजरिए का। जिंदगी 90% निर्भर करती है कि हम उसको किस नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए किसी गाड़ी की दुर्घटना हुई तो सोचने का एक तरीका ये भी है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, दिन ही खराब है, गाड़ी भी टूट गई, खर्चा हो गया। और दूसरा सोचने का तरीका ये भी है कि ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, जान तो बच गई, गाड़ी तो बन जाएगी। निराशावादी को हर अवसर में मुश्किलें दिखाई देती हैं, वहीं आशावादी को मुश्किलों में अवसर दिखाई देते हैं। खुद के लिए आशावादी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। सकारात्मक सोच जिंदगी में उतारना भी एक कला है। थोड़ी थोड़ी कोशिश करें, जैसे अपने हर काम को मेहनत से करें और टाले नहीं, कभी हिम्मत ना हारें। अपने जीवन को दुखी मन से देखने की बजाय हमेशा भगवान को धन्यवाद दें। जीवन में कुछ न कुछ सीखने का मौका ढूंढें। अपनी सारी जिंदगी सीखने के लिए उत्सुक या प्यासित रहें। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप से प्यार करें। सकारात्मक रहेंगे तो अंदर की सुंदरता चेहरे पर दिखती है। जब अच्छा काम करें तो आलोचना और बुराई से मत डरें। कोशिश करें कि आपके आसपास वाले व्यक्ति सकारात्मक सोच वाले ही हों। पर अब ये हम पर निर्भर करता है कि सकारात्मक सोच के साथ जीना है या नकारात्मक सोच के साथ।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना कि सकारात्मक सोच व्यक्ति के जीवन में उसकी उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए कितनी आवश्यक है। और आज का सुविचार प्रस्तुत कर रही थी डॉक्टर रश्मि खंडेलवाल। इसी के साथ नमस्ते लखनऊ में श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और आरंभ करते हैं आज की आराधना।

प्रभु की शरण में जाते हैं, प्रभु उनकी समस्त दुखों को अपना लेते हैं, उनके जीवन में शांति का प्रवेश अवश्य होता है।

अगर नियत अच्छी होती है तो भक्ति भी अच्छी होती है, सच्ची होती है, और एक सच्चे भक्त की पुकार ईश्वर अवश्य सुनते हैं।

उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना।

जब जीवन में समय कठिन हो, तब सबसे अधिक आवश्यक है कि ईश्वर पर विश्वास रखें। वो देरी कर सकते हैं, मगर अंधेर कभी नहीं करते। वो परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं करते। वो साथ हैं, बस ये विश्वास रखना अति अति आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की योजनाएं ही सर्वोत्तम होती है।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि अभी हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहें, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इस शुभेच्छा के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं पर संपन्न होती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब समय हो गया है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति का। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 176। इसमें आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता का चित्रकूट आगमन होता है और कुटिया बनाकर रहने का प्रसंग आता है।

चित्रकूट की महिमा का बखान कर ऋषि वाल्मीकि ने उसे सभी प्रकार से निवास के योग्य स्थान बताया। लक्ष्मण ने पयस्विनी नदी के उत्तर वाले ऊंचे कागार की ओर दृष्टिपात किया, जिसे अपने घेरे में लिए हुए धनुष के आकार का एक नाला था। मंदाकिनी नदी मानव उसकी प्रत्यंचा है और शम, तम और दान उसके बाण हैं। कलयुग के समस्त पाप ऐसे हिंसक पशु हैं, जिनका निशाना चित्रकूट रूपी शिकारी कभी नहीं चूकता। जब देवताओं को यह प्रतीति हुई कि वो मनोरम स्थान श्री राम के मन को भा गया, तो वे कोल भीलों के वेश में विश्वकर्मा सहित वहां पहुंचे और पत्तों तथा घास से वहां अत्यंत सुंदर दो कुटियों का निर्माण किया। श्री राम वहां ऐसे अवस्थित हैं मानो स्वयं कामदेव मुनि वेश धारण करके पत्नी रति तथा सखा ऋतुराज बसंत के साथ सुशोभित हैं। देवलोकवासी चित्रकूट आकर अपने स्वामी के दर्शन करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज आपने सुना इसका भाग 176। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। श्रोताओ, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब समय हो गया है संस्कृत समाचारों का, क्योंकि सुबह के 6:55 होने वाले हैं। तो आइए, संस्कृत में समाचार सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: कृतवान्। सः भारते नील अर्थव्यवस्था, नौकायान निर्माणं, हरित परिवर्तनं, पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य तंत्र ज्ञानं, महत्वपूर्णानि खनिजानि आदिभिः सह नवोद्योगादिषु प्रमुख क्षेत्रेषु नॉर्वेदेशस्य अधिक निवेशं प्रोत्साहितवान्। शिखर सम्मेलने भारतीयानां नॉर्वेदेशस्य च उद्योग विशेषाणां संस्थानांच मध्ये अनेका व्यापार संधयः हस्ताक्षरिताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ऑपरेशन सिंदूर इतीदं भारतस्य सुदृढस्य आत्मविश्वासयुक्तस्य समर्थ राष्ट्ररूपेण च परिवर्तनस्य प्रमाणम् इति वर्णितवान्। ह्यः हनोई नगरे भारतीय प्रवासिनः सम्बोधयन् श्री सिंहवर्यः दृढरूपेण अवदत् यत् यद्यपि भारतं प्रथम उपयोग निषेध नीतिं प्रति प्रतिबद्धः अस्ति, तथापि सः परमाणुभीत्या वशीभूतः न भविष्यति, तथा च शत्रोः कस्यापि दुस्साहस्य दृढतया प्रतिकारं कर्तुं सज्जः अस्ति। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य नेतृत्वे प्राप्तायाः अभूतपूर्वस्य प्रगत्याः कारणात् अन्ताराष्ट्रियस्तरे भारतस्य वर्धमानम् औन्नत्यम् उद्घाटितवान्। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन, मॉरिशस देशानां प्रतिनिधिभिः समकक्षैश्च सह उच्चस्तरीय द्विपाक्षिक मेलनं कृतवान्। जिनेवा नगरे एषा सभा अभवत्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री नड्डाः अवदत् यत् चर्चासु डिजिटल स्वास्थ्यम्, औषध निर्माणं, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्थाः, सार्वत्रिक स्वास्थ्य व्याप्तिञ्च प्रवर्धयितुं सहकार्यं सुदृढं कर्तुं केन्द्रितम् आसीदिति। न्यायाधीशेन यशवन्त वर्मणा सम्बद्धानाम् आरोपाणाम् अन्वेषणं कुर्वती न्यायाधीशान्वेषण समितिः ह्यः लोकसभायाः अध्यक्षम् ओम बिरलां प्रति संसदभवने स्वस्य प्रतिवेदनं समर्पितवती। स्वास्थ्य अधिकारिणः मन्यन्ते यत् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्ये ईबोला प्रकोपः कतिपय सप्ताह पूर्वम् आरब्धः इति। अधुना मृतानां संख्या 18.1% यावत् सम्भूय इतोपि वर्धते। सर्वकारः अन्तर्जालमाध्यमेन प्रचलितम् एतत् अभियोगं निष्कासयत् यत् मन्दिरस्य स्वर्णसञ्चयस्य विनिमयरूपेण सर्वकारः देवालयानां कृते स्वर्णबन्धपत्राणि निर्गमिष्यति इति। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इत्यस्य द फैक्ट चेक यूनिट इत्युक्ते PIB इत्यनेन उक्तं यत् एतत् प्रतिपादनं मिथ्या अस्ति इति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तायाम्। IPL इति क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलं आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं गतरात्रौ 5 पराजित्य प्ले ऑफ इति स्थानं प्राप्तवत्। चेन्नई सुपर किंग्स इत्यनेन निर्धारितस्य 81% लक्ष्यस्य अनुसरणं कुर्वता सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनेन 29 कन्दुकक्षेपणचक्रेषु एव लक्ष्यम् अतिक्रामितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। और इस समय कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में अब समय हो गया है कि हम स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बेहतरीन जानकारियां प्राप्त करें, तो आइए सुनते हैं अपने आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो न केवल आयुर्वेदिक ग्रंथों में बार बार प्रशंसित हुई है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक अमूल्य वरदान मानी जाती है। इसका नाम है शंख पुष्पी, एक सरल सी बेल जो खेतों, बगीचों और खुली जमीन में सहजता से उगती है। पर इसके गुण इतने गहरे हैं कि बड़े से बड़े भी इसे अपना विश्वास पात्र मानते हैं। शंख पुष्पी का नाम सुनते ही हमें स्मरण शक्ति, एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता से जुड़ी बातें याद आती हैं। वास्तव में ये जड़ी बूटी मस्तिष्क को पोषण देने वाली सबसे प्रमुख औषधियों में गिनी जाती है। आयुर्वेद में इसे मेद रसायन की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसी औषधि जो बुद्धि, विवेक, स्मृति और मानसिक शांति को बढ़ाती है। प्राचीन काल में विद्यार्थी इसे नियमित नियमित रूप से ग्रहण करते थे ताकि पढ़ाई में ध्यान बना रहे। और आज के युग में जब मानसिक तनाव अवसाद

0: और बेचैनी आम समस्याएं बन गई हैं, तब शंख पुष्पी की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। शंख पुष्पी एक बेलनुमा पौधा होता है जिसकी नीलापन लिए हुए फूल शंख के आकार के होते हैं, शायद इसी से इसका नाम पड़ा। ये शरीर में विशेष रूप से नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर असर करता है। यदि किसी को नींद न आने की समस्या हो, बार बार चिड़चिड़ापन होता हो या पढ़ाई के समय मन भटकता हो तो शंख पुष्पी का नियमित सेवन आश्चर्यजनक रूप से फायदेमंद हो सकता है। इसका सिरप या काढ़ा मानसिक तनाव को कम करता है, चिंता को दूर करता है और गहरी नींद लाने में मदद करता है। ये बात हम सब समझते हैं कि जब मन शांत होता है तब शरीर भी बेहतर ढंग से काम करता है और जब शरीर स्वस्थ होता है तब मन में भी स्थिरता आती है। शंख पुष्पी इस चक्र को संतुलित करने का काम करती है। ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देती है और न्यूरॉन्स की क्रियाशीलता को सुचारू बनाती है, जिससे एकाग्रता और याददाश्त दोनों में सुधार होता है। बच्चों की पढ़ाई हो या बुजुर्गों की याददाश्त की समस्या, शंख पुष्पी हर उम्र के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके सेवन से सिरदर्द, माइग्रेन और अत्यधिक तनाव से उत्पन्न शारीरिक थकावट में भी राहत मिलती है। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि शंख पुष्पी मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ दिल की धड़कनों को नियंत्रित करने, रक्तचाप को संतुलित रखने और पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहयोगी है। श्रोताओं, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि शंख पुष्पी का प्रभाव धीरे धीरे होता है, लेकिन ये गहरा और स्थायी होता है। ये कोई तात्कालिक उत्तेजक औषधि नहीं है, बल्कि ये एक रसायन है, यानी ऐसी जड़ी बूटी जो शरीर और मन दोनों को लंबी अवधि तक संतुलित रखती है। इसलिए ये आवश्यक है कि इसका सेवन नियमित रूप से नियंत्रित मात्रा में और वैद्य के परामर्श से किया जाए। आयुर्वेद में शंख पुष्पी को कभी कभी अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर दिया जाता है, जैसे कि ब्राह्मी, अश्वगंधा या वाचा, ताकि इसके प्रभाव को और भी व्यापक और गहरा किया जा सके, खासकर विद्यार्थियों के लिए, परीक्षा काल में या उन लोगों के लिए जो मानसिक कार्यों में लगे रहते हैं। ये संयोजन बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यदि हम शंख पुष्पी के पारंपरिक स्वरूप की बात करें तो ये अक्सर चूर्ण, सिरप या घृत के रूप में मिलता है। शंख पुष्पी घृत यानी घी में पकाई गई शंख पुष्पी विशेष रूप से बुद्धिवर्धक मानी गई है। इसकी कुछ बूंदें दूध के साथ लेने से दिन भर का तनाव कम होता है और रात की नींद भी गहरी होती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब ध्यान और मानसिक स्थिरता बनाए रखना कठिन होता जा रहा है, तब शंख पुष्पी जैसे विकल्प हमारे लिए प्रकृति की ओर लौटने का सहज रास्ता बन सकते हैं। ये भी गौर करने वाली बात है कि शंख पुष्पी का प्रयोग केवल औषधि के रूप में ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन के एक हिस्से के रूप में होना चाहिए। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कामकाजी लोगों में तनाव को कम करने के लिए और बुजुर्गों में स्मरण शक्ति को बनाए रखने के लिए ये एक आदर्श सहयोगी बन सकती है। लेकिन जैसे हर औषधि के साथ सावधानी जरूरी है, वैसे ही शंख पुष्पी का सेवन भी सही मात्रा और सही समय पर ही किया जाना चाहिए। श्रोताओं, अब जब आप अगली बार मानसिक तनाव या थकान महसूस करें या किसी प्रियजन को एकाग्रता में परेशानी हो तो एक बार शंख पुष्पी को याद कीजिए। ये कोई चमत्कारिक औषधि नहीं है बल्कि धीरे धीरे काम करने वाली ये एक प्राकृतिक शक्ति है जो आपके मस्तिष्क को स्पष्टता, स्थिरता और शांति प्रदान करती है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है और हम किस प्रकार से अपने इस जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जीवन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य चर्चा के बाद श्रोताओं, अब नमस्ते लखनऊ में समय हो गया है कि हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

होगा। फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद हमारे श्रोता सुन सकेंगे रात 9:30 पर। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर अब्दुल रहीम की वार्ता सुनिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर। जिले की हलचल में सुबह 9:15 पर आज सुनिएगा बस्ती और सोनभद्र जिलों के बारे में। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आज समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी रामपुर की पेशकश गुफ्तगु आकाशवाणी के 90 सुनहरे साल। शुरुआत होंगे डॉक्टर मुजाहिद फराज और परवीज खान। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आप सुन सकेंगे आज का विषय है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं मंगलवार है और मंगलवार और शनिवार को हम लेकर आते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह। समय है सुबह 7:30 पर। दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से की गई भेंट वार्ता सुनिएगा जायद फसलों में जल प्रबंध। आपसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में पुष्पा पंखुड़ी सिंह की वार्ता सुनिएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ग्रामीण धरोहर संरक्षण। किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती किसानी समय रहेगा शाम 6:50 पर। इसमें डॉक्टर लाल बहादुर यादव की से की गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। विषय होगा कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात 10:30 पर सुनिएगा ख्याल गायन। कलाकार होंगी सृष्टि माथुर। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा गुलशन भारती की गायी कुछ गजलें। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा संजोली पांडे के गाये कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज की विविधा।

मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेश और गैर भेदभाव की भावना से खेले जाने वाले खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक उत्सव विश्व निष्पक्ष खेल दिवस का शुभारंभ हुआ 19 मई सन 2025 को।

निष्पक्ष खेल प्रतियोगिताओं के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है, जिससे एक दूसरे का सम्मान

करना और आदर करना सीखने को मिलता है। ये समानता को बढ़ावा देता है, सांस्कृतिक भेदभावों को कम करता है और युवा सशक्त बनने के साथ साथ ये भी सीखते हैं कि खेल किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और मजबूत, अधिक एकजुट समाज का निर्माण कर सकते हैं। निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों को अपनाने से नियमों का पालन, विरोधियों के प्रति सम्मान और हिंसा और डोपिंग के खिलाफ लड़ाई सभी का लाभ होता है। खेलों में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में कार्य करते हुए ये दिवस सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देता है। खेल लोगों को साझा भावनाओं और गौरव के माध्यम से एक साथ लाते हैं। डोपिंग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता खेल के सार्वभौमिक मूल्यों की रक्षा करने, वैश्विक स्तर पर निष्पक्षता सुनिश्चित करने और सरकारों को खिलाड़ियों के लिए ईमानदारी और समान अवसर बनाए रखने में सहयोग देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये दिवस। निष्पक्ष खेल की भावना खेल और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में इसके द्वारा समाहित मूल्यों को पहचानते हुए शांति, विकास, सामुदायिक सामंजस्य, लैंगिक समानता और महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में विकलांग व्यक्तियों सहित खेलों की भूमिका पर जोर देता है ये दिवस। निष्पक्ष खेल एक जटिल अवधारणा है जिसमें खेल और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों के लिए अभिन्न मूलभूत मूल्य शामिल है, जैसे कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, सम्मान, मित्रता, टीम भावना, समानता और ईमानदारी।

निष्पक्ष खेल की अवधारणा केवल लिखित नियमों का पालन करने तक ही सीमित नहीं है। इसमें अलिखित नियमों का सम्मान करना और विरोधियों, साथी खिलाड़ियों, ये ओलंपिक खेलों जैसे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन में दुनिया के सभी हिस्सों के खिलाड़ियों को एक साथ लाता है और इसका उद्देश्य शांति, आपसी समझ और सद्भावना को बनाए रखना है। ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के साथ साझा किए जाते हैं।

खेल शांति और विकास के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में एक किफायती और लचीला साधन साबित हुए हैं।

खेल सतत विकास का एक महत्वपूर्ण साधन भी हैं। हम सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने में खेल के बढ़ते योगदान और महिलाओं, युवाओं, व्यक्तियों और समुदायों के सशक्तिकरण के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेश के उद्देश्यों में इसका योगदान अतुलनीय है, जिससे विकास और शांति की प्राप्ति में मदद मिलती है। तो दोस्तों, आज की विविधा विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति किसी और दिन विविधा के एक और अंक में एक नवीन विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आपसे थोड़ी ही देर में।

0: धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को

0: के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जांच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया।

0: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
1: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम 401.1 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ, और नमस्ते लखनऊ में अब बारी हुई आपकी पसंदीदा

0: अब बारी हुई आपकी पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह की, क्योंकि आज है मंगलवार और अब ये कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं मंगलवार और शनिवार को। तो आज का आज सुबह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आई हूँ मैं नंदिनी मिश्रा
1: और मैं सीमा शाही।
0: स्वीकार करें हमारा नमस्कार। सीमा, एक बहुत प्यारी सी बात याद आ गई तो अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ चाहता है।
1: ये तो बहुत सही बात कही आपने नंदिनी। और देखिए, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं वो लोग खुद धोखा खाते हैं, और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं तैयार रहता है। क्यों?
0: बिल्कुल सही कह रही है सीमा। वास्तव में हम इतने ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, इसको कह सकते हैं, हो गए हैं कि हम बिना स्वार्थ के, बिना वजह किसी को कभी बात नहीं करेंगे, किसी को कॉल नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं। अरे इस स्वभाव को छोड़िए, बिना मतलब भी लोगों से कभी गाहे बगाहे कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। जब मौसम, हालांकि इस समय तो बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी कभी कदार जाएं, अपने मित्रों से मिले, अपने जान पहचान वालों से मिले जिनसे आपका कोई काम नहीं है, फिर भी आप उनसे मिले, निस्वार्थ भाव से मिले, देखिए आपको कितना अंदर से अच्छा लगेगा। हाँ। है ना। और चतुराई बहुत ज्यादा जीवन में किसी से करनी नहीं
1: चाहिए।
0: अभी तो हमने चतुराई से अपना काम निकाल लिया, लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे ही कुचक्र में हम भी किसी ना किसी दिन फंसते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने। और देखिए, कहते हैं ना कि हाँ, ज्यादा चतुराई करने से कोई फायदा नहीं होता, कब कौन किसके लिए काम आ जाए। तो अगर हम किसी के लिए काम आ रहे हैं तो अगला भी तो हमारे लिए काम आ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ना? तो व्यवहार बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। और ये जो पंक्तियां आज हमने पढ़ी सीमा, ये आचार्य प्रसिद्ध रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं थी। तो अब चलो, इतनी अच्छी बातें हुई है, उसके बाद एक गाना तो बनता ही है ना।
1: बिल्कुल बनता है।

तो श्रोताओं, आप जो गाना सुन रहे हैं ये है रिफ्यूजी फिल्म से, जिसे गाए हैं अलका याग्निक और सोनी निगम ने। जावेद अख्तर का संगीत और अनु मलिक का माफ कीजिएगा, जावेद अख्तर का गीत और अनु मलिक का संगीत है। और आपको बता दें कि ये राग पहाड़ी पर आधारित है, बिलावल थाट से ये राग उत्पन्न होता है, जो कि सारे शुद्ध स्वरों का इसमें प्रयोग होता है। ये औड़व संपूर्ण जाति का राग है, जिसमें वादी सा और संवादी पा है।

0: और सीमा, जैसे कि हम जानते हैं कि हर दिन अपने हाथ में बहुत सारा इतिहास बटोरे होता है और हर दिन कोई ना कोई दिवस, कुछ विशेषताएं मनाई जाती हैं, कुछ सप्ताह मनाए जाते हैं, तो उनका जिक्र भी अब हम यहाँ कर लें। आज है विश्व आईडीबी दिवस, यानी आईबीडी दिवस। ये दिवस आंतों की सूजन संबंधी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल सही कहा नंदिनी आपने। कहते हैं कि ये दिवस पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों जैसे कि क्रोहन रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
0: इसके अलावा आज है हेपेटाइटिस परीक्षण दिवस। हेपेटाइटिस की जांच को प्रोत्साहित करने और इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य दिवस है ये।
1: बिल्कुल, और ये हर साल 19 मई को इसलिए मनाया जाता है ताकि इसका उद्देश्य लोगों को लीवर की सूजन और हेपेटाइटिस बी और सी के प्रति जागरूक करना है, है ना?
0: इसके अलावा बताएं सीमा और क्या है आज?
1: और मैं आपको बता दूं कि आज विश्व फेयर प्ले दिवस भी हर साल 19 मई को ही मनाया जाता है और ये खेल मैदान पर और सामान्य जीवन में सच्ची खेल भावना यानी कि ईमानदारी, सम्मान और एकजुटता के मूल्यों को हवा देने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है नंदिनी। और यानी कि इस दिन को विशेष रूप से मनाने के पीछे का उद्देश्य समाज को ये वादा दिलाना है, ये याद दिलाना है कि किसी भी कीमत पर जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण नैतिकता और निष्पक्षता होनी चाहिए, है ना?
0: सही कह रही है। और आज के हमारे विविधा का ये ही विषय भी था, है ना? इसके अलावा आज एक, जैसे हम सभी जानते हैं कि हरियाली धरा को अगर हमें सुरक्षित रखना है धरती को, तो हरियाली यानी पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। तो आज है प्लांट समथिंग डे। हर साल 19 मई को मनाया जाने वाला ये विशेष दिन है। ये दिन लोगों को प्रकृति से जुड़ने, पर्यावरण में हरियाली बढ़ाने और अपने घर, बगीचे या आसपास के क्षेत्रों में कम से कम एक नया पौधा, चाहे फल का हो या फूल का हो या फिर एक छोटा सा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
1: बिल्कुल, आपने तो बहुत प्रोत्साहित किया और मैं तो आज एक पौधा लगाने वाली हूँ। बिल्कुल,
0: अरे वाह, कितनी अच्छी बात आपने कही है सीमा। और चलो हम भी चलते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: दोनों लोग चलते हैं और एक
1: श्रोताओं को छोड़ जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ और हम चलते हैं पौधे लगाने।
0: नहीं नहीं, पहले प्रोग्राम कर लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे। और इसके अलावा एक दिन और है जो बढ़िया दिवस मनाया जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिवस है ये, उसके बाद हम गाना सुन पाएंगे। राष्ट्रीय डेविल्स फूड केक दिवस। ये दिन एक लजीज चॉकलेट से भरपूर केक का आनंद लेने का दिन है जो पूरे अमेरिका में बेहद लोकप्रिय है।
1: क्या बात है, तो चॉकलेट खा लिया, बिल्कुल आ गया, बहुत मीठा मीठा हो गया।
0: आज एक चॉकलेट भी हो जाए, चॉकलेट खाएंगे, एक पौधा
1: लगाएंगे
0: हाँ, और उसके बाद घर जाएंगे। चलो इसी बात पे श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत

तो श्रोताओं, ये गाना आप सुन रहे हैं स्वामी फिल्म से यशुदास की आवाज में। गीत को लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत है राजेश रोशन का।

0: दोस्तों, अभी जो आप ये स्वामी फिल्म का गीत सुन रहे थे, ये राग सिंधु भैरवी पर आधारित था। भैरवी या आसावरी थाट का ये राग है। इसमें संपूर्ण संपूर्ण वादी स्वर लगते हैं, मध्यम मा और पंचम पा, और संवादी स्वर षड्ज सा लगते हैं। सीमा, ये तो हो गई बहुत सारी बातें हमने आज के दिवस और सप्ताह बताए अपने श्रोताओं को
1: जी।
0: और इसके अलावा कुछ हुनर ऐसे होते हैं ना, जिसको कहते हैं ना बॉर्न आर्टिस्ट, बहुत सारे होते हैं कि जैसे ईश्वरीय देन होती है उनको दी हुई, ईश्वर उन्हें ऐसे अद्भुत शक्तियों से उनको नवाजते हैं कि मतलब असामान्य आदमी जब उनके बारे में सुनता है, देखता है उनकी प्रतिभा को, तो आश्चर्यचकित
1: है ना।
0: तो ऐसी ही एक शख्सियत से हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई, हमने बातचीत भी की और उनकी बातचीत को अपने श्रोताओं तक हम पहुंचाएंगे। प्रतिभा की उड़ान इसके अंतर्गत आज हम आपकी बातचीत सुनवाने जा रहे हैं नियति चित्रांश से, जिनकी अद्भुत प्रतिभा ये है कि वो 44 वाद्य यंत्र बजा सकती हैं और बहुत छोटी सी उम्र की है, कक्षा 10 की छात्रा है ये।
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: 44 यानी 44 वाद्य यंत्र बजा पाना अपने आप में वाकई ये तो
1: बहुत बड़ी
0: है। दैवीय उनको मिला है,
1: एक ऊपर से ये
0: उपहार मिला है, बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत, इनसे बातचीत की है रिंकी शर्मा ने।
2: दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी युवा प्रतिभा से जिनकी उपलब्धि सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाए। संगीत केवल सुरों का संसार नहीं बल्कि साधना, एकाग्रता और आत्मविश्वास की पहचान भी है। और जब इतनी कम उम्र में कोई बच्चा अपने हुनर से विश्व स्तर की पहचान बना ले तो वो केवल एक कलाकार नहीं बल्कि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन जाती है। आज हमारे साथ है प्रतिभाशाली युवा संगीत साधिका नियति चित्रांश, जो वर्तमान में कक्षा 10 की छात्रा है और आत्मविश्वास के साथ 44 वाद्य यंत्र बजा सकती हैं। इतना ही नहीं, नियति ने अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नियति, सबसे पहले आपको इस उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद। नियति, सबसे पहले हमारे श्रोता ये जानना चाहेंगे कि आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ।
4: मैं 6 महीने की थी जब मेरी मम्मी ने मेरे को टॉय इंस्ट्रूमेंट से इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले वो मेरे लिए टॉय कीबोर्ड लेके आई थी एंड उसी समय से वो मेरा फेवरेट टॉय हुआ करता था और मैं हमेशा उसी से खेल रही होती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैं 3-4 साल की हुई, मेरे को पियानो क्लासेस ज्वाइन करवाया गया लोकली। जब मैं 5 ईयर्स की थी तो मेरे को फॉर्मल क्लासेस पियानो की ज्वाइन करवाई गई ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन।
2: इतनी छोटी उम्र में 44 वाद्य यंत्र बजाना सचमुच अद्भुत है। संगीत की शुरुआत आपने खेल की तरीके से की, फिर ये किस तरीके से आपका पैशन बन गया?
4: संगीत मैंने खेल के तरीके से ही शुरू किया था, परंतु उसमें मेरी इतनी ज्यादा रुचि थी और वो करने से मेरा ब्रेन बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा था, इसलिए वो धीरे धीरे करके

0: रूटीन में आने लग गया कि मैं दिन में 1-1.5 घंटा कम से कम पियानो की प्रैक्टिस करने लगी, और धीरे धीरे करके मैंने और भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स पिकअप करना चालू किया। अब मैं 44 इंस्ट्रूमेंट्स बजा रही हूँ।
1: क्या आपको याद है आपने सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा सीखा था?
0: सबसे पहला तो मैंने पियानो ही सीखा था, पर उसके बाद मेरा सबसे पहला वाद्य यंत्र था मेलोडिका, जो कि पियानो से काफी सिमिलर होता है, बट वो एक विंड ब्लोन इंस्ट्रूमेंट है।
1: जी, तो अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि और तकनीक को समझना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए?
0: चुनौतीपूर्ण तो नहीं था, क्योंकि हमारी किसी भी चीज में लगन होती है तो वो अपने आप ही हो जाता है। तो धीरे धीरे करके मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट पसंद आने लगा, जो मेरे को अच्छा लगा, मैंने उसे पिकअप किया, एंड अराउंड 1 या 2 घंटे में मैं उसके बेसिक समझ के उसे आराम से बजा लेती थी।
1: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का पल आपके लिए कैसा रहा और क्या आपने सोचा था कि आप इस उपलब्धि तक पहुंच पाएंगी, इसे हासिल कर पाएंगी?
0: मैं जब छोटी थी तब तो कोई ऐसा मोटिव भी नहीं था कि मेरे को म्यूजिक में ही इतनी बड़ी उपलब्धि लानी है, पर जैसे जैसे बड़ी हुई, मैंने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किया, फिर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, बट उसके बाद मेरा कहीं ना कहीं सपना था कि मुझे जरूर कुछ बड़ा करना है, एंड मैंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया।
1: जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय आप कक्षा 10 की पढ़ाई कर रही हैं,
0: जी,
1: तो पढ़ाई और संगीत दोनों को साथ लेकर चलना कितना कठिन होता है?
0: मेरे अकेडमिक्स में हमेशा 90% एंड अबव आते रहे हैं, एंड म्यूजिक में भी इतना एक्सेल कर रही हूँ, तो दोनों को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, पर जब जैसे बचपन से मैं ये सब कर रही हूँ तो अब इतना मुश्किल नहीं लगता।
1: जी, बहुत बढ़िया। परिवार का, आपके साथियों का, आपके जो दोस्त हैं, गुरुजनों का इस उपलब्धि में कितना योगदान रहा?
0: मेरे माता पिता को बहुत योगदान था ही, उन्होंने ही मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बट उन्हें छोड़ के मेरे जो तबले के गुरुजी हैं और एक मेरी स्कूल में फ्रेंड है, उन दोनों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मेरे सर मेरे को पिछले 3 या 4 साल से तबला सिखा रहे हैं, एंड उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है ये करने के लिए। और जो मेरी फ्रेंड है आरना बदवार, जो कि मेरी क्लासमेट भी है, वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करती है, एंड उसने ये अचीवमेंट कराने में तो बहुत ही ज्यादा हेल्प किया है मुझे।
1: अच्छा, इतने सारे वाद्य यंत्र आप बजाती हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा वाद्य यंत्र आपको पसंद है और क्यों?
0: मुझे सबसे ज्यादा पसंद पियानो और तबला है, इसलिए भी क्योंकि मैं बहुत छोटे से बजा रही हूँ, पर इनमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा हम नई नई चीजें बना सकते हैं, इसलिए ये मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है।
1: आगे आपका अगला लक्ष्य क्या है? क्या आप संगीत में ही अपना करियर बनाना चाहती हैं या आपने अपने लिए कुछ और सोचा है?
0: मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा करियर संगीत में ही बने, परंतु उसके साथ साथ मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट संस्कृत और हमारे कल्चर में भी है, तो मेरा मोटिव ये है कि मैं बड़े होकर PhD करूँ विद द टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ म्यूजिक फ्रॉम सामवेद टू द प्रेजेंट टाइम।
1: और अंत में आप हमारे जो युवा श्रोता आपको इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। आप किसी चीज को करना चालू करेंगे और अगर आपको लगेगा कि हाँ आप कर सकते हैं, आप अपने आप से मोटिवेटेड होंगे, तो आप अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने। वाकई खुद पर विश्वास हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। दोस्तों, ये थी युवा संगीत प्रतिभा नियति चित्रांश, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन सपने और हौसले नहीं। नियति, आपने इतने सारे अनुभव साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आप इसी तरह नई ऊंचाइयों को छूती रहे और देश का नाम रोशन करती रहे। थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।
2: तो सीमा, ये जो नियति चित्रांश से रिंकी शर्मा ने बात की, इसमें बस ये बातचीत सुन के यही कहा जा सकता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके कदमों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों
3: से
2: से
3: उड़ान
2: उड़ान
3: होती
2: होती
3: है।
2: है। बिल्कुल सही है। और नियति चित्रांश को हमारी ओर से, हम सब की ओर से, आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी
3: शुभकामनाएं। बिल्कुल,
2: है ना। और बात हो रही है गीत की, संगीत की, कार्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें बीच में मौसम की भी बात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्मी अपने पीक पे

0: हमारे ख्याल से इस समय
1: बिल्कुल.
0: चल रही है, और क्या हाल रहेगा मौसम का, आज कैसा दिन भर रहेगा तापमान उत्तर प्रदेश और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का, आइए जानते हैं मोहम्मद दानिश जी से.
2: मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है. हमारे श्रोताओं को कृपया बताएं कि कैसा रहने वाला है आज लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में मौसम.
3: जी, मौसम की बात करें तो कल लखनऊ में 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस सीजन में सबसे गर्म था. उसी के कंटिन्यूशन में आज भी कुछ इसी तरीके का तापमान बना रहेगा, और साथ ही में 20 से 30 KMPH की तेज सतही हवाएं भी चल रही, जो गर्मी को और बढ़ा दी. खुले स्थानों पर धूल की उड़ रही है. तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आने वाला अगले 5 दिन तक प्रचंड गर्मी का असर प्रदेश में भी रहेगा और लखनऊ में भी रहेगा. तो जो साउथ के रीजन है, बुंदेलखंड, प्रयागराज, आगरा डिवीजन, वहां पर ऑरेंज अलर्ट लू का जारी है. लखनऊ में कोई ऐसा अलर्ट नहीं, हालांकि अलर्ट तो काफी करीब है, लेकिन एक तरीके से लू जैसी स्थिति बनी रहेगी.
2: मतलब भीषण गर्मी अभी हम लोग झेलने के लिए तैयार रहे, है ना
3: बिल्कुल.
2: जी, चलिए बहुत दानिश जी आप जुड़े, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार.
3: नमस्ते.

0: तो नंदिनी, आप ये गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं जॉनी मेरा नाम फिल्म से, जिसे गाया है किशोर कुमार ने और गीत है इंदिवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।
1: और ये गीत जो है राग चारुकेशी पर आधारित है। ये राग ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत परंपरा से हिंदुस्तानी संगीत में शामिल किया गया है। ये एक संपूर्ण जाति का राग है जिसमें आरोह अवरोह दोनों में सात सात स्वर लगते हैं।

0: तो सीमा, जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज बड़ा मंगल, आज तीसरा बड़ा मंगल पड़ रहा
1: जी
0: है और इस अवसर पर बहुत सारे आयोजन भी हमारे शहर में हो रहे हैं। इसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, विशेष घटनाएं जो आपसे साझा करना चाहते हैं। 1971 में आज ही के दिन यानी 19 मई के दिन भारतीय नौसेना का पहला पनडुब्बी अड्डा वीर बाहु विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था।
1: और नंदिनी, 1971 की बात बताऊं मैं कि आज ही के दिन भारत ने अपना पहला स्वदेशी सुपरसोनिक विमान HF-24 मारुत वायुसेना में शामिल किया था और ये भारतीय विमान इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिना जाता है।
0: क्या बात है। और जैसे कि सीमा, हमने जिक्र किया था कि हम अपने श्रोताओं को बताएंगे कि आज शहर में क्या क्या विशेष आयोजन हो रहे हैं,
1: जी
0: उसमें बताइए क्या होने वाला है।
1: बिल्कुल, आपको बताएं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलानुशासक कार्यालय की ओर से भंडारे का आयोजन तो देखिए हो ही रहा है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि संग्रहालय निदेशालय की ओर से अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कार्यक्रम यानी कि राज्य संग्रहालय सुबह 11 बजे से होगा।
0: बिल्कुल, और जैसे आपने भंडारे की बात की तो ये बड़ा मंगल आस्था और भक्ति का विषय है और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के दिन लोग मंदिरों में दर्शन करते हैं, पूजा अर्चन करते हैं और बड़ा ही पवित्र समय ये माना जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये ज्येष्ठ माह का ये जो पूरा माह पड़ता है और इस बार 8 बड़े मंगल हम अपने श्रोता को बताने चाहेंगे कि पढ़ रहे हैं, और इसमें भंडारे भी खिलाने का, भंडारे खिलाने का प्रावधान है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि सबके साथ एक तो समरसता रहे, सामाजिक समरसता रहे और सबको एक प्रसाद रूप से ग्रहण कराया जाता है ये जो भंडारे का प्रावधान है।
1: बिल्कुल, खुशियां बांटना और भंडारे के रूप में तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बताएं नंदिनी की आज लाल सखी फाउंडेशन की ओर से फाइनेंशियल

0: लिटरेसी एंड वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव विषय पर कार्यक्रम भी मरक्योर गोमती नगर में सुबह 11 बजे से होने वाला है।
1: और इसके अलावा महाराजा अग्रसेन स्कूल मोती नगर में CBSE बोर्ड परीक्षा के मेधावियों का सम्मान समारोह भी आयोजित होगा दिन में 12:30 बजे से। तो ये सारे आयोजन शहर में होने वाले हैं। श्रोताओं, तो इनमें शिरकत कीजिए, भाग लीजिए और अपनी सहभागिता दिखाइए। गर्मी बहुत है, लेकिन घर से बाहर निकलिए और जाइए जरूर, भाग जरूर लीजिए इन कार्यक्रमों में।

0: ये गाना आप सुन रही हैं अरिजीत सिंह और हंसिका बारिक की आवाज में। गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत अमित त्रिवेदी का, फिल्म आजाद।
1: और ये राग देश पर आधारित है। कमाश थाट के इस राग में आरोह में गंधार ग और धेवधा वर्जित होते हैं, जबकि अवरोह में सभी सात स्वर प्रयोग होते हैं।

0: और इसी के साथ अपने श्रोताओं को टाटा बाय कहने का समय
1: वक्त
0: हो
1: भी हो
0: गया।
1: बिल्कुल, बातें तो बहुत करनी थी लेकिन वक्त हमें इशारा कर रहा है
0: कि अब चलो, बहुत हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। तो श्रोताओं, अपना गर्मी बहुत हो रही है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। इसी के साथ अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा
1: और सीमा शाही को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार। इसी के साथ आज सुबह कार्यक्रम यही संपन्न हुआ, साथ ही संपन्न हुआ नमस्ते लखनऊ। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी

0: समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे

0: आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीक की प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
4: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य

0: हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे इस स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 और 21 सेकंड हुए हैं और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली।
1: मनीष श्रीवास्तव।
0: सफर मोहब्बत का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर सुबह निकलकर शाम को ढलता रहे, नहीं ढलेगी अपनी मोहब्बत की ये सुबह, चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत वेलकम है। हाजिर हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम नमस्ते बरेली लेकर। जी हाँ श्रोताओं, इस वक्त गर्मी अपने शवाब पर है और इस गर्मी के मौसम में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज इसी विषय पर हमने बातचीत की है कुछ छात्रों, दुकानदारों और आम नागरिकों से। वो तो आपको सुनवाएंगे। इस वक्त क्योंकि तपती हुई धूप और चेहरे को झुलसा देने वाली ये गर्मी, मन करता आया है तो बस याद आती है वो पेड़ों की छांव या घर का साया, ताकि हम इस गर्मी में अपने आप को सुरक्षित रख सकें। आज इसी विषय पर हमने बातचीत की है अपने बरेली शहरवासियों से। आइए लिए चलते हैं आपको उन्हीं के पास।

0: जी आपका नाम?
1: मनीष श्रीवास्तव।
0: मनीष श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त आप हैं हमारे साथ प्रोग्राम नमस्ते करेगी। गर्मी का मौसम इस वक्त चल रहा है, इस गर्मी के मौसम में आप किन किन बातों का एहतियात रखते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें?
1: सर इस समय ये है कि बॉडी में हमारे पानी की कमी ना रहे, पानी का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम गर्मी बहुत है और बाकी ये है कि बाहर का तला हुआ या वैसे भी कोई ऐसी वैसी चीज ना खाएं जो हमारी बॉडी को दिक्कत दे।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि गर्मी के मौसम में हमें बहुत ही लाइट खाना लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर को कोई उसका दुष्प्रभाव न पड़े। और साथ साथ पानी की आपने बात की, तो पानी तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। वैसे भी कहते हैं ना कि अभी तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पानी की आवश्यकता ज्यादा रहती है, और खास तौर से कि ठंडा अगर पानी मिल जाए तो फिर क्या कहने।
1: ठंडा पानी ये होता तो बढ़िया है, लेकिन ये कि प्यास बुझनी चाहिए इस मौसम में। और बाकी गवर्नमेंट ने जगह जगह प्याऊ लगवा रखे हैं, तो अच्छी बात है कि जनता को सुविधा मिलती है उससे। और ये है कि पानी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि हमें ऐसी गर्मी में पानी से पीने से हमारे जिस्म को राहत मिले।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी आपका नाम?
2: अनुज वर्मा।
0: अनुज वर्मा जी क्या करते हैं आप?
2: जी मैं स्टूडेंट हूँ।
0: वेरी गुड, क्या बात है, आप स्टूडेंट हैं। कहते हैं ना एक कहावत भी है कहाँ कि जहाँ जवानी चलती है वहीं जमाना चलता है, क्योंकि हमारे जो युवा हैं वही देश का भविष्य हैं, है ना। चलिए बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है
2: जी।
0: तो अनुज वर्मा जी हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि गर्मी सताए तो क्या करना चाहिए?
2: कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपने घर पर ही रहें, और बहुत जरूरी काम हो तो घर से निकलना हो तो आप पूरा अपने आप को कवर करके निकलें।
0: अच्छा अच्छा।
2: और कोशिश करें कि एक बोतल साथ में लेकर के चलें कि अगर आपको रास्ते में प्यास लगे तो आप पानी भी पी सकें साथ
0: अच्छा,
2: में
0: अच्छा। और मतलब पानी क्यों?
2: पानी इसलिए कि गर्मी में आप पसीना ज्यादा निकलता है, तो उस बॉडी भी हाइड्रेट रखने के लिए आपको पानी पीना बहुत जरूरी है कि बॉडी आपको मतलब ऐसी ना हो, हाइड्रेशन होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात अनुज जी आपने कही। हम तो इंसान है, अपना ख्याल रखते ही है, लेकिन हम देखते हैं कि जो बेजुबान जानवर हैं अक्सर रोड पर, जैसे गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, या इस तरह के पशु हैं, या हम यूं कहें कि जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो बेजुबान होते हैं,
2: जी जी जी,
0: क्या हमें उनका भी ख्याल रखना?
2: जी जरूर जरूर रखना चाहिए ख्याल उनका। हम लोग तो क्या नाम है अपना, जब मन हो तो पी सकते हैं पानी। उन लोगों के लिए अगर आप कोशिश करें कि अपने घर पे एक ऐसा बर्तन बना लें जो पक्षियां आए तो पानी पी सके वो,
0: और साथ में दाना पानी भी,
2: दाना पानी भी डाल सकते हैं आप। जी जी
0: जी बिल्कुल अनुज जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा
2: जी।
0: और उम्मीद करते हैं कि आप अपना तो ख्याल रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ जो पशु पक्षी हैं उनका भी बेहतर ध्यान रखेंगे।
2: जी जी जी,
0: बहुत धन्यवाद आप।
2: धन्यवाद।
0: श्रोताओं इस वक्त गर्मी अपने उरोज पर है और आम जनजीवन जो है इस वक्त बेहाल है। जी आपका नाम?
3: अशोक कुमार जायसवाल।
0: अशोक कुमार जायसवाल जी क्या करते हैं आप?
3: टेलरिंग शॉप है सर।
0: अच्छा, टेलरिंग की शॉप है, तो आप अपनी शॉप पर कितने बजे पहुंचते हैं?
3: करीब 1 बजे के करीब पहुंचते।
0: अच्छा, 1 बजे इस वक्त तो
3: भी काम करता हूँ ना।
0: अच्छा अच्छा, घर पर काम करते हैं और 1 बजे आप अपनी शॉप के लिए निकल पड़ते हैं। इस वक्त तो बहुत गर्मी पड़ रही है, तो इस गर्मी में जब आप दोपहर में घर से निकलते होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी?
3: नहीं, पानी नहीं की मैं घर से लेके चलता हूँ पानी कहीं असुविधा से बचने के लिए, और बीच बीच में जो है कहीं प्याऊ वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन मैं अपना पानी जो है घर से लेके चलता हूँ।
0: इस वक्त पानी की कमी शरीर के अंदर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि पानी जो है वो जीवन है हमारा। और आप अपने साथ पानी लेकर के चलते हैं, तो कितनी देर तक आप अपनी दुकान पर बैठते हैं?
3: मैं रात में 9 बजे तक बैठता हूँ।
0: अच्छा, तो उसके अलावा आप पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं?
3: करीब 2 लीटर की पानी बोतल घर से लाता हूँ।
0: 2 लीटर सफिशियंट रहता है पूरे दिन के लिए?
3: जरूरत होती है तो अंदर स्कूल है,
0: अच्छा
3: वहाँ से भी मिल जाता है।
0: अच्छा अच्छा,
3: अंदर प्याऊ लगा हुआ है।
0: चलिए बड़ा अच्छी बात आपने अशोक जायसवाल जी हमारे श्रोताओं को बताई, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस गर्मी में हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और भरपूर मात्रा में हम पानी लें और कोशिश करें कि घर से बाहर हम अगर बहुत जरूरी काम है तभी निकले, अदरवाइज ना निकले, है ना,
3: ना निकले।
0: जी बहुत शुक्रिया। जी आपका नाम?
4: जी मोहसिन खान नाम है मेरा।
0: मोहसिन खान जी प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आपका बहुत स्वागत है, और इस वक्त गर्मी जो है बहुत ज्यादा पड़ रही है, और आज 19 मई है और आप देख रहे हैं कि सुबह के वक्त में ही टेम्परेचर कितना ज्यादा है, तो इस गर्मी के मौसम में आप किन बातों का ध्यान रखते हैं?
4: मतलब यही है कि मैं अगर घर से निकलता हूँ तो पानी वानी लेकर निकलता हूँ कि कहीं डिहाइड्रेट ना हो जाए मेरी बॉडी, और बाकी ज्यादा से ज्यादा ये रहता है कि मतलब धूप में कम से कम निकलूं, और अगर निकल भी रहा हूँ तो पेड़ वेड़ है या जो है उनकी छांव को ज्यादा तलाश करता हूँ कि वहाँ ठंडक महसूस होती है और थोड़ा सुकून मिलता है।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मोहसिन भाई आपने कि हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो हम जब निकलते हैं धूप में तो हम देखते हैं कहीं पर अगर पेड़ की छांव है तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी देर पेड़ की छांव में रुककर आराम कर लें, सुस्ता लें, लेकिन हम देखते हैं कि शहर जैसा जैसे बढ़ रहा है पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं, जबकि सरकार कोशिश कर रही है कि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए। आम नागरिक का इसमें क्या दायित्व है?
4: ये है कि इसका फायदा जो

0: होगा वो आम नागरिक को ही होगा। मतलब ये जो पहल है सरकार की, ये सभी के लिए है कि हम मतलब आधी जनता हर टाइम सफर में है, कोई कहीं जा रहा है, किसी काम से जा रहा है, कि ऐसा नहीं है कि हम घर पर रह सकते हैं। तो हमेशा मतलब हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो पेड़ अगर होंगे, अगर उन्हें संरक्षित करेंगे, सरकार की पहल में अपनी भी थोड़ी सी योगदान देंगे कि अगर हमारे आसपास जो पेड़ है उनको कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, अगर पानी की भी जरूरत है तो हम उनको पानी दें, जो भी हम अगर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो जो मौसम होगा ठंडा या जो भी हवा आ रही है वो सब सबके लिए है, हम सब जनों के लिए है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम आम नागरिकों का ये दायित्व है कि हम पेड़ों को संरक्षित करें, और क्योंकि अगर हम उनको संरक्षित करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हम शहर को संरक्षित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन जी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी, धन्यवाद।

0: जेठ की दोपहरिया में पांव जले हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्मी इस वक्त अपने शबाब पर है और इस गर्मी के मौसम में कोशिश करें कि अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दोस्तों 100.4 FM पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र। और साथियों, आज वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर डे भी है जो हर साल 19 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य परिवार चिकित्सकों के महत्व को समझना और स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान का सम्मान करना है। साथियों, परिवार चिकित्सक ऐसे डॉक्टर होते हैं जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। वे बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और सभी का इलाज करते हैं और सामान्य बीमारियों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी देते हैं। साथियों, इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली डॉक्टर्स WONCA द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। इनका उद्देश्य लोगों को ये बताना था कि परिवार चिकित्सक समाज के लिए कितने आवश्यक हैं। लोगों को सही समय पर चिकित्सा सलाह मिलती है, छोटी बीमारियों का जल्दी इलाज हो जाता है। परिवार चिकित्सक मरीज के स्वास्थ्य का पूरा इतिहास जानते हैं, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करते हैं। लोगों और डॉक्टरों के बीच विश्वास का संबंध बनता है। साथियों, विश्व परिवार चिकित्सक दिवस हमें ये याद दिलाता है कि परिवार चिकित्सक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करते बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की सही सलाह भी देते हैं। और आज के दिन स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, डॉक्टरों को सम्मानित किया जाता है, स्कूलों और अस्पतालों में भाषण एवं सेमिनार होते हैं, लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए प्रेरित किया जाता है।
1: बम चिक चिक बम चिक बम बम बम चिक चिक

जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। श्रोताओं, जगह जगह लिखा होता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी एक घटना हमारे बरेली शहर में हुई है। जी हाँ साथियों, ओवरहीट होने से कार में लगी आग, चालक ने कूद कर बचाई जान। भीषण गर्मी का कहर अब शुरू हो गया है। स्थिति यह है कि अब गर्मी की वजह से वाहन भी ओवरहीट होने लगे हैं। सोमवार को ऐसी ही घटना इज्जतनगर क्षेत्र के IVRI पुल पर सामने आई। अचानक से चलती कार आग का गोला बन गई। चालक ने किसी तरह से कूद कर अपनी जान बचाई। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस के मुताबिक सनसिटी विस्तार निवासी इंद्रेश यादव ने बताया कि वो अपनी इको स्पोर्ट्स कार लेकर एजेंसी जा रहे थे। फ्लाईओवर पर अचानक उन्हें कार ओवरहीट होने का अलर्ट मिला। उन्होंने कार रोकी और फिर एजेंसी ने जाकर घर की तरफ जाने लगे। इसी बीच अचानक से कार से धुआं उठा और आग लग गई। जब तक वो उतर पाते तब तक कार के इंजन ने पूरी तरह से आग पकड़ ली। किसी तरह से कार से कूद कर उन्होंने जान बचाई। उन्होंने तत्काल डायल 112 को फोन किया। फायर ब्रिगेड की टीम के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। जलती कार का लोगों ने वीडियो बना लिया जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। पुलिस का कहना है कि घटना में ना तो किसी भी व्यक्ति को चोट लगी और ना ही कोई जनहानि हुई। तो साथियों, गर्मियों का मौसम है, एहतियात बरतें, सावधानी बरतें और साथ साथ अगर कोई भी आपको किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना नजर आए तो तुरंत अलर्ट हो जाए।

100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्ते बरेली। और अब एक नजर बरेली शहर की खबरों पर। साथियों, जिला अस्पताल में भर्ती हुए बुजुर्ग महिला, सोमवार को कलेक्ट्रेट में वाहनों की एंट्री रही बंद, बाइक पर गए डीएम। कहां टिकेगी गर्मी, पानी की बौछार के आगे धूप की तपिश भला कैसे टिक पाती। बरेली के बदायूं रोड पर बालक ने तपिश महसूस की तो घर के बाहर आ गया, पानी की फुहार से गर्मी को दूर भगाया और मुस्कुराया। ट्रांसफार्मरों में फॉल्ट, 22 घंटे बिजली कुल। डोरा रोड पर आनंद विहार में फॉल्ट, अरुणगला और बन्नू वालनगर में परेशान रहे लोग। गर्मी में गाड़ियों में क्यों लगती है आग, कैसे रहें सावधान। पीएनजी लाइन टूटने से 1000 घरों में नहीं जले चूल्हे। सुभाष नगर में नाले की खुदाई से पानी की लाइन क्षतिग्रस्त। चौपला फ्लाईओवर के 5 एक्सप्रेशन ज्वाइंट खुले। एनएचएआई का दावा, फ्लाईओवर मरम्मत का कार्य निर्धारित अवधि में होगा, पूर्ण रात में भी हो रहा काम। माटीकला के उत्कृष्ट कारीगर होंगे पुरस्कृत। और साथियों, जनगणना में नहीं चलेगी दोहरी गिनती, वहां रहते हैं वहीं होगा आपका रिकॉर्ड। 25 मई और 26 मई को हड़ताल करेंगे बैंक कर्मी।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्ते बरेली, यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 107.4 FM पर। और आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं लोकगीत। ये पहला लोकगीत बीना की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, सुबह के 9 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में एक बार फिर से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से। अन्विता दत्त ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है विशाल शेखर ने। शेखर रविजियानी और सलीम मर्चेंट साथ ही नीति मोहन की आवाजें हैं।

0: सन ऑफ सरदार, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में। समीर अनजान के बोल थे, तर्ज बनाई थी हिमेश रेशमिया ने।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में एक था टाइगर फिल्म से ये गीत। कौसर मुनि ने इसको लिखा है और संगीत दिया है सोहेल सेन ने।

एक था टाइगर, इस फिल्म से आपने अभी ये गीत सुना, तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में। और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम जिजुलोक में एक बार फिर से स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं शिरीन फरहाद की तो निकल पड़ी इस फिल्म से, ये गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत है, धुन बनाई है जीत गांगुली ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जब तक है जान फिल्म से श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का गाया गीत। गुलजार ने इस गीत के बोल लिखे हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी प्रस्तुति राउडी राठौर फिल्म से श्रेया घोषाल और जावेद अली का गाया गीत समीर के बोल साजिद वाजिद का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज, जिसकी मुस्कान पर लोग

लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री

अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुंचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जाने। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

शहनवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

0: नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।
1: गुम हो गया वक्त से चुराया था जो।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं सऊदी शिमला प्रचार FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। बेबी मलुकपुर से दे रही हैं आकाशवाणी को शुभकामना संदेश।
1: मैं बेबी बोल रही हूँ, मलुकपुर जुग्गन गली से शेर खां मस्जिद के पास रहती हूँ। और मैं रेडियो की बहुत शौकीन हूँ, रेडियो बहुत मोहब्बत से सुनती हूँ, बहुत प्यार से सुनती हूँ। और रेडियो मेरा सारा दिन चलता रहता है, मैं बैठी रहती हूँ, पतंग का काम करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ बहुत बहुत मुबारकबाद हो सारी टीम को, और हमेशा रेडियो के प्रोग्राम बने रहें। और मैं बहुत मोहब्बत से सुनती हूँ सारे विभिन्न भारती के प्रोग्राम सुनती हूँ, और जो डॉक्टर बैठते हैं उनको भी सुनती हूँ, जो डॉक्टर मिला के, हालांकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ फिर भी बहुत सीख मिलती है मुझे रेडियो से। और ख़त भी मैंने डाले, वो भी मैंने सुने, प्रोग्राम ख़त जो मेरे पहुँचते हैं वो भी सुनती हूँ मैं, और इंशाल्लाह और भेजूँगी ख़त मैं, वो भी मेरे आगे सुनने में। लेकिन मैं रेडियो की टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, 90 साल होने जा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम में आपने सुना बेबी को आकाशवाणी के दीवाने में, जो दे रही थी शुभकामना संदेश। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है सऊदी शिमला 4 FM पर।
2: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashwanibareli@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARELLY, akashwanibareli@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोज का इंतजार है।

0: क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत आपकी पसंद आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्यार और मोहब्बत के साथ आप हमारे आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर कमेंट करते हैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले कमेंट के साथ। ऊपरकोट मोहल्ला छकुंटी बुलंदशहर से ये कमेंट आया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी और आवान अब्बासी, अब्बासी परिवार के सभी लोग। आपने सुनना चाहा है फिल्म जागते रहो का ये गीत, जिसको अपनी मधुर आवाज दी है मुकेश ने। गीत है शैलेंद्र का, संगीत सलील चौधरी का। आप कहते हैं कि आज ही के दिन यानी 19 मई 1997 को प्रसिद्ध भारतीय फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार, जी हाँ, शंभू मित्रा जी की आज पुण्यतिथि है। आकाशवाणी बरेली से हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्हें मुख्य रूप से बंगाली थिएटर में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं फिल्म जागते रहो का ये गीत मुकेश की आवाज में। और भी ढेर सारे कमेंट हमारे पास आए हुए हैं। आप हैं ज्योति नगर नोखा राजस्थान से, पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री गोवर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके सभी साथी। आप हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से, सुखविंदर सिंह जौड़ा सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके परिवार के सभी लोग। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर और परिवार के सभी लोग। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से, मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया। ये कमेंट हमारे पास आया पद्मा टाकिस ने पनगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से ये मैसेज हमें भेजा है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव लोहड्डा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन

0: भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन देवी, सुधीर नूतन, प्यारी सी पोती भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति श्रीमती सुमन देवी और इनके परिवार के सभी लोग, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर प्रदेश उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी लोग, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी और परिवार के सभी लोग, आप हैं नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम चरौदा बार नवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म जाते रहो का ये गीत मुकेश की मधुर आवाज में।
1: ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या।

0: है द टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली पसंद का गीत सुनने के लिए हमारे पास ये कमेंट आया है पाकुड़ झारखंड से। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसुतासु, अरलव आनंद, सत्यम आनंद, बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। आपने सुनना चाहे फिल्म फकीरा का ये गीत, जिसको अपनी आवाज़ दी लता मंगेशकर, किशोर कुमार ने।

और इसी गीत को सुनने के लिए बहुत सारे कमेंट हमारे पास हैं। ग्राम बांडी वाला फाजली का पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया रजत और बेबी गरिमा बगाड़िया, आप हैं हमारे श्रोता। गजानन एले, नवदीप एले, विश्वदीप, कैलाश और इनके परिवार के सभी लोग सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से। पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श, बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हमारे पास आए। आप हैं हमारे श्रोता सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता शैलेंद्र सिंह, आपने अपना पता श्री काशीनाथ विश्वनाथ धाम वाराणसी से। आजान कुमार सिंह, वंदना सिंह, बिनती विनायक सिंह, मोहनी मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी कोको रानी। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। नागपुर महाराष्ट्र से कमलेश कमल सोहाने, अफजाल मलिक, संदीप मक्कर, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सोहाने। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नादरे, मारोत राव पांचाल। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म फकीरा का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, आपके इस कमेंट को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सभी के गीत या सभी की फरमाइश तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आपका नाम हम अपने इस प्रोग्राम आपकी पसंद में जरूर जरूर शामिल करें।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: श्रोताओं गर्मी के मौसम और इस तपती हुई धूप में आप आनंद ले रहे हैं सदाबहार और कर्पणीय गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद में। अगली पसंद के लिए ये कमेंट हमारे पास से आया है सदर बाजार कोरावली से। अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और इनके परिवार के सभी लोगों का। आपने सुना चाहे फिल्म कामचोर का ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की। ये कमेंट हमारे पास आया है गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन गादरे, मारुत राव पांचाल और इनके सभी साथी, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से रामचंद्र मघीजा और काफिर भाई। ये हैं शनि मार्केट छेवरा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अरफात अदीब और खादिर चौधरी। गांव हीरावली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी लोग। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के सभी लोग। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी कारवी, बेबी वाई हिमाश और इनके परिवार के सभी लोग। अनारकली बाजार जगराओ से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी, जयपाल यादव और सभी परिवार के लोग। आप हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, ऋषि और राहुल। गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। अलमनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन, बरेली से बिचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बरफा देवी,

यादव, संजय अग्रवाल, अश्विनी कुमार मौर्य, विनोद दीक्षित राज, महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी और रोबिन भाई और इनके सभी साथी। आप हैं कवाई, सालपुरा जिला, बारा, राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और सभी परिवार के लोग। गांव खोकरा वाली, श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा और शगुन बारासा। गांव खरिया ठाणी, जिला सिरसा, हरियाणा से सतबीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया और इनके परिवार के सभी लोग। कटरचंद खां मौर्य मंदिर, वार्ड नंबर 11, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और साथ में स्वाति मौर्य। जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं पाहंदा पलारी, छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन। तो आइए सुनते हैं ये गीत जिसको हमने लिया है फिल्म कामचोर से, आवाज किशोर कुमार, अलका याग्निक की।

0: श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 20 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में गंगाशील गंगाचरण अस्पताल बरेली के डॉक्टर प्रेम कुमार झा, गुर्दा रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें। विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे यानी आज शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई।
1: आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। अगली पसंद के लिए हमें ये मैसेज किया है रविंद्र सिंह छाबड़ा ने नई दिल्ली टैगोर गार्डन से। आपने सुनना चाहा है बहारों की मंजिल फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत है मजरू का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से ये कमेंट हमारे पास आया। सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद यादव, सनोज यादव, अमन यादव, सोनी यादव, अंकिता यादव, विनीता, अनिता, सुनीता, सूरज, श्री यादव और यादव परिवार के सभी लोग, आप हैं परवेज अहमद शुक्लपुरा बनारस से। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रजित खुराना, केशु रिधान और खुराना परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शाहनवाज खान और बीबी नुसरा खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग। बड़िंग खेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा और सभी परिवारीजन। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और इनके परिवार के सभी लोग। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार के लोग। और ये कमेंट हमारे पास आया है गांव रावर जिला करनाल से विनोद लखनपाल और इनके साथी। पूर्वा पिंडौर रायबरेली से जितेंद्र पाल शर्मा, सम्राट पाल, विराट पाल, अशोक पाल और इनके सभी साथी। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश कड़वासरा और युगत। साई की शिरडी से सुरेश, मनोदय, वर्षा, श्रद्धा, मानसी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं कवर कॉलोनी बड़वाहा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली और इनके परिवार के लोग। श्री गंगानगर से सतीश शर्मा,

रोशनी, भावना, गरिमा, हिमांशी शर्मा और परिवारीजन। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी और परिवार के सभी लोग। सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, ग्राम पजौनिया, जिला जालौन से ये कमेंट हमारे पास आया है। सेक्टर 18 जगाधरी, जिला यमुनानगर हरियाणा से आप हैं विनय मोहन खारबन, मीनाक्षी प्लोमा व ईशानी। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और परिवार के लोग। पटियाली रोड गंडनवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, बेबी अरिबा हबीबा और सभी परिवारीजन। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आरिफा, जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, रजिया सुल्ताना और अंसारी परिवार के सभी लोग। ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, हमस, समस, इनाया और साथ में हैं शानूर, फलकनूर, ताज और

वारीजन। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आरिफा, जावेद अंसारी, सुराज अख्तर, जस्मीन, शकीला, सना, शमा, हिना, रजिया सुल्ताना और अंसारी परिवार के सभी लोग। ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान, हमस, समस, इनाया और साथ में हैं शानूर, फलकनूर, ताज और अबान नूर गुप्ता जी। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, पूजा बिक्की रघुवंशी, नंदनी गोलू रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, ललित नारायण भावखड़ से और इनके सभी परिवारजन और मित्रगण। गली शिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर से रत्ना माला मौर्य, मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य, चंद्र प्रकाश मौर्य। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का और परिवार के लोग। आइए सुनते हैं बहारों की मंजिल फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चेक मत कीजिए, RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। धनन भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मस्कीन, आपने सुनना चाहे फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। गीत है हजरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनबी बोट और सभी साथी। ग्राम उल्ला जागीर ईदगाह बरेली से सरताज खान, दानिश खान, वारिस खान, सोनिया, अलीना और इनके परिवार के सभी लोग। दरबार कॉलोनी सनावस से किशोर कुमार सामले, रेखा सामले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारुवी और प्रणब सामले। गुजरात पाटन से धीरज जी रवारी और इनके परिवार के लोग। आप हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोके लाल वर्मा और परिवार के लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है गांव टोरोवाल, जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमार थांडी, प्रियंका थांडी, प्रशांत, प्रियतम, प्रियम थांडी, बेबी बामिका वाड़ी थांडी और परिवार के सभी लोग। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी डिकास्ट्रो, पर्ल डिकास्ट्रो, बिलिस डिकास्ट्रो और इनके परिवार के सभी लोग। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और इनके परिवारीजन। रानीगंज बंगाल से रवि और इंदर का कमेंट हमारे पास आया है। पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे, भाविक डिंगरा और इनके परिवारीजन। ये कमेंट हमारे पास आया है उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से और इनके सभी परिवारीजन। आप हैं राजेंद्र गंगवार, प्रेमपाल गंगवार, कस्बा केवलड़िया, नवाबगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश से। साथ में हैं धर्मवीर गंगवार, सचिन, अनुज, अनमोल, कमलेश, तुलाराम, अंकुश मौर्य, राजू, चंद्रपाल, उल्फत शर्मा, बबलू गंगवार, वेदपाल गंगवार, संजीव गंगवार और इनके सभी मित्रगण और परिवारीजन। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। आप हैं हमारे श्रोता। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहाड़कर, राही श्रीमती सरिता गुहाड़कर, प्रिंस एकांश गुहाड़कर और बदलापुर मुंबई से आप हैं प्रणीता गुहाड़कर, सिद्धांत, अर्जुन टुकटुक और आकार हाइट्स। बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गुहाड़कर, सुमित, मिस धवनी गुहाड़कर परी और इनके परिवार के सभी लोग। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभड़ी महाराज से रूपेश संगई, महेश, प्रगेश, प्रतेश और पूरा संगई परिवार। आप हैं हमारे श्रोता। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये कमेंट हमें भेजा है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजूलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुमार, रामानंद कुशवाहा और इनके सभी साथी। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से ये कमेंट हमारे पास आया है। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल। आप हैं हमारे श्रोता। सागर लखनऊ मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे और इनके परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है मोहम्मद हफीजुर रहमान, हबीब मलिक, खलील मलिक, अली रहमान और इनके सभी साथियों का, लेकिन इन्होंने अपना पता नहीं लिखा। तो आइए सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत आप सभी की पसंद पर।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर

के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अभी तेरे

गांव नथाना पंजाब से ये कमेंट हमारे पास आया है हरजिंदर सिंह छिंदा। जसबीर जस्सी सीता और गीता राव ने सुनना चाहे फिल्म उपहार का ये गीत। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत है, आनंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फ़हीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ में हैं आदर्श दिवाकर।

दिवाकर, यश पाल दिवाकर, ओमेंद्र पुरी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी, रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से, राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नत्थू लाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और इनके सभी परिवारजन, छबीलपुर गुन्नौर यूपी से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांश कश्यप, गायत्री कश्यप और इनके सभी परिवारजन, सोमेंद्र यादव हरियाणा से और श्यामनगर नवादा आईएमटी फरीदाबाद से ये कमेंट हमें किया है। आप हैं निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। ये कमेंट हमारे पास आया आर्य नगर कोहका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरत जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित, शकुन, आरोशी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। बहड़ी से इश्तियाक अहमद इदरीसी, करार अहमद इदरीसी और इनके परिवार के लोग। आप हैं कस्बा वाराणा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह और इनके सभी साथी। उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से आप हैं बेरूलाल बख्तारिया धाकड़, भोला बख्तारिया, प्रवीण रियांश, प्रतीक बख्तारिया और परिवार के सभी लोग। आप हैं संजीव शर्मा ग्राम लखमपुर पोस्ट बोहित थाना भोजीपुरा जिला व तहसील बरेली से, पुराना तालाव डुबराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, जेल रोड बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। मुकेश गौतम, सुनील गौतम, चंदोसी रोड से ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से और ये कमेंट हमारे पास आया है। हमारे भेजने वाले श्रोता हैं सब्जी मंडी कस्बा उसाबा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से धर्मवीर, कश्यप, उषा, ध्यानपाल, संजय, अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके सभी परिवारजन। आप हैं हमारे श्रोता। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू और बब्बू। शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, सिद्दीकी मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और इनके परिवार के सभी लोग। धनोरी तेलीवाला से निसार अंसारी, नौशाद अंसारी, बेबी आलिया, आयान बाबू और इनके परिवार के लोग। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, दोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और इनके परिवार के लोग। बारसी क्लब सिंधौली मीरगंज से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और इनके परिवार के लोग। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकुला से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा, आयशा, उमर अंसारी और समीना अंसारी। तो आइए सुनते हैं उपहार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, और आवाज़ें हैं शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर की, गीत है एसएच बिहारी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, और पसंद किया है सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ ने। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नजत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई, दानिश भाई अंसारी और पप्पू भाई अंसारी। आप हैं प्रमोद कुमार साहू, बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांश साहू। ये कमेंट हमारे पास आया है, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत और इनके परिवार के सभी लोग, बहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम और इनके परिवार के लोग, मोहल्ला शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौसर और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव, हर्षित शर्मा और परिवार के लोग। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा और इनके परिवार के सभी लोग। शनि बाजार कस्बा उगैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन देव गुप्ता, प्रियाल कायरव गुप्ता और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म प्यार झुकता नहीं, फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। सबरंग में आइए सुनते हैं ये गीत शान की आवाज़ में।

पराजी हट के पराजी बच के। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सबरंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:15 हुए हैं और आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम झुमका किरारे। आज का ये प्रोग्राम बेस्ड है हजरत दूल्हे शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के विषय में। तो आइए आप और हम मिलकर सुनते हैं ये प्रोग्राम।

0: शहर के तो आते ही आते हैं, लेकिन शहर से बाहर के लोग बदायूं के भी आते हैं और अलीगढ़ के भी आते हैं जैसा कि मेरी जानकारी में है, और औला ये सभी लोग आते हैं इधर के, बराबर आते जाते रहते
1: जी। देख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। श्रोताओं, आइए बातचीत करते हैं दरगाह कमेटी के एक और मेम्बरान से। जी, आपका नाम?
2: इरशाद मियाँ।
1: इरशाद मियाँ, कहाँ रहते हैं आप?
2: नहीं रहते, बाजार संदल खां।
1: बाजार संदल खां में आप रहते हैं, और दुला मियाँ की जो दरगाह है वो नेशनल हाईवे पर यहाँ स्थित है। तो इस दरगाह को कितना वक्त हो गया लगभग?
2: भाई, दरगाह को कितना वक्त हो गया ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन 54-53 साल से हम देखते चले आ रहे हैं। जब से हमारी पैदाश हुई है हम यही उर्स देखते चले आ रहे हैं, और 20 मई से शुरू होकर 24 मई तक चलता है ये, हमेशा से देखा। अब उससे पहले के लोग जिक्र करते थे कि ये दरगाह बहुत पुरानी है, लोग समझे, हमारे सामने लोगों ने जिक्र करा, 100-100 साल के होके चले गए, गुजर गए, तो जाहिर सी बात है कि ये दरगाह तो बहुत पुरानी है, समझे, लोग जिक्र करते हैं हमसे पहले के लोग।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि दरगाह काफ़ी पुरानी है, तो कुछ ऐसी करामात हज़रत दुला मियाँ शाह रहमतुल्लाह अलैह की जो आपने कभी बुज़ुर्गों से सुनी हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके बारे में आप बताएं हमारे श्रोताओं।
2: हमने एक करामात इनकी बहुत ख़ास तौर से सुनी कि जो लोग अंधे हो जाते हैं, जैसे कि नाबीना हो जाते हैं, उनकी आँखें चली जाती और वो यहाँ आते हैं तुरंत तो ठीक हो जाते हैं। हमने ये बहुत से लोगों से सुना, देखा भी है। करामात की तो ये बात है कि आप बीच हाईवे पे हैं और यहाँ पे उर्स के दरमियान कोई हादसा नहीं होता, कोई बात नहीं होती है, ना कोई एक्सीडेंट होता है, और इतना हाईवे चलता है, बेशुमार हाईवे चलता है, लेकिन कोई वारदात नहीं होती। बहुत हज़ारों के हिसाब से पब्लिक होती है हमें, जिसमें बच्चे बूढ़े हिंदू मुस्लिम सभी लोग होते हैं, लेकिन कभी कोई वारदात नहीं हुई उर्स के दरमियान, हमने नहीं देखी।
1: क्या बात है, आपने बहुत अच्छी बात इरशाद मियाँ साहब आपने कही कि उर्स के दौरान, क्योंकि हाईवे पर आपकी दरगाह कायम है और यहाँ पर यातायात चलता रहता है, लेकिन कभी कोई ऐसी वारदात नहीं हुई जिससे कि यहाँ के यातायात को कोई किसी तरह की दिक्कत या परेशानी हो, और सभी मज़हबों के लोग यहाँ पर आते हैं अपने मन की मुरादें लेकर, और आपकी निस्बत से, आपकी दुआओं से उन मुरादों को पूरा करके जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम झुमका गिरारे, और आज हम पहुंचे थे हजरत दूल्हे शामिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर, और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सब प्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
0: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
0: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि यह कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
0: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहाँ अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहाँ वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं।

0: जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षावन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
0: जी
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
0: जी एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है।
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र

0: फर्क क्या पड़ता है?
1: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
0: जी
1: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
0: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है। समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है,
1: जी
0: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
1: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
0: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
1: जी
0: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
1: जी यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है,
0: जी
1: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
0: जी विमृष जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
1: जी
0: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
1: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो,
1: जी
0: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
1: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
1: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था, और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
3: बादल, बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं।

0: मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
0: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव

0: विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे बार भी नहीं लगी। अरे
2: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा

0: स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: नहीं करने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
3: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
3: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं?
4: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
5: गौरमा,
4: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
4: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
4: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
4: चलो हम सब तैयार हो जाए।
3: बिल्कुल,
4: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ, हाँ,
1: सब तैयार हैं।
6: किसी
1: भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
6: नहीं कटने देंगे,
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
4: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान,
4: मिट्टी पानी और बयान,
6: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
7: अरे
8: क्या कर रहे हो?
9: भूखे ताक रहे हो?
7: अरे शुरू
9: करो।
8: अरे भाई कौन है? रुको, इसे हम चल जाएंगे पेड़ से।
4: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
7: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से?
7: मैं इनकी बातों में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
8: चिपक जाएंगे।
4: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आज
5: नहीं लगाने देंगे।
4: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
7: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

0: वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
4: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नार्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद फंसे रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद यह छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। औरैया जिले में अजीत मल कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर बीती रात करीब 1:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर पलट गई और उसमें बैठे कई लोग नीचे दब गए। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इटावा सफारी पार्क में खुशखबरी आई है। 9 साल के इंतजार के बाद रोहतक जू से 7 साल की रोशनी, क्षमा कीजिएगा, शेरनी सुधा इटावा पहुंच गई है। सोमवार को सफारी की टीम उसे सुरक्षित लेकर आई। सभी शेरनी को लायन हाउस 1 में 21 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया है। सीसीटीवी और डॉक्टरों की टीम उसकी सेहत पर नजर रख रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब अली।
0: जहाँ हर घर में बजता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

जी 12:04 का वक्त और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जी हाँ शत्रुपा का, जिसमें हर दिन की तरह कुछ ना कुछ खास लाई हूं मैं आपके लिए, और वो भी आज बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम करेंगे आपके साथ। तो क्यों ना एक बेहतरीन सा ट्रैक भेज दें आप तक। तो चलिए ट्रैक भेजते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे बातें करते हैं कि आज दिन है ट्यूसडे और क्या बातें करते हैं हम ट्यूसडे के दिन। तब तक आप गेस करिए और एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक एंजॉय करिए।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी दोस्तों, 12:13 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। और अभी आपने एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रैक सुना था, लो चाय उल्फत हो गया। जी हाँ, इसी गाने के साथ प्रोग्राम शुरू हो चुका है और आज हम क्या बात करने वाले हैं, बस आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे के दिन हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग की। जी हाँ, वही फैशन जो हम महिलाओं की सुंदरता में लगा देता है चार चांद। तो आज के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टाइलिश सलवार की जो आपके लुक को एनहांस करेंगे, साथ ही आपको देंगे एक बेहतरीन और गॉर्जियस लुक। तो वो कौन कौन से सलवार हैं जिसको आप पहन के लगने वाली हैं स्टनिंग, तो उसके लिए कुछ देर वेट करना होगा और उससे पहले एंजॉय करना होगा ये बेहतरीन सा गाना जो मैंने क्यों किया है आपके लिए। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर, फिर आते हैं लौट कर और बात करते हैं कि किन किन स्टाइल्स की सलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स में।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

जी 12:21 का वक्त और बातें शुरू होने वाली हैं कार्यक्रम शत्रुपा में कि किन किन शलवार को आप कैरी कर सकते हैं इन समर्स। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टाइलिश सलवार के साथ आप दिखेंगी एलिगेंट। तो आपको बता दूं कि अगर आपके वार्डरोब में प्लाजो लेगिंग्स की भरमार है तो उन्हें फिलहाल पीछे रखना ही बेहतर है, क्योंकि फैशन बदलता है। जो आज ट्रेंड में है वो कल आउट ऑफ फैशन हो सकता है और लौट भी सकता है। जी हाँ भाई, जो फैशन होता है वो आउट ऑफ फैशन भी होता है और उसको लौटते हुए भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन जो प्लांट प्लाजो लेगिंग्स ने कुछ समय के लिए सलवार की जगह जरूर ले ली है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पैंट लेगिंग और सलवार ने जरूर ले ली है लेगिंग्स में जगह उनकी, लेकिन अब सलवार जो कि हमारी पहली पसंद हुआ करते थे आ चुके हैं नए और मॉडर्न अंदाज में। तो बातें तो अभी और भी, पर उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक आ रहा है आप तक। तो चलिए एंजॉय करते हैं प्यारा सा गाना आप तक।

जी दोस्तों, 12:26 का वक्त और प्रोग्राम शुरू हो गया है शत्रुपा जी। हाँ, जो जिसमें हम बात करते हैं आपके फैशन को लेकर। जी आज का जो दिन होता है, आज का जो सेगमेंट होता है शत्रुपा में, वैसे तो हर दिन कुछ ना कुछ खास होता है आपके लिए, लेकिन जो आज का सेगमेंट है मुझे लगता है उसमें सभी जितनी भी हमारी महिलाएं सुन रही है ना प्रोग्राम, बहुत ज्यादा रुचि होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। जी हाँ, और वो है फैशन। और फैशन में जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है शलवार, कि किस तरीके की शलवार जो हम लोगों ने पहनना छोड़ दिया है, लेगिंग्स और प्लाजो की जो भरमार हमारे पास हो गई है, पैंट्स की भरमार हमारे पास हो गई है, और हमने कहीं एक किनारे शलवार को रख दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सलवार सूट एक ऐसा परिधान है जो हर उम्र, हर बॉडी टाइप और हर रंग रूप पर फबती है। वहीं अगर बात हो सलवार की, तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका आरामदायक होना। अच्छा, जब भी हम पहनते हैं, जैसे लेगिंग्स पहनी, प्लाजो पहनी या पैंट्स हम कैरी करते हैं, तो एक मन में कभी चीज हमारे चलती जरूर है कि अच्छा जब सलवार पहनते तो उसमें कितना कंफर्ट था। लेकिन जो ट्रेंड में है तो हम सोचते हैं कि नहीं, लेगिंग्स ही पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, प्लाजो पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, और हमने सलवार को बिल्कुल अनदेखा कर दिया। और आपको पता है ऑफिस, कॉलेज या कैजुअल आउटिंग, हर जगह यह आसानी से कैरी की जा सकती है। जो हम लोग पहनते थे, कभी एक टाइम था जो सबसे ज्यादा सलवार, सूट सलवार पहने जाते थे। क्योंकि आज हम महिलाएं ऐसे कपड़े चुन रही हैं जो स्टाइलिश होने के साथ साथ आरामदायक भी हों, और सलवार इस कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। तो जरा आज गौर फरमाइएगा कि किन किन स्टाइलिश सलवार को हम आज आपको बताएंगे, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, जिसको आप परचेज कर सकते हैं और स्टिच भी करवा सकते हैं, और उसको पहनकर आप लग सकते हैं गॉर्जियस। तो हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आने के लिए बेकरार है आप तक। तो चलिए ये प्यारा सा गाना सुनते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सलवार आप पहन सकते हैं और उसको पहनकर आप लग सकती हैं बहुत ही ज्यादा प्यारी, खूबसूरत, और लोग कहेंगे देवा।

0: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
1: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
2: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
1: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
2: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ भाई, जब इतनी इतने अच्छे अच्छे आप जब शलवार स्टाइलिश सलवार पहन के निकलेंगे तो लोग क्यों नहीं दीवाने होंगे। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि किन किन नए स्टाइल्स के साथ आप अपने को दे सकती हैं स्टनिंग लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्शी सलवार का। जी हाँ, फर्शी सलवार का फ्लोई लुक जो फेस्टिव मौकों के लिए बहुत बेहतर है। जब फेस्टिवल टाइम होता है तो ये जो फर्शी सलवार होती है ना, एक अलग आपको लुक देता है, बिल्कुल हटके आप लगते हैं। और बात करें धोती स्टाइल सलवार की तो ये आपको देगा फ्यूजन लुक। और पैनल और ट्यूलिप डिजाइन की तो बात ही क्या। जी हाँ, पैनल और ट्यूलिप डिजाइन इतना देखने में एलिगेंट लगता है, इतना सुंदर लगता है कि शब्दों में एक्सप्रेस आप नहीं कर सकते। और ये अपने यूनिक डिजाइन के कारण पसंद की जा रही है, इतना यूनिक है कि इसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और सिगरेट पैंट स्टाइल सलवार ऑफिस वेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ये स्मार्ट और क्लीन लुक देता है। तो हमने अभी आपको बताया फर्शी सलवार के बारे में जो है फेस्टिव मौकों के लिए बिल्कुल बेहतर। और इसके अलावा धोती स्टाइल सलवार जो आपको देगा फ्यूजन लुक। और उसके बाद हमने बात करी थी पैनल और ट्यूलिप डिजाइन के सलवार की। और फिर हमने बात करी सिगरेट पैंट स्टाइल सलवार की। तो ये जो मैंने नाम बताए ना आपको, अगर आपने अभी इससे अवगत नहीं थी, आपको नहीं पता था, बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और इस तरीके की सलवार आप जरूर से ट्राई करिए। और भी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है, और भी बातें हैं जो आपसे करनी है, लेकिन जब आप ये जो चार तरीके की हमने चीजें बताई आपको, फर्शी सलवार और धोती स्टाइल सलवार के बारे में, पैनल और ट्यूलिप डिजाइन के बारे में, और सिगरेट पैंट के बारे में, तो जब आप इसको पहनेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे जरा उसको सुन लेते हैं। वो कहेंगे चल तेरे

जी 12:46 का वक्त और आपकी दोस्त शिखा है आज आपके साथ कार्यक्रम शत्रुपा में। और आज का जो टॉपिक है वो है फैशन डिजाइनिंग, और उसमें हम बात कर रहे हैं कि किन किन स्टाइलिश सलवार को कैरी करके आप लग सकती हैं एलिगेंट। तो अभी हमने बात करी थी चार ऐसे सलवार के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया, डिस्क्रिप्टिव वे में बताया कि कैसे आप इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाजो और शरारा वो भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उभारते हैं आपकी पर्सनालिटी को। और अगर आपने अभी एक एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा, जी हाँ एंकल लेंथ सलवार भी बहुत खूबसूरत लगता है, तो अभी तक अगर आपने एंकल लेंथ सलवार नहीं ट्राई करा है तो अब उसकी बारी है। जो सिंपल कुर्ती के साथ देता है लाजवाब लुक। तो बहुत ढेर सारे हमने सलवार के बारे में आज बात करी, और मुझे लगता है जो लोग नहीं भी जानते होंगे कि अरे इतने ज्यादा टाइप है सलवार में, हम इसको कैरी अरे क्यों नहीं कैरी किया अभी तक, तो अभी भी मौका है। आप इन जितने भी सलवार मैंने आपको बताए, बहुत डिजाइनर लुक होता है, बहुत एलिगेंट, बहुत स्टनिंग दिखते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। और जब सलवार की बात आती है ना दोस्तों, तो एक अलग से मतलब आप इमेजिन करिए, इतना कंफर्टेबल होता है ये, और ये जो गर्मी है ओहो, वो चिलचिलाती गर्मी, और उसपे लैगिंग और जीन्स पहनना तो एक कहीं हद तक बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है। तो जो पहले आराम हमें मिलता था और वही वो कहीं हमने छुपा दिया था बिल्कुल फैशनेबल दिखने के चक्कर में, लैगिंग्स को पहनकर, पैंट्स को पहनकर, जीन्स को पहनकर, तो वो तो आप कैरी करिए, अल्टरनेट डेज पे आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये सलवार है ना, ये अपनी जो महत्वता है वो एज इट इज रखे हुए है, और वो कहीं भूल गया, वो आप लोग भूल गए थे, तो उसको अब आप ट्रेंड में लाइए। और ये जो मैंने जितने भी टाइप्स बताए हैं इसको एक बार ट्राई जरूर से करिए। तो देखिए आज हुई ना कितनी काम की बातें इस सेगमेंट में, और अभी और भी कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे फैशन टिप्स हैं जो आपको देने हैं भाई। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि बने रहना है अपनी दोस्त शिखा के साथ और सुनते रहना है 100.7 FM रेनबो, जो है धड़कन लखनऊ की।

जी 12:54 का वक्त। और देखिए ना, आपसे बातें करते करते कितना जल्दी समय यूं चुटकियों में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और ये समय कह रहा है कि अभी वाइंड अप करना होगा प्रोग्राम शद्रुपा को, लेकिन उससे पहले जो एक प्रॉमिस किया था आपसे कि कुछ फैशन टिप्स देना है आपको, तो चलिए वो फैशन टिप्स दे देते हैं आपको। तो भाई आपको कुछ चीजों का जरूर से ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रोजमर्रा के लिए कॉटन, रेयॉन और जॉर्जेट

फैब्रिक बेहतर है। तो आपको अगर रोज के लिए कपड़े खरीदने हैं, रोज के लिए कुछ भी चीजें लेनी हैं, तो आपको वो खरीदना होगा कॉटन, रेयॉन और जॉर्जेट फैब्रिक में। और खास मौकों के लिए आप सिल्क और चंदेरी बहुत ही बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। और रंगों की बात करें तो आप रंगों में पेस्टल शेड, सॉफ्ट प्रिंट्स और न्यूट्रल टोन को अपनी पसंद में शामिल कर सकती हैं, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो अगर आप एक परफेक्ट आउटफिट चाहती हैं, तो परंपरा और ट्रेंड का सही मिश्रण बहुत जरूरी है। तो शलवार के ये जो जितने भी स्टाइल्स आपको आज हमने बताए, तो वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगे। और इस बार इस समर्स आपको जरूर से ट्राई करना है। और देखिएगा तो भाई, आप एक बार ये जो सेगमेंट है ना आज का, उसको याद जरूर करेंगे कि वाह क्या सेगमेंट था उस दिन का और क्या हमें टिप्स मिले। तो इसी के साथ अब हम प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और लेकिन आपको कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि शिखा अभी आपके साथ रहेगी प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। तो बस बने रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

एफएम पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एफएम रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। दोपहर के 1 बज चुके हैं, आइए अब सुनते हैं आपके पत्रों पर आधारित पसंद के गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। दिल की दहलीज पर यादों के दिए रखे हैं और मैंने आज तक तेरे लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। दिल पर क्या गुजरी है बताया नहीं है मैंने तुझको, कितने ही खत आज भी तेरे नाम के लिखे रखे हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम अनुरोध गीत में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारे खत हैं और उन खतों में है आपके अनुरोध भरे गीत। शुरुआत करते हैं इस पहले खत से। बरली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज, प्रदीप पाल नमन, श्री राम राठौर, सोनू मिश्रा, विनेश सिंह चौहान, आपने सुना चाहे फिल्म डोली सजा के रखना का ये गीत सुखविंदर सिंह और रानू मुखर्जी की आवाज़ में। गीत है महबूब का, संगीत ए आर रहमान का। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, राम प्रसाद शर्मा। गैगटा काशी धर्मपुर बरेली से फहीम खान, सिद्दीक अली साबिया। दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई और अफजाल भाई। आप हैं परी महल, काजगंज से आबाद खान, नवील खान, आरफा खान, इल्मा खान। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान, जमीर खान। आप हैं कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और इनके सभी परिवारजन। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज, जिला बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेराज जहां, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी और मन्नत। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक अली, साजिद अली। बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म डोली सजा के रखना का ये गीत।

निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाबिया फातिमा, बाबर अजीम, हमजा और इनके साथ में है आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्रपुरी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी। आपने सुना चाहा है फिल्म परिणीता का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गीत है सवानंद किरकिरे का और संगीत है शांतनु मोहित्रे का। इसी गीत को सुनने के लिए अनुरोध भरा खत हम तक भेजा है रामपुरा किसानान मजरिया सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा और इनके सभी परिवारजन और मित्रगण। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका पुरानामिका, उत्कर्ष नेताम आप हैं। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, असित, अमित वर्मा, सचिन, समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप हैं दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सुमेंद्र यादव, आनंद यादव, अमन यादव, सोनी, बिनीता, सुनीता, पुष्पेंद्र, सनोज, केशव, अंकिता, अनीता, सूरज श्री यादव और यादव परिवार के सभी लोग। गंज डुंडवारा से मुनव्वर लल्ला, नजरीन मिर्जा, अरबाज खान, शहबाज खान, सूफिया महबूबा, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महजबी शेख और साथ में बादाम अली, किशमिश जहां। ये खत हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी का, साथ में है गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आइए सुनते हैं फिल्म परिणीता का ये गीत सुनिधि चौहान।

श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 20 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है, गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में गंगाशील गंगाचरण अस्पताल बरेली के डॉक्टर प्रेम कुमार झा, गुर्दा रोग विशेषज्ञ उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुन लें, विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे, यानी आज शाम 4 बजे। और हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद 100.4 FM पर।

ये ख़त हमें भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निज़ार और मस्तान बाबा ने। आपने सुनना चाहा है फिल्म दिल्ली सिक्स का ये गीत कैलाश खेर और जावेद अली की आवाज़ में। गीत है प्रसून जोशी का और संगीत ए आर रहमान का। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। आप हैं मोहल्ला गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, मोहम्मद अजीम शमशी, मोहम्मद सलीम शमशी, मोहम्मद नवैद शमशी, रजिया शमशी बेबी और राजा बाबू। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, साथ में है नीवान शर्मा। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी श्रीवास्तव और इनके सभी परिवारजन। आप हैं अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप और इनके सभी परिवारजन। ये संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमारे पास खत आया है इस्लामुन निशा, सलीम अहमद और मोहम्मद दानिश का। आप हैं मनगारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगहना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह, मासूम, धर्मवीर, मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, ममता चौधरी, ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और साथ में हैं सारांश।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। अगला खत हमें आया है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से। जीशान वारसी इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इराम गुड़िया, शोएब खान और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुनना चाहा है फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का ये गीत जसविंदर नरोला व साथियों की आवाज में। गीत है समीर का, संगीत अनु मलिक का। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ बैशरब कॉलोनी सनाबत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा। आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर,

अमनदीप और इनके सभी साथी। ये खत हमारे पास आया है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप कोगुलानी, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, सोनिया कालरा और जगमोहन प्रजापत का। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार और इनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का ये गीत जसविंदर नरोला व साथियों की आवाज़ में।

जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार मोहम्मद आसिफ। आप हैं कटर चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से। अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम का इलाज, सुनील, खुशबू अरोई और मौर्य परिवार के सभी लोग, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, ककराला बदायूं से मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, विकास सक्सेना, धर्मवीर, प्रवीण रावत, अनिल नागर, सागर बख्शी, भरत यादव और इनके सभी मित्रगण, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और सभी परिवारजन। आप हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तफा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कडनकर और वैशाली कडनकर, पद्मा टाकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और इनके सभी परिवारजन, जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल पंकज काजल।

सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और इनके सभी परिवारीजन, गांव लोहड्डा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन देवी, सुधीर नूतन और भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी, आप हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डींगिया, नमन डींगिया, अपार डींगिया, जिला मुरादाबाद।

सिंगिया, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून और इनके परिवार के सभी लोग। गंजडुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी। चरडोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू और इनके परिवार के सभी लोग। छबीलपुर गुन्नौर यूपी से हरवेश कश्यप, अर्जित कश्यप, दिव्यांग कश्यप, गायत्री कश्यप और निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागनी और मुस्कान। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजित कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल। दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल। कस्बा बाराडा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल और इनके परिवार के सभी लोग। नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, चरौदा बार, नवापारा, जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। तो आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। जावेद अख्तर का गीत है, संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, आवाज़ है जसविंदर नरूला की, गीत है समीर का, संगीत नदीम शर्मा का, और अनुरोध किया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बमलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार और इनके सभी परिवारजन, गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश बगाड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगाड़िया, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम सुरलकर और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत की सुताशु, अर्णब आनंद, सत्यम आनंद, पाकुड़ झारखंड से, बोड़ा गांछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और इनके सभी परिवारीजन, राजकमल रेडियो श्रोता संघ जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद नोयान, सैयद निजामुद्दीन, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय और इनके परिवार के सभी लोग, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निजार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू और परिवार के लोग, आप हैं हमारे श्रोता सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा गौड़, उगती उत्तर प्रदेश जिला बदायूं से सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी, सादिक सिद्दीकी और परिवार के लोग, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सुहाने, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी सुहाने और परिवार के लोग, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रा रेवाड़, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बलगुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी और हसन सिक्का, आभनशनी बाजार कस्बा उगैती से प्रभाकर गुप्ता, अवधेश गुप्ता, सचिन गुप्ता, देव प्रियाल, कायरा गुप्ता और परिवार के सभी लोग, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, आप हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और परिवार के सभी लोग, तेलंगाना भुवनगीर से मोहम्मद बुहारुद्दीन, ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी लोग, ओल्ड लिसनर ग्रुप रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, गांव हीरावाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमाल गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके परिवार के सभी लोग,

एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेगा मस्किन चंडीगढ़ से आप हैं राहुल खुराना, रशीद खुराना, केशुरीधान खुराना और परिवार के लोग। गंगवार बैगलाइन बरेली से बिचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेंद्र देव, इला देवी गंगवार, बर्फा देवी, सुनील यादव, संजय अग्रवाल, अश्वनी कुमार मौर्य, मास्टर विनोद दीक्षित और राज महावीर कश्यप, रमेश चंद सैनी, रोबिन भाई और इनके परिवार के सभी लोग। कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता, हेमानी हर्षिता, अभिषेक और श्रीवास्तव परिवार के सभी लोग। गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल विकास, रोशनी और शगुन बारासा। आप हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग, पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से ही ये खत हमारे पास आया है। नितेश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन, ग्राम पोस्ट नगरिया विक्रम तहसील फरीदपुर जिला बरेली से राज सिंह प्रजापति, अनारकली प्रजापति, रुपिंदर प्रजापति, पूजा, यश, दुष्यंत, वंदना, प्रियंका, गार्गी और भोलू। ये खत हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया और उनके परिवार के सभी लोगों का। आप हैं हमारे श्रोता। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म दिल का रिश्ता का ये गीत जसविंदर नरूला की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत फिल्म का नाम है कॉरपोरेट। आवाज़ कैलाश खेर और सपना मुखर्जी की, गीत है संदीप नाथ का और संगीत है समीर टंडन का। और अनुरोध किया है आप सभी ने, मारारा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवैद हसन, रसीद बारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं जवाहरनगर उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी और परिवारीजन, गिरगांव महाराज से गजानन नादरे, मारोतराव पांचाल और इनके परिवार के सभी लोग, शाही मार्केट सिवारा जिला बिजनौर से आसिफ चौधरी, अराफात अदीब और कदीर चौधरी। आप हैं हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती ऋषि, राहुल गाड़ीखाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। बड़ंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली, आरती खेड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातमा सोगरा। आप हैं सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन नवदीप, कैलाश और एले परिवार के सभी लोग। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और इनके परिवारीजन। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ और इनके परिवारीजन। कस्बा उगहती से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और सभी परिवारीजन। कुलस्वामिनी रेडियो क्लब श्री रामपुर भोकर महाराष्ट्र से आप हैं हरिभाऊ बिडवे, अनिकेत, शुभांगी और अनीता। ये खत हमारे पास आया है विमल वर्मा मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीरवीज से, साथ में हैं इनके विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा। आप हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती ऊषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी। आप हैं ग्राम पजौनिया जिला जालौन से संदर कुमार चंसौलिया, सार्थक, आदर्श, अलौकिक चंसौलिया, विनय मोहन, खारबन, मीनाक्षी, प्लोमा व ईशानी। सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से आप हैं हमारे श्रोता। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और ये खत हमारे पास आया है ग्राम मऊआ मजुआ गंगापुर भोजीपुरा से हसमुख जी, हसान, समस, इनाया, शानूर, फलक नूर, ताज और साथ में है मोहम्मद अवानूर। आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म कॉरपोरेट का ये गीत कैलाश खेर और सपना मुखर्जी की आवाज़ में।

कॉरपोरेट फिल्म के इसी गीत के साथ अनुरोध गीत अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये दिन के 2 बजे हैं, पर अब हम लेकर उपस्थित हुए हैं गजल कव्वाली और लोकगीतों के सफर को। इस सफर को हमने नाम दिया है रस रंग।

0: कैसर आज़ाद बदायूनी की आवाज़ में इस कव्वाली के बाद लीजिए लेकर हाजिर हुए हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को लेकर।
1: खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, खुशबू ख्याल रंग के नगमा कहूँ तुझे, हैरान हूँ तुझको देख के मैं क्या कहूँ तुझे।

पंकज उदास की आवाज़ में इस गज़ल के बाद कार्यक्रम रसरंग अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगरी में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल के

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
3: वो जब याद

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत से सजा हुआ। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
4: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
5: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
6: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
7: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर, जो कि है हमराही फिल्म से।

0: सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
0: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
1: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
0: अरे धन्यवाद। और हम सच में बहुत अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं
1: और जब कोई ऐसे हमारे लिए कोई पूछता है तो कितना अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल है ना। और इसलिए तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता एक बार अगर सुन भी लेना कि आप सब कैसे हैं तो कहीं तो ऐसा लगता है कि हम कोई तो है हमारा जो हमसे पूछ रहा है हमें जान रहा है
1: ख्याल रखने वाला
0: जी।
1: है ना। विषय बता दे।
0: चलिए
1: बातें हल्की फुल्की। इसमें एक विषय है कि परीक्षा परिणाम यानी कभी पड़ी मार तो कभी मिले उपहार। तो दीपा आपसे ये सवाल है कि आपको कभी उपहार मिले हैं या मार पड़ी है या दोनों ही हुआ है?
0: मार नहीं पड़ी। मार हाँ एक बार क्लास में पड़ी थी वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे। हाँ। वो क्यों पड़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मार नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना वो हमें नहीं डांटते थे वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये। बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे,
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी की आंखों के तारे होते हैं और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं है ना?
1: सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है
1: और
0: हम
1: उसको कचोटते रहता है
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाए। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने, बहुत सुंदर गीत।
0: बिल्कुल, और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आंख के तारे हो जाते हैं।
0: बस मैं मन में सोच रही थी, शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा, ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा, सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना।
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना, और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल,
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्त क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारी आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकते हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता ना नाराज

0: जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, कि आंखों का तारा होना मुहावरे का तो बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है। उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं। फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला, हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते
1: देखते
0: हैं
1: हैं
0: कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
1: मिलती
0: कितनी
1: है
0: मिलती
1: नहीं।
0: है
1: जी
0: ना।

0: मोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आंख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: तो
0: कहा।
1: जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो। अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई। हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं,
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं। माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं।
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है, अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: माँ तो हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो, ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना, हम जैसे कि पछतावा होने लगता है।
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में,
0: हाँ,
1: तब तो और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा, जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुंचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानि या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखें आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा।

0: आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं, और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और हमारी गलतियां हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े, और फिर देखिए ना अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सुनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। जिंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है।
0: हो जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पड़ जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल

0: जाता
1: ऐसा
0: है।
1: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
0: बिल्कुल,
1: बोध।
0: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी-कभी कहीं-कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना, तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहां भी
1: वो
0: काम आई
1: आंख
0: है।
1: का तारा होते हैं ना बच्चे।
0: हाँ इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था, अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था, मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
0: क्या
1: है।
0: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था, और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था, वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे, आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा, BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी, हाँ इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं, इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है, ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का, ये वो इस समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद, और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त
1: पूरा
0: तरीके
1: लेखा
0: से,
1: जोखा लिख
0: और
1: दिया,
0: बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा
1: पूरा
0: लग रहा है
1: चित्र आ गया
0: हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं
1: ऐसे
0: सामने
1: ही।
0: लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: और तो, अब

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाये, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए, तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती है, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो अब आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको गिफ्ट देना होगा।

0: अनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट, मुझे तो याद नहीं हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। शाम के 4 बजे हैं। तो समय है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमारे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने का। तो आज के जिस दीवाने को हमने शामिल किया है, आप हैं निसार अहमद अंसारी।
1: मैं नाज रेडियो क्लब करेटी जिला बरेली से निसार अहमद अंसारी रेडियो लिसनर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मैं सभी केंद्र के अधिकारियों को और सभी अनाउंसरों को, कंपेयरों को, एंकरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आकाशवाणी ने 90 वर्ष पूरे करने पर हमें बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी के जरिए सुनने को मिले और आकाशवाणी के जरिए हमें बहुत ही नॉलेज और जानकारी हासिल हुई और मैं लगातार सारे केंद्रों को सुनता रहता हूँ और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने और बहुत ही पुराने गाने रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से सुनने को हम तक मिलते हैं। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात आकाशवाणी के जरिए ही साझा करते हैं। बाकी आकाशवाणी से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ

0: जीतता चला आया हूँ। आपकी आकाशवाणी से हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम जरूर पेश होते हैं। जैसे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी आता है, किसान भाई बहुत ही फायदा उठाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। बाकी पुनः चलते चलते फिर आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी जानिब से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
1: FM 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।

0: आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली, और जरा घड़ी की ओर देखिए तो 4:05 हो गए हैं और ये टिक टिक करती सुई हमें और आपको बता रही है कि समय हो गया है जब हम लेकर हाजिर हुए हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमें दिन में 2:30 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 0581-2517200। वहीं फेसबुक पर मैसेजेस के जरिए भी आप कार्यक्रम में भागीदारी कर सकते हैं। इसके लिए आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और आज के प्रश्न से जुड़े आपके जो विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। फिलहाल जो दिन में हमें फोन कॉल्स मिली उनको अब सुनते हैं कि पहले श्रोता कौन है जिनकी फोन कॉल हमें मिली। हेलो।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: धीरज सिंह चौहान बरेली जंक्शन से बोल रहा हूँ।
0: धीरज सिंह चौहान बरेली जंक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज जी, हमारा आज का विषय है आपके फैमिली डॉक्टर कौन हैं और कैसे होने चाहिए।
1: पहला डॉक्टर तो घर का सदस्य, माँ है, बाप है, जैसे ये लोग बताएं उसी हिसाब से चलना चाहिए, कभी स्वास्थ्य बेकार नहीं होगा।
0: बिल्कुल, जो माँ होती हैं वो तो ज्यादातर अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर बड़े सचेत रहती हैं।
1: जी,
0: तो अगर हम उनकी बातों को मानेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बीमार ही नहीं पड़ेंगे, है ना?
1: कभी स्वास्थ्य बेकार नहीं होगा मैम।
0: जी, तो गीत बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: गीत तो एक फूल दो पानी को सुनवा दीजिए, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर।
0: ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: एक फूल दो माली के इस खूबसूरत गीत के बाद और कौन से श्रोता हैं, उनकी फरमाइश का गीत कौन सा है और आज के प्रश्न को लेकर उनका क्या मानना है, जानते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताइए अपना।
1: ये हम बंटू आए पंजाब की बोल रहे, ग्राम ककरा कला से।
0: ग्राम ककरा कला से बंटू भाई प्रजापति जी हमारे साथ हैं। तो बंटू जी, बताइए आपका फैमिली डॉक्टर कौन है और एक फैमिली डॉक्टर को कैसा होना चाहिए?
1: जी, फैमिली डॉक्टर में हमारे छोटे भाई हैं और जो डॉक्टर साहब हैं उनको मतलब अच्छा मरीज के लिए मतलब व्यवहार करना चाहिए, अच्छी दवाई सस्ती से सस्ती दवाई देनी चाहिए, फायदेमंद भी वही दवाई देनी चाहिए।
0: तो आपके भाई ऐसा करते हैं, उनका ऐसा व्यवहार है?
1: जी, वो तो ऐसा ही व्यवहार रखते हैं मरीजों के साथ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और वही आपके फैमिली डॉक्टर हैं।
1: जी
0: तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: जी, सुना दीजिए, झलक दिखला जा एक बार, आ जा आ जा आ जा। ठीक
0: बिल्कुल आ रहा है आपका गीत आपके पास।
1: है,
0: ठीक है,
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम से आप जुड़ चुके हैं और एक से एक खूबसूरत गीत आप तक पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आज के प्रश्न को लेकर जो हमारे श्रोताओं का मानना है, जो उनकी राय है, वो भी आप तक पहुंच रही है। अब बताइए, ऐसा खूबसूरत समा आपको कहाँ और मिलेगा? कहीं नहीं भाई, यही 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। देखते हैं अगले श्रोता कौन है। हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरी से बोल रहा
0: हूँ। गुड्डू इदरीसी कस्बा शीशगढ़ से हमसे जुड़े हुए हैं, तो बताइए आज के प्रश्न को लेकर आपका क्या मानना है?
1: हमारे फैमिली डॉक्टर सर बहुत बढ़िया है, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा करते हैं और हमारे दवा सही रहते हैं मुनासिब
0: दवाओं का। ऐसा तो नहीं है कि थोड़े से लालच के चक्कर में महंगी महंगी दवाई लिख देते हो, उसमें उनका भी कमीशन हो, कुछ ऐसा तो नहीं है?
1: नहीं सर, ऐसा नहीं। हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे कस्बे के ही हैं और हमारे मित्र जैसे हैं, बहुत बढ़िया व्यवहार करते हैं।
0: बिल्कुल, एक फोन कॉल पे अवेलेबल रहते हैं।
1: जी जी, वो कभी अगर मजबूरी हो तो आ भी जाते हैं।
0: अच्छा,
1: वरना के लिए नहीं, पूर्व हम चले जाते हैं, बहुत सही तरीके से हमें देखते बच्चे अच्छे।
0: अच्छा, आपके फैमिली डॉक्टर में ये खूबी है कि अगर कभी वाई चांस रात में भी अचानक से जरूरत पड़े तो क्या वो उपलब्ध रहते हैं?
1: जी जी, उन्होंने ये कह रखा है बिल्कुल बेघटक, आप चाहे आओ मत आओ, कॉल करो, आए हुए।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी खूबियाँ हैं आपके फैमिली डॉक्टर में और ऐसा होना भी चाहिए। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे? बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में और कौन है हमारे साथ जानते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए।
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, चनेटा जो बरेली कैंट के पास है।
0: बिल्कुल सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज के विषय से जुड़ा हुआ आपका जो मानना है, आपके जो विचार है वो बताइए।
1: मैम हमारे पड़ोस में है और वो बहुत अच्छे हैं, अगर कोई समस्या बड़ी होती है तुरंत बाहर को लिखती
0: है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आपके पड़ोसी ही आपके फैमिली डॉक्टर हैं, तब तो वो और भी उनका व्यवहार और भी अच्छा होगा। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, उन्हें लगता है कि कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास ही उसको पेशेंट को बिठा ले रहे या दवाइयों का लालच देते रहे या कुछ। वो जो है अगर उन्हें लगता है कि उनके हाथ की बात नहीं है तो वो दूसरे चिकित्सक का परामर्श आपको देते हैं।
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। और क्या खूबियां हैं आपके फैमिली डॉक्टर में?
1: यही है कि कोई भी समस्या हो और खुश रखने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी, मतलब उनकी वो वार्तालाप है बहुत अच्छी।
0: अच्छा, अच्छा व्यवहार, अच्छा वार्तालाप, बिल्कुल। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
1: रंग फिल्म का सुना दीजिए।
0: बिल्कुल, हम आपको आपकी पसंद का सुनवाते हैं रंग फिल्म से ये गीत।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: जी नाम बताइए जल्दी से।
0: जिला बदायूं कस्बा पैगंज से मोहम्मद आशिफ बात कर रहे हैं।
1: जिला बदायूं से मोहम्मद आशिफ हमसे जुड़े हुए हैं, तो बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं तो आज के विषय में बस यही कहना चाहूंगा कि मेरी फैमिली में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बढ़िया हैं, अच्छे से दवाइयाँ लिखते हैं, हर समय उपलब्ध रहते हैं और हर अच्छा काम करते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो वो ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं देते हैं, मतलब ज्यादा पैसे करके नहीं बताते हैं, डरावनी करके नहीं बताते हैं, वो आराम से बताते हैं और बहुत बढ़िया है।
1: अच्छा, तो कौन है, कोई नजदीकी डॉक्टर हैं आपके, फैमिली डॉक्टर?
0: जी जी
1: जी, आपके नजदीक में ही रहते हैं।
0: जी
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: आज सुनेंगे हम आपके हैं कौन और गाने के बोले, जूते ले लो पैसे।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, नाम
1: नमस्कार
0: बताइए।
1: मैम। मैं सत्ताम अली बात कर रहा हूँ, ग्राम चंद्रगढ़ चंपतपुर तहसील औंला जिला बरेली से। थैंक
0: बिल्कुल, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सद्दाम जी,
1: यू मैम। जी
0: आपका फैमिली डॉक्टर कौन है और उसे कैसा होना चाहिए, जरा बताइए।
1: मैम, वैसे तो अगर हम कहें तो हमारे फैमिली डॉक्टर जो है मेन तो है, हमारे घर में हमारी माताएं होती हैं जो हमारी देख रेख करती हैं, और अगर हमें जो है बुखार जाड़ा जैसे कुछ हो जाए तो हमें अपने पास के क्लिनिक पे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है।
0: जी, तो आपके फैमिली डॉक्टर कौन है?
1: जी, हमारे फैमिली डॉक्टर हमारे पड़ोस के ही है रहने वाले, और हमारे
0: अच्छा।
1: गांव के ही है, बहुत ही अच्छे स्वभाव के डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है।
0: और क्या खूबियां हैं उनकी?
1: उनकी यही खूबियां हैं कि अगर हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति उनसे दवा लेने जाता है तो चाहे वह व्यक्ति उसके पास पैसे हो या ना हो, वो उसका उपचार करते हैं। अगर उसके पास पैसे हो जाए तो वो बाद में दे सकता है।
0: श्रोता, कुछ तकनीकी खामियों के चलते हम अपने श्रोता की पूरी कॉल को शामिल नहीं कर सके, लेकिन आज के विषय को लेकर इनके जो विचार थे वो हम ने साझा किए और हम सभी तक पहुंच चुके हैं। तो फिर हम सुनवा देते हैं अपनी तरफ से इन्हें ये गीत।

तो श्रोताओ, अब तक आपने सुनी दिन में जो हमें कॉल्स मिली उनके आधार पर जो रिकॉर्डिंग थी और उनके आधार पर जो श्रोताओं के विचार थे, उनके पसंद के जो गीत थे उनको। और अब रुख कर लेते हैं फेसबुक की तरफ। साथ ही साथ आपको अभी भी बता देते हैं कि अभी भी मौका है कि आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, वो भी लाइव। तो फटाफट से अभी कमेंट करिए और कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। फिलहाल देखते हैं कि और किन श्रोताओं के मैसेजेस हमें कार्यक्रम के लिए मिले हुए हैं और आज के विषय को लेकर उनका क्या मानना है। तो सबसे पहले जो श्रोता हैं, राम कुमार रेवार जी हैं। संभवतया पहले इनका जो मैसेज था उसमें डिटेल हमें नहीं मिली थी और अब मिल गई है। तो सादुल शहर से हैं आप, इनके साथ हैं चंद्रकला रेवार। इन्होंने नाम लिखा है डॉक्टर चंद्रकला जी, संभवतः ये इनके फैमिली डॉक्टर रहे होंगे। ये लिखते हैं, आज के समय में लगभग हर इंसान किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, इसीलिए पर्सनल यानी कि पारिवारिक डॉक्टर होना बहुत जरूरी होता है। परमात्मा करे किसी को डॉक्टर की आवश्यकता ना हो, लेकिन यह जीवन है, इस जीवन में उतार चढ़ाव सब कुछ आता रहता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि रात्रि के समय अचानक कोई बीमारी शरीर में आ जाती है, तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत आवश्यक होता है। और जब कोई पारिवारिक डॉक्टर यानी निजी डॉक्टर आपका अपना पर्सनल डॉक्टर हो, तो उसे रात्रि को संपर्क किया जा सकता है और इलाज के लिए वो आ जाते हैं और इलाज भी हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए अपना निजी डॉक्टर होना, हमेशा संपर्क में रखना बहुत आवश्यक है। ये लिखते हैं, हमारी माता जी पहले अक्सर बीमार रहा करती थी, तो हमारे एक निजी डॉक्टर थे, वो हमेशा तत्पर

करते थे। जब भी हम उनको फोन करते थे, माता जी को चेक करने के लिए हमेशा तैयार थे और आ जाते थे, चाहे दिन हो या रात हो। ये लिखते हैं, अब माता जी नहीं है, वे डॉक्टर भी नहीं हैं, लेकिन मैं उन्हें याद करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही ये आशा रखता हूँ कि ईश्वर ने उन्हें श्री चरणों में स्थान दिया होगा। और आज की इसी विषय पर जितेंद्र कुमार जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं, फैमिली डॉक्टर सिर्फ एक चिकित्सक नहीं बल्कि परिवार के एक बड़े सदस्य की तरह होते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर छोटी बड़ी तकलीफ में पहला भरोसा उन्हीं पर होता है। उनका सिर्फ ये कहना आधी बीमारी दूर कर देता है। क्या चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर के पास जाने से पहले, अगर हम स्पेशल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे जाने से पहले फैमिली डॉक्टर की सलाह लेना सबसे बुद्धिमानी का काम है। वो क्योंकि आपको सही राह दिखाते हैं और बेवजह के महंगे टेस्ट से बचा सकते हैं।

आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। हमारे बहुत से श्रोताओं ने फेसबुक पर विषय से लेकर विचार जो है उनके वो ना लिखकर अपना नाम और एड्रेस ही लिख भेजा है, तो माफी चाहेंगे ऐसे श्रोताओं से कि हम उनका कमेंट शामिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने आज के विषय से लेकर अपने विचार साझा किए होते तो जरूर हम आपका कमेंट शामिल करते। तो इस क्रम में टिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से हैं शाहरुख खान, अरहम बाबू और किशवा नूर। ये लिखते हैं, मेरा फैमिली डॉक्टर तो मेरी माँ है। मेरी उम्र 24 साल है, मैं अपना सुख दुख सब कुछ देख सकता हूँ, फिर भी वो मेरे लिए बहुत चिंतित रहती है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो भी माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, और जब बड़े हो जाए तब भी वह खुद दर्द परेशानी में हमेशा उसका साथ देती है। क्योंकि माँ अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ती, परंतु बच्चे माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं। माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, दुख दर्द को समझना चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात कहा। हमारे ख्याल से भी जो परिवार का सबसे पहला अगर डॉक्टर कहा जाए तो माँ को ही कहना चाहिए। और राधा नामदेव जी क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, दालचीनी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च और गिलोय, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। बहुत खूब। और आप हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी। और आप लिखते हैं, आपकी फैमिली का डॉक्टर कौन है? फैमिली डॉक्टर तो अक्सर पड़ोस या गांव कस्बे का ही होता है, जो खासकर छोटी छोटी बीमारियों का इलाज करते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर भी इमरजेंसी में भी हमारे काम आते हैं। इसलिए बड़ी बीमारी होने पर भी उस फैमिली डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज कराया जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने फैमिली डॉक्टर उसी को बनाएं जो दिन के समय और रात के समय हमें देख सके, यानी कि उन्हें वो जो है हर समय उपलब्ध रहे, ऐसे डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बनाना चाहिए। और प्रवीण चौहान जी क्या कहते हैं, ये लिखते हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर कोई नहीं है। जहां स्वास्थ्य सुविधाएं हमें अच्छी दिखती हैं और जल्दी मिल जाती हैं, हम वहां दिखा लेते हैं। अब बचे हमारे वो श्रोता जिन्होंने इस आज के विषय को लेकर कोई कमेंट नहीं किया, बस अपना नाम और एड्रेस लिख भेजा है। भाई देखिए, अब आप पछता रहे हैं ना, अगर आपने भी आज के विषय से लेकर अपने विचार लिखे होते तो जरूर आपका कमेंट हम कार्यक्रम में शामिल करते। फिलहाल जिन श्रोताओं के कमेंट शामिल हुए हैं उनकी पसंद का गीत सुनवा देते हैं।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही जो कार्यक्रम आप सुन रहे थे, आपकी बात आकाशवाणी के साथ का समय जो है समाप्ति की ओर है, लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस कार्यक्रम के प्रति क्या प्रतिक्रियाएं हैं। अब अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजना चाहते हैं तो उसके लिए दो माध्यम हैं, एक तो पत्रों के माध्यम से और दूसरा ईमेल के माध्यम से। पत्रों के माध्यम से अगर अपने सुझाव या शिकायतें या जो भी कुछ आपके मन में है कार्यक्रम के लिए, आप हमें लिख भेज सकते हैं। नोट कीजिए पता, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा के निदेशक आकाशवाणी बरेली, बरेली का पिन नंबर है 243001। वहीं अगर ईमेल के जरिए आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए ईमेल आईडी आपका पत्र मिला bareilly@gmail.com। तो देखिए, अब हमने दोनों ही पते आपको दे दिए हैं और अब आपको आसानी भी हो जाएगी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजने पर, है ना। तो अब देर मत करिएगा और बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेजिएगा, क्योंकि हमें रहता है इंतजार और आपके सुझावों से हम इसमें लाते हैं और भी सुधार, या आपको जो भी उसमें डिमांड है, कोई शिकायत है, सुझाव है, उसके आधार पर हम अपने कार्यक्रम में और सुंदरता लाने का प्रयास करते हैं, और वो हमें तभी पता चलेगा ना जब की प्रतिक्रियाएं हमें मिलेंगी। तो बस हमें रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार और अब हमें दीजिए कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। तो अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा की। पांच बजकर 30 मिनट पर नारी संसार में आज चर्चा की जाएगी शाकाहारी भोजन के फायदों पर। साथ ही वार्ता में रेणु श्रीवास्तव को सुनिए, विषय रहेगा संतुलित आहार का महत्व एवं लाभ। 6 बजे का समय हमेशा की तरह युववाणी का रहेगा, इसमें होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। किसानवाणी में आज की बात का विषय रहेगा कृषि मशीनीकरण योजना। साथी होगा हेलो किसान, बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। समय रहेगा 6:30 का। ग्राम जगत में चर्चा का विषय होगा धूम्रपान ना करें और विश्व मधुमक्खी दिवस। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा और समय रहेगा 7 बजे का। 7:31 पर आपके स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम को लेकर आएंगे रेडियो हेल्पलाइन। कल सुबह 8:15 पर आपको रूबरू कराएंगे कार्यक्रम यंग बरेली से। दस बजे सुनिए आकाशवाणी के दीवाने। ग्यारह 11:30 प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का समय रहेगा। आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत लेकर आएंगे दिन में 1 बजे। वहीं 2 बजे का समय रहेगा गजल, कपाली और लोकगीतों के सफर यानी के रस रंग का। 2:30 से आप सुन सकेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 4:05 पर होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। कल शाम नारी संसार में चर्चा की जाएगी घर से प्लास्टिक कैसे कम करें इस विषय पर और समय रहेगा।

5:30 का, वहीं 6 बजे का समय हमेशा की तरह युववाणी का होगा। उसमें होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। 6:30 पर ग्राम जगत में आपसी सद्भाव और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस पर चर्चा की जाएगी। होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, समय रहेगा 6:30 का। प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन आप सुन सकेंगे 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी एक संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज की शेष और कल की सभा में प्रसारित व रिले होने वाले कार्यक्रमों की। और आप इस समय सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। ये देश हमारा है, अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करें। जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं। हमेशा याद रखें कि जल का हमारे पास कोई विकल्प नहीं। देश की बगिया का सबसे महकता पुष्प, हिंदी।

0: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए airbareli@cbs.gmail.com।
1: तो आप 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हमसे जुड़े हुए हैं और समय मिला लीजिए, शाम के 5:05 हुए हैं। चलिए अब आपको शामिल कर लेते हैं भजन संध्या में। शेखर सेन की आवाज में ये पहला भजन।

हमको ओढ़ावे चुनरिया चलती विरिया। श्रोताओं, जीवन की वास्तविकता को बयां करता है इस भजन के बाद लीजिए अब अनुपम गुलवाठी और तृप्ति शाक्य की आवाज़ों में इस भजन को सुनते हैं। मन मुदित मुदित है आज।

हे रघुराई हे रघुनंदन, हम करते हैं तुम हो वंदन। सुरेश वाडेकर की आवाज में इस भजन को आपने सुना। भजन संध्या में इस समय हम हैं आपके साथ 100.4 FM आकाशवाणी।

0: पानी भी जमीन पे आसी, शेखर सेन की आवाज में। इस भजन के साथ ही आज की भजन संध्या यहीं तक। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर।
1: पानी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते

रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए। और जो लोग वीडियो नहीं बना पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com। आकाशवाणी में AKSHVANI, बरेली BAREILLY, akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है। सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
1: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 एफएम पर। सड़क पर वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें। दोपहिया वाहन पर हमेशा हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग हरगिज ना करें। हमेशा याद रखें दुर्घटना से देर भली। अपने और अपने से आगे वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। और अब जरा समय मिलाइए, 5:30 हुए हैं और देखिए शिप्रा श्रीवास्तव जी आ गई हैं स्टूडियो में लेकर अपना कार्यक्रम नारी संसार। तो चलिए सुनते हैं इनके साथ कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार श्रोताओं और सखियों, आपने ट्यून किया है 100.4 FM का आकाशवाणी का बरेली केंद्र और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम नारी संसार, आपकी अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव के साथ। सखियों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई फिट रहने के लिए जिम, डाइट प्लान और तरह तरह के सप्लीमेंट्स का सहारा लेता है, लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे स्वस्थ जीवन की शुरुआत हमारी रसोई और हमारी थाली से होती है। हमारे घर की साधारण दाल रोटी, हरी सब्जियां, फल, सलाद और अंकुरित अनाज ही वास्तव में हमारे शरीर को सही पोषण देते हैं, और इसलिए तो कहा भी गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। तो सखियो, जीवन में स्वस्थ दिशा की ओर पहला कदम है शाकाहारी भोजन अपनाना। भोजन जो मुख्य रूप से हमें पौधों से प्राप्त होता है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, मेवे, दाल, बीज आदि। और अगर देखा जाए तो हमारे देश में भी प्राचीन काल से ही शाकाहार को संतुलित और सात्विक भोजन माना गया है। आयुर्वेद भी यही कहता है कि ऐसा भोजन शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ मन को भी शांत और सकारात्मक बनाता है। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए शाकाहार को अपना रही है। हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे विटामिन, मिनरल, आयरन, कैल्शियम

और फाइबर भी शाकाहारी भोजन में भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और अगर हम शोध की बात माने तो शाकाहारी भोजन करने वाले लोगों में मोटापा कम होता है, हृदय रोग की खतरा कम रहता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और साथ ही मधुमेह यानी कि डायबिटीज होने की भी संभावना कम रहती है। तो सखियों, अगर इतने सारे फायदे मिल रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि शाकाहार अपनाने में कोई भी बुराई नहीं है। और एक और बड़ी बात, शाकाहारी भोजन ज्यादातर सुपाच्य और हल्का होता है, तो जिसके कारण आपके पेट से संबंधित तकलीफों से भी आप थोड़ा दूर ही रहते हैं। आज के समय में जब जंक फूड और फास्ट फूड का चलन बन रहा है और हम सभी जानते हैं कि जंक फूड या फास्ट फूड जितना हमें खाने में शायद स्वादिष्ट लगता है लेकिन हमारे शरीर को वो उतना अच्छा नहीं लगता और उसका परिणाम हमें आने वाले समय में या कुछ समय बाद ही नजर आने लगता है जब हम अत्यधिक मोटापे या फिर डायबिटीज जैसी समस्या से ग्रसित होते हैं। बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की जो संबंधित तकलीफें होती हैं वो भी इसका एक कारण बन जाता है ये जंक फूड। तो अगर हम संतुलित शाकाहारी भोजन अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। शाकाहारी भोजन न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पृथ्वी और वातावरण को संतुलन बनाए रखने में भी सहायक रहता है। अब आप सोचेंगे भला उसमें ये क्या योगदान देता है। देखिए, अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें तो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे संसाधन लगते हैं, लेकिन अगर हम फल और सब्जियों के उत्पादन की बात करें तो और किसी भी तरह के भोजन को बनाने में जो हमें संसाधन लगते हैं उससे अपेक्षाकृत कम संसाधन इसमें लगते हैं। तो आज जब पूरी दुनिया पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है तो क्यों ना शाकाहार अपनाकर हम भी इस दिशा में अपना योगदान दें। सखियों, घर का बना सादा भोजन हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ हमें अनावश्यक खर्चों से भी बचाता है। तो शाकाहार अपनाएं, स्वास्थ्य और धन दोनों बचाएं। और जब बात धन की हो रही है तो सखियों, हमने आज अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, एक प्रश्न पूछा है कि कैसे करती हैं आप अपनी सीक्रेट सेविंग। सीक्रेट सेविंग तो हमारी सभी सखियां जानती होंगी, जिस पे उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो पैसा जो किसी की नजर में ना आए और आपने छुपा के रखा। तो शेयर कीजिए आज आपका क्या तरीका है पैसों को जोड़ने का, क्योंकि महिलाओं को बहुत कुछ देखना पड़ता है और वो घर की धुरी ऐसे ही तो नहीं कहलाती। जब उनके पास किसी के पास कुछ ना निकले और आड़े वक्त पर उनके पास उनका बैलेंस हमेशा मौजूद रहता है। तो शेयर कीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं आपके टिप्स, आपके सुझाव और आपकी जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं सीक्रेट सेविंग की। और जब तक आप सोच रही हैं और सोशल मीडिया हैंडल पे ये बातें शेयर कर रही हैं, तब तक आइए सुन लेते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: जैसा कि हम बात कर रहे थे सेहत की, तो शाकाहारी भोजन के साथ साथ संतुलित आहार का भी हमारी जो शरीर है और जो हमारी सेहत है उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी विषय पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्ता, संतुलित आहार का महत्व एवं लाभ। और हमारी वार्ताकार हैं रेणु श्रीवास्तव। तो आइए सखियों, सुनते हैं ये वार्ता।
1: सेहत जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सेहत जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सुपोषित होगा जब हर बच्चा, भविष्य होगा तब सच्चा, भविष्य होगा तब सच्चा। नमस्कार, मैं रेणु श्रीवास्तव अपनी बहनों को संतुलित आहार का महत्व एवं लाभ विषय पर जानकारी देने जा रही हूँ। वही बच्चे सफल हो पाएंगे जो पौष्टिक भोजन खाएंगे। स्वस्थ भोजन करना आपके शरीर और मन के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। स्वस्थ भोजन न आपको दिन भर की ऊर्जा देता है, आपके शरीर को ठीक रखने में मदद करता है और आपको स्वस्थ रखता है। खान पान और स्वास्थ्य को दो पहला स्थान तभी होगा बीमारियों का निदान। चाहे आप वयस्क हैं जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना चाहते हैं, चाहे आप बच्चे को आवश्यकता अनुसार तत्व देना चाहते हैं, तो ये मार्गदर्शिका आपको संतुलित आहार को समझने में मदद करेगी। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार, इसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए सही अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं। नंबर एक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण और त्वचा और बालों के विकास में मदद करता है। यह आपके आहार में 10-12% होना चाहिए। प्रोटीन के स्रोत हैं फलियां और सेब, सोयाबीन, पोल्ट्री चिकन, टर्की, समुद्री भोजन, मछली, केकड़ा, झींगा, अंडे, दुबला मांस, भेड़, गाय का मांस, सुअर का मांस, दाने और बीज और ग्रीक दही। नंबर दो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं जो आपके आहार में 50-60% होने चाहिए। हालांकि यह आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन आपको सभी कार्बोहाइड्रेट को एक समान नहीं समझना चाहिए। स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं साबुत अनाज जैसे ओट्स, किनुआ, साबुत गेहूं, दलिया, फलियां, रागी, बाजरा, जौ जैसे मोटे अनाज और सब्जियां। और तीसरे नंबर पे आता है वसा। यह एक गलत धारणा है कि वसा आपके स्वास्थ्य के लिए खराब है। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप स्वस्थ वसा चुनें, क्योंकि वसा आपके

शरीर का तापमान को बनाए रखने में मदद करती है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के को अवशोषित करने में मदद करती है। स्वस्थ वसा के स्रोत हैं एवोकाडो बीज, अतिरिक्त वर्जिन जैतून का तेल, वसा युक्त मछली, सैल्मन, मैकेरल और हेरिंग। नंबर 4 आता है विटामिन। यद्यपि 13 आवश्यक विटामिन है, आपको विटामिन ए, बी, सी और डी की खुराक होनी चाहिए। विटामिन के स्रोत हैं फल, सब्जियां, मुर्गी पालन, बीज इत्यादि। खनिज आपके द्वारा दिए गए भोजन से हमको ऊर्जा प्रदान करता है और अंगों के विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। कुछ आवश्यक खनिज हैं लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम। खनिजों के स्रोत हैं मछली, मांस, फलियां, अनाज और सुपारी बीज। अब आता है फाइबर। फाइबर पाचन में मदद करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। फाइबर के स्रोत हैं ओट्स, दलिया, किनुआ और ब्राउन चावल, फलियां, साबुत अनाज, सुपारी बीज। और अब आता है पानी। आपको कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए क्योंकि यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और शरीर के कार्यों में उपयोग करता है। स्वस्थ संतुलित आहार के लिए किन किन खाद्य पदार्थों से बचें? पहला है लाल मांस, दूसरा है परिष्कृत अनाज जैसे मैदा, सफ़ेद ब्रेड, सेवैयाँ, नूडल्स, पास्ता। उसके बाद आता है ट्रांस वसा, मक्खन, पनीर। उसके बाद है अतिरिक्त चीनी, पेस्ट्री, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ी माया। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो वो बहुत बड़ी माया है। संतुलित आहार के सिद्धांत। संतुलित आहार बनाए रखने के लिए आवश्यक है सभी खाद्य पदार्थों के समूह से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं। अपने दैनिक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सही अनुपात में भोजन का सेवन करें। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा और अस्वस्थ कर वसा का सेवन सीमित करें। आयु, गतिविधि स्तर और विशिष्ट चिकित्सा स्थिति या आहार संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर आहार को समायोजित करें। स्वस्थ रहेगा तन तो मस्त होगा मन, स्वस्थ होगा तन तो मस्त होगा मन। संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार समग्र स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है। यह कई लाभ प्रदान करता है जो शरीर के बेहतर ढंग से कार्य करने में मदद करता है। संतुलित आहार बनाए रखने इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इष्टतम मस्तिष्क कार्य को बढ़ावा देता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे पोषक तत्व मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे स्मृति, एकाग्रता और सीखने जैसे संज्ञानात्मक कार्यों का समर्पण करता है। एक संतुलित आहार यह निश्चित करता है कि मस्तिष्क को कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सही ईंधन मिल सके। प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ाता है। उचित पोषण प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है जिससे शरीर संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक लचीला बनता है। विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर ढंग से काम करने में मदद करते हैं। विकास का समर्थन करता है, खासतौर पर बच्चों, किशोरों में उचित शारीरिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक विकास के लिए संतुलित आहार बहुत जरूरी है। यह जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है जो जीवन के इन महत्वपूर्ण चरणों के दौरान शरीर के विकास को सुविधाजनक बनाता है, ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। पोषक तत्वों से भरपूर कई तरह के खाद्य पदार्थ पूरे दिन ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के सही संतुलन के साथ शरीर को दैनिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत मिलता है। दीर्घकालिक रोगों के जोखिमों को कम करता है। संतुलित आहार मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों की शुरुआत को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ वजन और पोषक तत्वों का सेवन बनाए रखने में इन बीमारियों का जोखिम काफ़ी कम हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संतुलित आहार से मूड स्थिर रहता है, संज्ञानात्मक कार्य बेहतर होते हैं, अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का जोखिम कम होता है। फिर आता है पाचन में सुधार। स्वस्थ रहना और भरपूर पानी के साथ पर्याप्त फाइबर का सेवन जरूर सुचारू रूप से निश्चित करना चाहिए और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा
देने के लिए

0: लिए हमें संतुलित आहार करना चाहिए। संतुलित आहार स्वास्थ्य पाचन तंत्र का समर्थन करता है, जिससे कब्ज और सूजन जैसी समस्याओं से बचाव होता है। हड्डियों को मजबूत करना, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डियों से संबंधित बीमारियों को रोकने के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार जीवन भर हड्डियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। दिल के सेहत में सुधार आता है। स्वस्थ वसा से भरपूर आहार जैसे कि एवोकाडो, नट्स और मछली में पाया जाता है, जिससे स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है। चाहे लक्ष्य वजन कम करने का हो या वजन प्रतिबंधित, संतुलित आहार अधिक खाने से रोकने में मदद करता है और स्वस्थ शरीर संरचना को बढ़ावा देता है।
1: सखियों, अभी आपने सुनी वार्ता संतुलित आहार का महत्व एवं लाभ, और हमारी वार्ताकार थी रेणु श्रीवास्तव। और सखियों, वक्त हो चुका है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

नमस्कार सखियों, आज हमारे इनसे मिले सेक्शन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो कि काफी गंभीर भी है और काफी महत्वपूर्ण भी है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि आर्थिक प्रबंधन। और इस आर्थिक प्रबंधन का मतलब सिर्फ पैसों को संभालने तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये आत्मनिर्भर और सुरक्षित जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है। आज महिला चाहे कामकाजी हो या गृहिणी, घर के बजट को संतुलित रखना, बचत करना, भविष्य की योजनाएं बनाना और सही आर्थिक निर्णय लेना हर महिला के जीवन का अहम हिस्सा है। एक ओर कामकाजी महिलाएं अगर अपनी आय और जिम्मेदारियों के बीच में संतुलन बनाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर घरेलू महिलाएं सीमित संसाधनों में पूरे परिवार की जरूरतों को कुशलता से संभालती हैं और साथ ही भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ

0: बचत करती हूँ। तो आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीमती शालिनी जी, जो कि एक कामकाजी महिला होने के साथ साथ एक गृहिणी हैं, एक माँ हैं, और इन्होंने किस तरह से अपने परिवार, जिम्मेदारियों और आर्थिक प्रबंधन के बीच एक संतुलन स्थापित किया है, आज ये हम जानेंगे इन्हीं की जबानी। तो सबसे पहले तो शालिनी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नारी संसार। सबसे पहले तो शालिनी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके विचार में आज के समय में महिलाओं के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना आवश्यक है और क्यों?
1: थैंक यू मैम। अगर हम आज के समय की बात करें तो आज के समय में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। आज महिलाएं न केवल घर बल्कि बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभा रही हैं। नौकरी हो, बिजनेस हो, बच्चों की जिम्मेदारियां हो, सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है। और ये सब संभव हो सकता है सही फाइनेंशियल गाइडेंस और सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो महिलाओं को अपने ड्रीम्स और लक्ष्य को पूरा करने की स्वतंत्रता देता है। बच्चों के एजुकेशन हो, अपना घर बनवाना हो, बिजनेस करना हो या रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग हो, सबके लिए सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फ्रॉम माई ओपिनियन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने की कला बन चुका है आज।
0: शालिनी जी, आपको क्या लगता है कि महिलाओं को घर के खर्चों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल मैम, आज के समय में महिलाओं के लिए केवल घरेलू खर्चों का ही ध्यान रखना जरूरी नहीं है बल्कि अपनी खुद की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इससे ना सिर्फ हम महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी आकस्मिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम लोग बहुत ही मजबूती और आत्मविश्वास से हैंडल कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स फ्यूचर में बहुत काम आती है। अब देखिए, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। कोरोना के समय में बहुत से परिवारों की इनकम रुक गई थी। ऐसे में जिन महिलाओं की पर्सनल सेविंग थी या छोटे छोटे निवेश थे, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं।
0: अगर हम आपकी बात करें तो आपने अपने जीवन में किस तरह से पैसों के सही प्रबंधन को किया है और इसके संबंध में आपको जो सबसे बड़ी सीख या कह सकते हैं जो एक आपने आपके अनुभवों से आपने क्या सीखा है कि किस तरह से इन सब चीजों को मैनेज करना चाहिए?
1: अपनी परिस्थितियों में मेरी सबसे बड़ी सीख यही है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से संभालना। अक्सर लोग अच्छी इनकम होने के बाद भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई बचत नहीं होती। कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने अपनी परिस्थितियों से सीखी हैं, जैसे है कि छोटी छोटी बचत भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा बचाएं तो वो पैसा अचानक आने वाली जरूरतों में हमारे बहुत काम आ सकता है। इसी तरह से जरूरी है कि हमें अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझना होगा। इनमें बहुत अंतर है और हमें इस अंतर को समझना होगा। हर वो चीज जो हमें पसंद आए जरूरी नहीं है कि हम उसे खरीद कर अपने घर रख लें। इसी तरह से एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना भी सही नहीं है, हमें एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेस खोजने पड़ेंगे। जैसे आजकल ऑनलाइन बहुत काम हो रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, होममेड बिजनेस है, ये सब भी आजकल बहुत अच्छे इनकम के सोर्सेस हैं। मेरा ये मानना है कि महिलाओं को फाइनेंशियली अवेयर होना बहुत जरूरी है। आज के समय में इन्फ्लेशन और अनिश्चितताओं को देखते हुए यह समझ में आ गया है कि पैसों का सही प्रबंधन केवल धन बचाना नहीं बल्कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
0: और अगर हम बात करें हमारी सखियों की, तो आपको क्या लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए महिलाओं को किन आदतों को अपनाना चाहिए?
1: महिलाओं के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं है बल्कि व्यवस्थित तरीके से अपनी इनकम को खर्च करना और उसी इनकम में से सेविंग करना है। महिलाओं को अपनी इनकम और खर्च का हिसाब रखना चाहिए, एक बैलेंस बनाना चाहिए इनकम में और खर्च में। उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करके अर्निंग सोर्सेज बनाने चाहिए। महिलाओं को ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी होनी चाहिए। आज महिलाएं ऐसा कर भी रही हैं, वो ऑनलाइन टीचिंग, कुकिंग, हैंडीक्राफ्ट, बिजनेस करके अपनी अलग पहचान बना भी रही हैं।
0: तो शालिनी जी, आप हमारी सखियों को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग या फिर बचत करने के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगी, अपने कौन से अनुभव उनके साथ साझा करना चाहेंगी जिसे अपनाकर वो भी अपने

0: सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकें।
1: फाइनेंशियल प्लानिंग केवल पैसे बचाने के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और सुरक्षित भविष्य की नींव है। घर संभालना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए महिलाओं को सिर्फ घर खर्च चलाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने लिए भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत बनानी चाहिए। इनकम चाहे कम हो या ज्यादा, हर महीने थोड़ी सी बचत भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। आज के समय में अपना बैंक अकाउंट और डिजिटल पेमेंट की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। हमें अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। SIP है, FD है, PPF है, इन छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की जा सकती है। ये इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे विकल्प हैं। बच्चों और परिवार के साथ साथ हमें अपने फ्यूचर और हेल्थ सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना चाहिए। फाइनेंशियल जो नॉलेज है उसको हमें अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमाना ही जरूरी नहीं है, पैसे को सही तरीके से संभालना और उसे बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। जब महिलाएं फाइनेंशियली अवेयर और इंडिपेंडेंट बनती हैं, तो पूरा परिवार और समाज मजबूत बनता है।
0: शालिनी जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे कार्यक्रम के लिए निकाला और हमारे साथ इतनी अच्छी बातें और अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सखियों, अभी आपने हमारी शालिनी जी से बातचीत सुनी और हमें उम्मीद है कि हमारी सखियां अपने आर्थिक प्रबंधन को काफ़ी गंभीरता से लेंगी और अपनी सीक्रेट फंड्स को ज़रूर रखेंगी संभाल के। और अब घड़ी ने इशारा कर दिया है कि वक्त है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अपनी रेडियो सखी शिप्रा श्रीवास्तव को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे नारी संसार, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 6 बजे हैं और माधुरी जी लेकर हाजिर हो चुकी हैं कार्यक्रम युववाणी। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं माधुरी जी के साथ कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी श्रोताओं का प्रोग्राम युववाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों आज है आपकी पसंद का प्रोग्राम, तो आपको आपकी पसंद से जोड़ें। उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आज क्या खास है। तो दोस्तों आज है वर्ल्ड फेयर प्ले डे, और इस दिन को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य खेल के नियमों को समझना और जीवन में सम्मान, मित्रता, समानता जैसी वैल्यूज को बढ़ावा देना है। दोस्तों खेल एक ऐसी गतिविधि है जो समाज में बदलाव ला सकती है, और ये डिसिप्लिन, यूनिटी, कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों गेम्स के रूल्स को मानना, दूसरी टीम का सम्मान करना और अनुशासन बनाए रखना, इन सभी बातों से ही ये दिवस जुड़ा है। खेल का मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि ईमानदारी, सम्मान जैसे मूल्यों को सीखना भी है। तो ये थी बातें वर्ल्ड फेयर प्ले डे की, और अब आपको लिए चलते हैं आपकी पसंद की ओर। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी साथियों ने धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने। इसी गीत को पसंद किया है रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत और उनके सभी साथियों ने, तहसील परिसर मीरगंज बरेली से कुंवर सेन यदुवंशी, रजत यदुवंशी, ऋतु यदुवंशी, अंजलि, अकरम हुसैन, पंकज, सूरज पाल, शिवराम लोधी, चंद्रपाल लोधी, कातिब पातिराम, प्रमोद कुमार और उनके सभी साथी। तो आइए सुनते हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, आज के समय में हमारे युवा साथी अलग अलग क्षेत्रों में अपना फ्यूचर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने एक ऐसी ही युवा छात्रा से बातचीत की है जो कि LLB कर रही है। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने इस कोर्स को क्यों चुना और कैसे शुरुआत की। जी, अपना नाम बताइए।
3: मेरा नाम है मंजलि अंबार।
2: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं?
3: मैं LLB कर रही हूँ।
2: तो आप इस क्षेत्र में कैसे आई?
3: मेरे गुरु हैं, मुझे लोगों की सेवा करने के बारे में मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा लोगों की सेवा करना। मैम, इसमें मैम पारिवारिक कुछ मुकदमे होते हैं स्त्रियों से संबंधित, उनको समझना और उनकी मदद करना मुझे ठीक लगता है।
2: जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपने शुरुआत कैसे की?
3: मैंने मैम हाई स्कूल भी कर रखा है इंटरव्यू, और उसके बाद मैंने BSc की डिग्री ले रखी है, उसके बाद LLB कर रही हूँ।
2: जी जी, तो आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर और कोई सपना है आपका?
3: फिलहाल मैम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपना मुकाम अच्छा हासिल करना चाहती हूँ।
2: अच्छा, LLB के बाद करियर की क्या क्या संभावनाएं रहती हैं?
3: करियर की आगे आप खुद भी वकील बन सकते हो, सरकारी लॉयर के बारे में भी हम बात करें तो उसका भी ये निकलता है, उसका फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हम का पेपर होता है, उससे हम अप्लाई करने के बाद अगर सिलेक्शन होता है तो हम जा सकते हैं उसमें।
2: अच्छा, हमारे बरेली में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो ये LLB की पढ़ाई करवा रहे हैं?
3: हमारे बरेली में कॉलेज है, हमारे रामपुर में भी कई कॉलेज हो चुके हैं अब तो, और बहेड़ी साइड में जाएं तो इधर भी 2 या 3 कॉलेज बन गए हैं।
2: इसमें कोई ट्रेनिंग वगैरह भी होती है क्या?
3: जी,
2: हम अपने अधिकारों के बारे में जाने, उनके बारे में पढ़े, इस बारे में क्या कहना चाहेंगी?
3: हर व्यक्ति को अपना अधिकार जानना जरूरी होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना अधिकार है।
2: जी,
3: हमें अपने अधिकारों से जब तक हम अधिकारों को ना जानेंगे, उनके बारे में ना समझेंगे, तो हम अपने क्षेत्र में किस तरह आगे बढ़ेंगे।
2: जी जी, अच्छा, कोई युवा छात्र है या छात्रा है और वो लॉ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो इस कोर्स में आए और जुड़े?
3: अच्छी चीज है इसको, हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, इस क्षेत्र में बढ़ने से हमें आगे तक काबिल।
2: जी जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
2: दोस्तों, अभी आपने सुनी ये बातचीत और अब फिर से बारी है आपकी चॉइस के सॉन्ग की, और इसे पसंद किया है आप सभी दोस्तों ने। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रका रेवाड़, और इसी गीत को पसंद किया है पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि बोर्रा गुफा कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं राजेश वर्मा, निसार सलमानी, नितेश कुमार, नवी हसन अब्बासी, जॉन डिकैस्ट्रो, दुर्गेश नागनपुरे और कीर्तनपुरी गोस्वामी। तो ये था सवाल और जवाब। और सेगमेंट आपकी पसंद के अंतर्गत इस गीत को सुनना चाहा है चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू और उनके सभी साथी। इसी गीत को पसंद किया है लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी और सेगमेंट है आपकी पसंद, और आपकी पसंद पर ही ये गीत हमने लिया है फिल्म हस्ती से और इसे सुनने की फरमाइश की है आप सभी श्रोताओं ने अमरावती महाराष्ट्र से सैयद भाई, असीफा परवीन, कमरुल्ला खान, नसीम बेगम और उनका पूरा परिवार। इसी गीत को पसंद किया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर ने, और इसी को सुनना चाहा है ग्राम दुल्हापुर से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज और उनके सभी साथियों ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी दोस्तों की पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिलाइए शाम के 6:30 और 33 सेकंड। समय हो चला है किसान वाणी का।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब भैया बहनन को आपके भैया रघु
2: और आपकी बहन पूनम की राम राम, राम।
1: पूनम बहन का बात है कि आगे पीछे राम राम कर रही हूँ, का हुई आज?
2: अरे भैया हुई कुछ ना हुआ, हमने सोची पहले हम आपसे राम राम कर लेंगे, फिर आप हमसे राम राम कर लोगे और फिर घर के दोनों जने भैया बहनन से राम राम कर लेंगे।
1: चलो कोई बात ना है भैया बहनों, राम राम। तो अब भैया बहनन की शिकायत भी दूर होगी। अब जा बताओ, गर्मी तो खूब पड़ रही है, तो ऐसे में का खेती वेती के काम चल रहे हैं?
2: भैया अब खास कोई काम ना है खेती में हमारी, तो हम तो भैया धान ही लगावेंगे और लेकिन वे थोड़ी बहुत ये लगा लेंगे सब्जियाँ तो। अच्छा। और कुछ लगावेंगे वो भैया,
1: तो देखभाल चल रही है उनकी?
2: हाँ देखभाल चल रही है, घुइया है और ये लौकी है, तुरैया है, ये कुछ लगी हुई हैं। अब सोच रहे हैं अगर वे सही ना हो बंगे तो दोबारा से रोपाई कर देंगे।
1: ना वो बिल्कुल सही सोच रही हूँ। और गन्ना उन्ना की देखभाल सही चल रही है?
2: हाँ गन्ना की देखभाल तो सही चल रही है भैया।
1: और देखो अब खरीफ की जो मुख्य फसल है धान बाव की तैयारी को समय धीरे धीरे भी चलू है, तो खेतन की जुताई भी हमारे भैया बहन करवा रहे हैं इस समय तो, और उसके बाद खेत की तैयारी कर रहे हैं धान की पौध के।
2: हाँ भैया वो तो कर रहे हैं।
1: तो पूनम बहन देखो बातचीत तो हम करेंगे ही, सवाल का पूछ रही हूँ क्योंकि भैया बहन कापी पेन लाए बैठे इंतजार करते रहते हैं।
2: अरे भैया सवाल तो अपने भैया बहनन को जय है कि जो महा चल रहा है ना जामे किन किन सब्जियों की बुवाई हमारे भैया बहन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो देखो भैया ऐसू है कि जाको का कहें कि हम तो जय है कि जो सवाल को उत्तर भैया तौलो ढूंढ के रखेंगे, बाकी बाद हमारी पूनम बहन भी बाको उत्तर बता देंगी।
2: हाँ हाँ।
1: और आज का बात पर चर्चा होने है?
2: अरे भैया का बात पर का हमारे भैया बहन जो जो खरीदा था ना मशीन है, जो होती है हमारी कृषि मशीन है जो होती है।
1: हाँ।
2: जय योजना के बारे में जानकारी है कि कृषि मशीनी कर

0: कारण योजना कि जो है का जाके शुरुआत करने को उद्देश्य का है।
1: अच्छा तो बताओ जाके बारे में का उद्देश्य है
0: भैया, हम तो जय अपने भैया बहन से कहेंगे कि मुख्य रूप से तो जाको उद्देश्य जय है कि जो हमारे किसान भैया बहन है, यानी कि जो विशेषकर छोटे और सीमांत किसान है, उनकी खेती में आधुनिक मशीनन को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना
1: अच्छा।
0: और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। जैसे
1: और देखो पूनम बहन, हम बतावें अपने भैया बहन को जाके जो पात्रता की शर्तें हैं वो है कि आवेदक किसान के नाम स्वयं की कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए,
0: हाँ
1: एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 से 5 वर्ष में केवल एक बार ही अनुदान दे हुए हो, और आप ट्रैक्टर पर अनुदान लेना चाह रहे हैं तो आपके पास पहले से दूसरों कोई ट्रैक्टर ना होना चाहिए और ना ही पिछले 7 सालों में विभाग से आपने कोई सब्सिडी लई भी हो।
0: हाँ भैया, तो हमारे भैया बहन तो वैसे ही इतने समझदार हैं कि उन्हें जे बातन की पतो होगी और ना ये पतो होगी, तो आपने बताइए दे तो वे अच्छे से अपने जो योजना है जाको फायदा उठावेंगे।
1: बिल्कुल। और देखो भैया, जाके ले आवेदन करने के बारे में हम आपको बतावें, आपको अपने राज्य के कृषि विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पे पंजीकरण करनो अनिवार्य होएगो, और केंद्र सरकार के आधिकारिक कृषि यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी पोर्टल पे जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ भैया, और कुछ ऐसा भी होता हो कि भैया बहन कहीं और से भी जो करवा सकते हैं, जैसे होता ना है CSC केंद्र होता है, या फिर कहाँ से करवाने पड़ते हो?
1: बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि हमारे भैया बहन को इतनी ज्यादा जानकारी ना होते हैं तो वे
0: हाँ
1: नजदीकी CSC केंद्र पर जाके भी जाके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जमीन के दस्तावेज, खसरा खतौनी और पासपोर्ट साइज की फोटो होना जरूरी है।
0: अच्छा भैया, तो इन सब चीजन से हमारे भैया बहन आराम से जय योजना को लाभ ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो अब योजना को लाभ तो हमारे भैया बहन लेंगे ही, लेकिन एक बात है, घर के खेती तो सब भैया बहन करते हैं और उनके संग संग उन्हें जरूरत होती है कि उनकी जो सब्जी बाड़ी फसलें हैं उनमें अगर कोई समस्या आ जाए तो बाकी समाधान के लिए भी जरूरत होती है भैया, तो का
1: बिल्कुल।
0: है आज कार्यक्रम में?
1: तो देखो भैया, पूनम बहन, आज को विषय भी जय है
0: हाँ
1: सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन, और जब विषय पे जानकारी दे रही हैं डॉक्टर अर्चना रानी, और आपसे बातचीत कर रहे हैं भैया मिथिलेश श्रीवास्तव, और देख लेते हैं पूनम बहन कि किस किस की कॉल, कौन कौन से भैया ने हम कॉल करना चाह रहे हैं और कौन से भैया ने हमसे सवाल पूछे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से।
2: किसान बहनों भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं हूँ मिथिलेश श्रीवास्तव और मेरे साथ आज हैं बहुत ही खास मेहमान, एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना रानी साहिबा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आपको
0: नमस्कार
2: बता
0: सर।
2: दें कि आईवीआरआई के कृषि विज्ञान केंद्र में आप एक्स वैज्ञानिक हैं, और आज जो विषय है वो सब्जी फसलों से संबंधित है। बहुत ही अच्छा विषय है, इसके बारे में आप सभी की जो समस्याएं हैं वो हम समाधान करेंगे उनका। और इसी सिलसिले में कॉल्स भी आनी शुरू हो गई हैं, बिना देर किए कॉल्स लेते हैं। हेलो,
3: हेलो किसान
2: किसान वाणी कार्यक्रम में आपने कॉल लगाया है, अपना नाम बताएं।
3: जी, नमस्कार। मैं लाल मोहम्मद अंसारी, ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद करेली से बोल रहा हूँ।
2: जी नमस्कार लाल मोहम्मद जी, अपना सवाल पूछें, आप डॉक्टर अर्चना रानी हैं। जी
3: मैं हमारे खेत में सिर्फ भिंडी लगी हुई है, तो
0: जी
3: भिंडी तो वैसे ठीक ठाक चल रही, लेकिन कुछ पौधों में हम ये देख रहे हैं कि हमारी भिंडी जो है बीच में से टेढ़ी पड़ रही है और वो सूख रही है, यानी कि कोई कीट लगा हुआ है जिसकी वजह से भिंडी खराब हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करें, कौन सी दवा लगाएं और किस तरीके से उसको सही करें, इस बारे में जानकारी क्या है?
4: आपके खेत में जो एक फल एवं कीट होता है, ठीक है, पत्तियों और फल दोनों को खाता है ये, ठीक है, आप नाम लिख लीजिए कीटनाशक का। हाँ, डाइमेथोएट, हाँ इसकी ये दवाई, इसका आप छिड़काव करेंगे 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी में घोलकर, ठीक है, अब 15 दिन पे करिएगा, एक बार करने के बाद 15 दिन के बाद फिर से करिएगा तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा।
3: तो मैम, जैसे ये छिड़काव हम करेंगे तो उसका दिन में कोई खास समय रहेगा या इसको किसी भी समय छिड़काव करना?
4: बहुत धूप में इसका छिड़काव नहीं करना है, आप 3 बजे 4 बजे के आसपास कम धूप में, या मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास आप छिड़काव कर सकते हैं।
3: चार की धूप हो तो उसके बाद हम उसको छिड़काव करने के बाद
4: जी बिल्कुल बिल्कुल
3: ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें जानकारी दी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी लाल मोहम्मद जी, आपने हमें कॉल किया किसान वाणी कार्यक्रम में। बहुत सारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़ रहे हैं इस विषय पे, से हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ वो लिख रहे हैं कि किसान वाणी कार्यक्रम पेशकर्ता को साधारण

नमस्कार नमस्कार आपको भी, और प्रोग्राम अवश्य सुनेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इस प्रोग्राम के लिए। किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रोग्राम से प्राप्त होती है, अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पंडित संजीव शर्मा भी लिख रहे हैं, नमस्कार, मेरा नाम संजीव शर्मा, ग्राम लखमपुर पोस्ट बोहित विकास खंड भोजीपुरा जिला व तहसील बरेली से हूँ। हेलो किसान प्रोग्राम के माध्यम से किसानों को बहुत उपयोगी जानकारियाँ मिलती हैं, आपका बहुत बहुत आभार, आपका भी आभार। अब एक

0: आपका बहुत बहुत आभार, आपका भी आभार। अब एक कॉल लेते हैं। जी, नमस्कार, आपने किसान वाणी कार्यक्रम में कॉल लगाया है हेलो किसान की रिकॉर्डिंग के लिए, बताइए।
1: जी सर नमस्कार,
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: ये हम पंतुआई प्रजापति बोल रहे हैं, ससरा खड़ा से। सर
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए आज।
1: ये जानना चाह रहा हूँ लौकी और तुरई,
0: हाँ,
1: सर कब लगा सकते हैं, किस समय पर, मतलब समय बेहतर रहता है,
0: किस समय लगाना बेहतर होगा?
2: लौकी की जो फसल है गर्मी की फसल है, ठीक है, जायद और बरसात में दोनों समय आप लगा सकते हैं। कुछ ठंड की भी वैरायटी है जैसे बांग्लादेशी लौकी वगैरह है, ये आप ठंड में भी लगा सकते हैं, पर मुख्यतः अपने एरिया में गर्मी की फसल के रूप में ये लिया जाता है। तो आप इसकी जो पौध है वो आप जनवरी फरवरी में आप इसका पौधरोपण कर दीजिए, नर्सरी जो लगाते हैं, ठीक है। उसके 30-40 दिन बाद इसका जो मेन का खेत है उसमें इसको लगा देंगे नर्सरी को।
0: जी, और अगर कुछ प्रजातियां भी बता दें आप।
2: इसकी जो कुछ उन्नतशील प्रजातियां हैं गर्मी की है आपकी पूसा लौकी है, ठीक है, पंत लौकी है, पंत लौकी 3, ठीक है, अपने जो एरिया है इसमें ये उन्नतशील प्रजाति में आती है। और ठंड की अगर आप बात करें इसमें बांग्लादेशी लौकी है, चित्तीदार उस पे वो होते हैं, ये आप लगा सकते हैं।
0: जी
1: इसमें एक जानकारी होना था कि
0: हाँ।
1: इसको लगाते हम कौन कौन से पोषक तत्व इसमें डाल सकते हैं, ये और बताइए।
2: देखिए इसमें जब आप नर्सरी इसकी जब लगाएंगे तो नर्सरी इसकी दो तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। एक तो पॉलिथीन में भर के, इस टाइम जनवरी फरवरी के टाइम ठंड का प्रकोप रहता है तो उस टाइम बाहर इसको लगाना सही नहीं है, तो या तो इसको पॉलिथीन में जो मिक्सचर इसका तैयार करेंगे इसमें मिट्टी रेत और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, ये तीनों मिक्स करके 3 बराबर भागों में इसको मिक्स करके, और उसके साथ ही इसमें आप ट्राइकोडर्मा एक वो आता है फंजीसाइड, ठीक है, वो आप इसमें मिक्स कर दीजिए। आपके एरिया में अगर दीमक की समस्या है तो इसमें एक क्लोरोफायरीफॉस दवाई आती है, वो भी इसमें मिक्स करके और इसका एक मिक्सचर बनाइए। और पॉलिथीन और बाजार में अन्य भी उपलब्ध आते हैं प्रोट्रे नाम के, छोटे छोटे छेद बने होते हैं नर्सरी के लिए। और अपने आप खेत में लगाना चाहते हैं तो खेत में क्यारी बना के जमीन से 10 सेंटीमीटर ऊपर की क्यारी बना के जिसमें पानी रुके ना, ठीक है, उसमें आप इसको लगाएं बीज में, और उसके ऊपर कुछ मल्च टाइप का जैसे धान की जो वो आती है उससे आप ढक दीजिए तो आप फसल जो है जल्दी तैयार हो जाएगी और जो ठंड के प्रकोप से बची भी रहेगी। और इसमें जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें आप जो एक एनपीके का मिक्सचर आता है 19-19-19 का, तीनों बराबर मात्रा में ये भी आप साथ में मिक्स करिएगा।
1: कैसी मिट्टी में मिलाना है?
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: इसके बाद में इसकी पौध लगा सकते
2: हैं? जी जी जी, ठीक है। ये खेत जो आपका जिसमें आप लगाएंगे ये तैयार करने का तरीका है, इससे आपकी जो कीट पतंगे हैं जो नर्सरी स्टेज में वो आपकी नहीं आएंगे।
0: जी बताइए, कुछ और जानना चाहते हैं पूछिए।
1: ठीक है, इसमें सर और हम जैसे कद्दू हम लगाए जा रहे हैं, कद्दू उसमें लग सकता है सर?
2: कद्दू अभी भी आप लगा सकते हैं कद्दू को, तो कद्दू भी जो नर्सरी है तैयार करने का तरीका यही है। अगर आप नर्सरी लगाना चाहते हैं तो उसी तरीके लगाइए, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट अपने खेतों में आप लगाएंगे मिट्टी जहाँ लगाएंगे वो भी इसी तरह से तैयार की जाएगी जैसे मैंने बताया।
0: जी नमस्कार, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो कई सारे श्रोता हैं कॉल कर रहे हैं। अब सब्जी फसलों की जो बात है उसमें कीट कई तरह के होते हैं, स्पेशली अगर आजकल के मौसम की बात की जाए मैडम, कौन से कीट हैं जो अब, और बारिश भी अब मौसम कुछ दिन में शुरू ही होगा, बात करेंगे उससे पहले एक और कॉल ले लेते हैं। जी नमस्कार, आपने हेलो किसान में कॉल किया है।
1: हेलो किसान वाणी।
0: जी किसान वाणी में कॉल किया, अपना नाम बताएं।
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं।
0: जी मुन्ना सिंह कठेरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछे।
1: तो हम जानकारी चाहते हैं सब्जियों में
0: जी
1: जो बीमारी लग जाती है, कीटाणु लग जाते हैं जैसे भिंडी है,
0: टमाटर
1: है, तो इसमें हमारे पास 2 बीघा भिंडी है, 1 बीघा भुइया है,
0: हाँ हाँ।
1: तो इसमें सुनी का प्रकोप भुइया पत्तों में भी है और भिंडी में भी है।
0: तो कैसे इन कीड़ों का सफाया किया जाए?
2: देखिए आप, हाँ, भिंडी में तो फल भी खा रहा होगा और पत्तों का रस भी चूस रहा होगा, हाँ, इससे आपकी भिंडी जो है मुड़ रही होगी। तो इसमें आपकी पहली बात तो जो आपके खेत में जो खरपतवार है उसको आप साफ कर दीजिए, ठीक है। और दूसरा इसमें एक दवाई आती है मेलाथियोन, मेलाथियोन आती है, आप इसको खरीद के लाइए और इसमें 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर और घोलकर छिड़काव करना है, ठीक है। और ये छिड़काव आपको हर 15 दिन बाद करना है, हाँ, जब तक कि कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, बाकी तो

0: की बात की जाए तो तुरई में आजकल फल मक्खी का प्रकोप बहुत है। ठीक है, फल मक्खी या तो तुरई सूख रही होगी, सूखी हुई तुरई को आप ऐसे तोड़ के देखेंगे तो उसमें सूढ़ी निकलेगी। तो उसके लिए आप बाजार में एक फ्रूट फ्लाई नाम का ट्रैप आता है, उसमें अंदर ल्यूर लगा होता है, आप मार्केट में जाएं तो वो आप खरीद के लाएं और अपने जो खेत है, अगर आपका 1 एकड़ खेत है तो उसमें कम से कम 12 से 15 फ्रूट फ्लाई ट्रैप डंडे में गाड़ के आप लगा दीजिए। वो क्या करेगी, जो आपकी फल मक्खी खेतों में लग रही है, वो जो नर मक्खी होती है उसको अपनी तरफ खींचती है, वो उसके फ्रूट फ्लाई के अंदर फंस जाते हैं। तो नर मक्खी आके फंस जाती है तो फिर वो उनका प्रजनन नहीं होता है कि जो फसल है तुरई की वो खराब नहीं होगी। और आपकी जो तुरई की फसल है, अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन है, वो सड़ रहा है, उसमें बेवेस्टीन एक दवाई आती है, इसका आप छिड़काव करिए, 10 ग्राम 1 लीटर पानी में डालेगा ये। ये आप 15 से 20 दिनों में एक बार करिए, जब तक हो जाए।
1: ठीक है मुन्ना सिंह जी,
2: आपने खेती के बारे में जानकारी दी हमको
1: जी,
2: आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद मुन्ना सिंह जी। तो कई सारे श्रोता है, अब बारिश का मौसम आने वाला है, कई सारी सब्जियों में तरह तरह के कीड़े लग, तो आम तौर पे क्या करना चाहिए जब हम सब्जी लगाते हैं? एक तो होता है बीज शोधन
0: जी,
1: कर लिया जाए, बाकी ऐसा क्या करना चाहिए कि कीड़े जो है कम लगें?
0: देखिए सबसे पहले तो आप शुरुआत से बात करें तो नर्सरी स्टेज में ही दो तीन तरह की बीमारियां हैं, जैसे एक डैम्पिंग ऑफ बहुत बहुप्रचलित बीमारी है। इसमें क्या होते हैं, जो इसके डैम्पिंग ऑफ के जो कवक होता है वो मिट्टी में ही रहता है,
1: अच्छा
0: वो
1: अच्छा
0: दिखाई नहीं देता है। तो आप इसके लिए बीज उपचारण बहुत जरूरी है, ट्राइकोडर्मा या बेवेस्टीन से बीज उपचारित करके ही बीजों को नर्सरी में लगाइए, तभी इसका कंट्रोल होगा। और अगर आपने डैम्पिंग ऑफ का कंट्रोल नहीं किया तो वो अगली फसल आप लगाएंगे उसको भी संक्रमित कर सकता है।
1: जी बिल्कुल जी।
0: दूसरी बात ये कि जब आप नर्सरी से पौधे को उखाड़ कर उस जो उसका मेन खेत है उसमें आप लगाए जाएंगे तो उसमें खरपतवार है, जो आसपास के खेत के नालियां हैं वो साफ सुथरे होनी चाहिए। ठीक है, पानी का निकास अच्छा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी भर जाता है तो उसमें जो सड़न की बीमारी है जड़ों में वो लग जाती है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और लगाने से पहले गहरी जुताई जरूरी है, बहुत गहरी जुताई बहुत जरूरी है
1: बहुत
0: गर्मी
1: जरूरी
0: के दिनों में।
1: जी बिल्कुल। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान बहन भाई इसका ख्याल रखेंगे, इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानकारी देना चाहें तो हमारे किसान श्रोताओं को दे सकती हैं।
0: देखिए अभी जो मौसम आ रहा है उसमें गर्मी भी खूब पड़ रही है, तो अभी माहों का प्रकोप जो है, इस टाइम पे माहों एक थ्रिप कीटाणु होता है, इनका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इससे हमारे जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं जैसे कि लौकी है, करेला है और टिंडा है, इनमें बहुत ही मात्रा में ये लगता है। इन खेतों के बीच जो गेंदे की फसल है जिसमें पीले फूल आते हैं तो वो माहों को अट्रैक्ट करती है,
1: अच्छा
0: तो इनमें कम से कम अगर आप 15 क्यारियां अगर लौकी की लगा रहे हैं, करेले की लगा रहे हैं, तो 2 पंक्तियां जो हैं इसमें गेंदे की जरूर लगाएं,
1: अच्छा
0: ताकि जो कीट पतंगे हैं इनकी तरफ
1: ना
0: अट्रैक्ट हो,
1: गेंदों की तरफ
0: गेंदों की तरफ
1: जी
0: चले
1: जी
0: जाए। ठीक है, और दूसरा कि फल मक्खी का प्रकोप बहुत है, तो फल मक्खी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाइए, मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, और उसका जो ल्यूर आता है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही उपलब्ध है, तो आप उसको खरीद कर आप 14 से 15 प्रति एकड़ उसको आप 100% तक फल मक्खी कंट्रोल हो जाता है।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान बहन भाई आपने जो जानकारियां दी उससे लाभान्वित होंगे, और सब्जी की जो फसल है जो लोग करना चाह रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करेंगे उसकी, बीज शोधन करके, और जो फसल तैयार कर रहे हैं उनमें जो कीड़े लग रहे हैं उनका भी निराकरण कर पाएंगे, उनसे मुक्ति पा पाएंगे।
0: कद्दू वर्गीय फसलों में एक जैसे लौकी है, टिंडा है, इसमें नर फूलों की प्रचुरता बहुत ही ज्यादा होती है, इनके बारे में मैं कुछ जानकारी देना चाहूंगी। सवाल किसानों द्वारा बहुत ही रूप में पूछा जाता है
1: जी जी
0: कि लौकी फसलों में नर की प्रचुरता क्यों होती है, तो पहली बात तो किसान भाई इसमें जो है यूरिया की मात्रा बहुत ही अधिक डालते हैं और अत्यधिक सिंचाई करते हैं गर्मियों में, इसके कारण जो है जो नर फूल हैं वो बहुत ही ज्यादा पौधे में आते हैं और मादा फूलों की संख्या कम हो जाती है। और लौकी तर देखा जाता है शाम समय, जो फूल का खिलने का समय होता है 4 बजे या 5 बजे के आसपास, तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूंगी कि कम से कम सिंचाई करें और यूरिया की मात्रा कम से कम डालें, और साथ ही अगर बहुत या तब भी इसमें इससे नियंत्रित नहीं होता है तो

0: आप जिब्रेलिक एसिड 20 ppm पानी में घोल मिलाकर आप बुआई के 10वें दिन से लगातार और 10 से 15 दिन के अंतराल पर आप छिड़काव करें, आपके मादा फूलों की अधिकता बनी रहेगी।
1: तो डॉक्टर अर्चना रानी साहिबा, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।
2: तो पूनम बहन, देखो अबे हमारे भैया बहन सुन रहे कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हमारा आज को विषय हो सब्जी फसलों में रोग एवं कीट प्रबंधन। इस विषय पर जो हमारे किसान भैया फोन के माध्यम से फोन करो अपनी समस्याओं को लेकर बाको समाधान कर रही विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना रानी और आपसे बातचीत कर रहे भैया मिथिलेश श्रीवास्तव। तो देखो पूनम बहन के कितने भैया बहनों ने हमारे फोन करे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनो सवाल रखो और बाको उत्तर पाओ या जो समस्या ही बाको समाधान पाओ। लेकिन बहुत से भैया बहनों की हमारी शिकायत जा रहती है कि हमारा फोन ना लगता है। तो भैया ऐसी बात ना है, अगर आप टाइम से फोन करेंगे, 12:30 बजे हमारे जा कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को समय है, तो 12:30 बजे अगर आप फोन करेंगे तो आपकी जो समस्या है, चाहे वो सब्जी फसलन को लेके हो या जो भी विषय हमारो बादिन को रहते, वहाँ में आपकी फोन कॉल जरूर शामिल होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भैया हमारे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जो आज को विषय रहते बाको देखत रहें और बाके बाद अपनी समस्या को लिख लें और जब फोन करें तो उनके पास जाए कि अपनी समस्या लिखी भी हो तो जिससे कोई व्यवधान ना हो।
3: हाँ भैया, और जिससे उनकी जो समस्या हुई बाको समाधान भी अच्छे से हो जाएगा।
2: बिल्कुल। और देखो पूनम बहन, अब कुछ भैया ने हमें फरमाइश करी है सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ भैया के पत्र भी हैं।
3: हाँ।
2: तो इनकी फरमाइश पढ़ देते हैं और फिर सुनवा देते हैं इनको लोकगीत। तो पहली फरमाइश हमें मिली है कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति की।
3: और भैया जे हैं ग्राम लखमपुर पोस्ट बोहित विकासखंड भोजीपुरा से संजीव शर्मा और इनके परिवार के सभी साथी।
2: साथ ही साथ हमको फरमाइश मिली है राम कुमार रेवार भैया की। और पूनम बहन जी कह रहे हैं कि किसान वाणी जो भैया बहन कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनको नमस्कार। तो भैया आपको भी हम दोनों बहन भैयन की ओर से नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: और आप अपनो कीमती समय हमें देते हैं और कमेंट करते हैं, तो इनने भी फरमाइश करी है लोकगीत सुनन की। साथ ही साथ हमको फरमाइश मिली है कटरा चांद खां पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण, दृष्टि, मानवी की।
3: और भैया एक पत्र हमें मिलो है जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सतेंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरता और अंतमा। इन सब भैया बहनों ने भी जय लोकगीत सुनन की ले लिखो है।
2: तो सब भैया बहनों को सुनवा देते हैं जो प्यारो सो लोकगीत।

0: तो पूनम बहन देखो, हमने भैया बहन को मनोरंजन भी कराए दो और भैया बहन खुश हो गए होंगे, क्योंकि जो समय जो होते हैं ना, हमारे भैया जो होते हैं गांव में रोटी खा रहे होते हैं, तो रोटी खाते भी अगर गीत संगीत उन्हें सुनने को मिल जाए तो उनको पेट और अच्छी तरीका से भर जाता है।
1: हाँ भैया,
0: अब पूनम बहन बताओ बस सवाल को जवाब जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछो हो।
1: भैया आज को सवाल हो कि इस माह में किन किन सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं। तो जा को जवाब है कि लौकी है, तुरई है, करेला है, भिंडी है, ग्वार है और टिंडा, इन सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं।
0: बिल्कुल। और देखो भैया, ध्यान रखो क्योंकि खरार को मौसम चल रहा है, खरार के मौसम में ये सब नाजुक सब्जियां होती हैं, तो ऐसे में कहा है कि सिंचाई को बहुत ध्यान रखें।
1: हाँ
0: और सिंचाई अगर हमारे भैया बहन कर रहे हैं तो सुबह और शाम को समय ही चुने सिंचाई के लिए, क्योंकि दोपहर में सिंचाई ना करें। दोपहर में
1: हाँ
0: आप पानी भर देंगे और वो सूरज की गर्मी से बहुत गर्म ही जाएगा, तो बासे जाए विपरीत प्रभाव हमारे पौधन पर पड़ेगा, छोटे और नाजुक पौधा होते हैं।
1: हाँ भैया, वे तो होते हैं और ऊपर से हमारी जो सब्जियां लगी होती हैं उनमें भी परेशानी हो जाती है।
0: तो पूनम बहन, अब मौसम भी पूरी तरह से बदल गया हुआ है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब क्या बताना चाहूंगी कि भैया बहन अपने पशुओं को कैसे ध्यान रखें।
1: भैया हम तो जय कहेंगे कि हमारे जो भैया बहन हैं वे अपने पशुओं को ध्यान अच्छे से रखें, यानी कि उनको सुबह को धूप में, जैसे कुछ लोग ऐसे हम बांध देता कि वहां पर सवेरे ही धूप आ जाती है, तो हल्की फुल्की धूप से तो कोई अंतर ना, लेकिन जैसे ज्यादा टाइम ही रहो, मान लो 8 बज गए, 9 बज गए या फिर 10 बज गए, तो वह टाइम पर उनके जो पशु होते हैं उनको बहुत गर्मी लगती है, तो उनको सही करके स्नान करवा कर फिर ऐसी जगह बांध दो जहाँ छाया आ रहा है और उन्हें दिन में देखत रहा और ताजी पानी पियावो भैया, नल से निकाल कर ठंडो ठंडो, जिससे कि हमारे पशुओं उनको आराम मिले, और
0: बिल्कुल
1: अगर वे तरियारे स्थान बंधे होंगे तो उनको ज्यादा आराम मिलेगा। और शाम को मच्छर को ध्यान रखो, धुआं कर दो कि धुआं कर दोगे, और धुआं भैया ध्यान से करो, जाना है कि कते जानवर के पास में कर दो,
0: हाँ
1: दूर को करो, और बाहर जैसे रात में अगर आपकी आंख खुल रही है, आप किसी वजह से उठ रहे हो, तो बाहर को चेक आउट कर लो कि वो धुआं ही रहा हुआ है अच्छी तरीका से हमारे जो

0: जानवर हैं उनको मच्छर तो ना लाग रहे हैं, और अगर हो सके तो खुले स्थान में हमारे जो जानवर हैं उनको बांध दो, ऐसी जगह पर जहाँ पर वे हवा हुआ आत रहे और ज्यादा बंद हो रहे हैं।
1: बिल्कुल, तो सही बात है, ये बातें हमारे भैया बहन ध्यान रखेंगे। और दूसरे हम तो जय कहेंगे कि जैसे अपनों ध्यान रखते हैं वैसे ही अपने पशुओं को ध्यान भी रखना चाहिए। अब बता दो आज के कार्यक्रम की नसीहत।
0: भैया हम तो अपने भैया बहनों से जय कहेंगे कि अपनी जो खेती बाड़ी है यानी कि कुछ भैया की सब्जी फसलें लगी हैं उनको ध्यान अच्छी तरीका से रखें और उनसे अधिक मुनाफा उठावें।
1: बिल्कुल, तो भैया बहनों अब आज के कार्यक्रम किसान वाणी से अपने भैया रघु,
0: और अपनी बहन पूनम को दे अनुमति।
1: भैया बहनों
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। शाम के 7 बजे हैं और ये समय है ग्राम जगत का।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनने वाले सब भैया बहनन को एक बार फिर से हम दोनों भैया बहनन की
1: राम राम, राम।
0: तो पूनम बहन देखो, हम लोग गांव बस्ती में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी को काम करते हैं, मगर जब देखते हैं कि हमारे कुछ भैया हैं खेती के काम कर रहे हैं, संग में बीड़ी पी रहे हैं, मतलब धूम्रपान कर रहे हैं, और आजकल तो पूनम बहन हम तो जब देखते हैं हमारे गांव खाई संजा को, सब जो नए लड़का हैं जिन्हें मेहनत से खेती में काम करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल नशा के घाई को ज्यादा बढ़ रहे हैं।
1: हाँ भैया, जब बात बिल्कुल सही कही आपने कि देखो ना, अगर कहूँ पर किनों घर शादी है ना, या किनों घर कोई और प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम मानो, अब वहां में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे तो बेचारे लगे होंगे काम में, अब जो लौड़ धार जो काम कर सकता है वे पिए वे तुन होंगे।
0: हाँ, तो मतलब जो है कि देखो भैया, अपने चाहे घर में कोई कारज है, शादी है, ब्याह है या तीज त्योहार है, तो बाको ढंग से मनावे, प्यार से मनावे, खाए पी के मनावे, और चाहे कि धूम्रपान से बचें। और देखो कितनी कितनी गंभीर बीमारी अब पता चल रही है, चार कोस पे, पहले तो दस दस कोस पे कोई बीमारी ऐसी पता ना चलती, अब पता चला कि दूसरों घर छोड़ के तीसरे ही घर में गंभीर बीमारी से ग्रसित है। तो बाको कारण है कि हमारे भैया बहन धूम्रपान करते हैं।
1: हाँ, और अगर धूम्रपान ना करेंगे तो उनको स्वास्थ्य सही रहेगा भैया, और उनके घर में भी बहुत सुख शांति रहेगी, क्योंकि आपने देखी हुई कि वे नशा करके आते हैं तो घर में और बवालबाजी होती है।
0: देखो एक जहाँ पे एक गानू है कि आज तो खैर बखत कम है हमारे कार्यक्रम में, तो हम भैया बहनन को ना सुना पाओगे, लेकिन ओम प्रकाश भैया ने एक बड़ो अच्छो ढोला गाओ जहाँ पे कि कैसे जो आदमी नशा की गिरफ्त में आ जाता है, कैसे अपनो घर परिवार बर्बाद कर लेते हैं, अपनो सब खेती वेती में नुकसान कर लेते।
1: हाँ भैया, वो तो कर लेता है, लेकिन कार्यक्रम में अब एक जानकारी है, काओ तो सुनवाने।
0: बिल्कुल सुन बाबू।
1: तो भैया बहनों, आज जानकारी है कार्यक्रम में डाकघर की बचत योजना है, तो इस विषय पे जानकारी दे रहे हैं श्री रवि कुमार, और उनसे बातचीत करी है आपकी बहन पूनम ने।

0: कार्यक्रम में जानकारी है, वो डाक खाने से जुड़े हुए हैं और डाक खाने में काम भी करते हैं, तो जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम?
1: मेरा नाम रवि कुमार है।
0: आप यहाँ पर किस पोस्ट पर कार्यरत हैं?
1: मैं यहाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ।
0: अच्छा, हमारे बहुत से भैया बहन आज कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे कि आपको ये जो नौकरी है वो क्या क्या काम आपको करने होते हैं?

0: मैं यहाँ सड़कड़ा ब्रांच में ब्रांच पोस्टमास्टर हूँ। यहाँ मुझे लोगों को डाकघर के सुविधाओं के बारे में बताना होता है। डाकखाना जैसे कि बहुत तरह के अकाउंट खोलता है, सेविंग खाता और TD खाता, सुकन्या समृद्धि योजना के खाते और कई तरीके के खाते खोलते हैं, तो वही मुझे खाते खोलने होते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी होती है।
1: अच्छा, तो जो आप इतने सारे खातों की जो बात कर रहे हो, तो ये सब खाते हमारे भैया बहन आसानी से खुलवा सकते हैं डाकखाने में?
0: हाँ बिल्कुल आसानी से खुलवा सकते हैं, हमें बस पैन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध कराना होता है।
1: अच्छा, आपने देखी होगी कि गांव स्तर पे अगर देखी जाए तो अपने पैन कार्ड की बात तो बहुत दूर की रही, लोग आधार कार्ड भी किसी को नहीं देते हैं, कहते हैं कि कोई लोन निकाल ले कि ये कर ले वो कर ले। चाहे आप सरकारी संस्था में ही काम करते हो तो आप उन्हें किस प्रकार से बताते हो कि आप इनका लाभ ले सकते हो?
0: हम उन्हें दूसरे लोगों के उदाहरण देके समझाते हैं, और लोगों के खाते खुले हुए हैं हमारे पास, उनका उदाहरण देके समझाते हैं। और हम पूरी तरीके से सरकारी हैं, डाकखाना पूर्णतः सरकारी संस्था है, इस तरीके से हम उन्हें समझाते हैं तो लोग हमारी बात समझ जाते हैं।
1: बहुत जरूरी है कि अगर हम भरोसे करेंगे तभी हम अपने सब काम अच्छे से कर पाओगे। आपने बहुत से खातों के बारे में अभी हमारे भैया बहनों को बताया। अच्छा, इन सब खातों के आप अगर पूछे कि TD जो बताया आपने कि TD खाता कैसे खुलता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा उन लोगों के लिए?
0: TD खाता एक फिक्स डिपॉजिट करने वाला खाता है, इसमें 1 साल 3 साल 5 साल तक इंसान अपना पैसा फिक्स कर सकता है। इसमें हमें कस्टमर से आधार कार्ड और पैन कार्ड लेना होता है और हमारे डाकघर में उसे एक बचत खाता खुलाना होता है। अच्छा। इसमें लगभग 7.5% का ब्याज है, जो कि 1 साल में कम ब्याज मिलता है, 3 साल में थोड़ा कम और 5 साल में सबसे ज्यादा ब्याज है।
1: 5 साल में सबसे ज्यादा मिलता है। हाँ। और आपने जो बात करी सुकन्या समृद्धि योजना को, जो खाता खुलता है, बाकी क्या करने होता है भैया बहनों को?
0: सुकन्या समृद्धि खाता खुलाने के लिए ये सिर्फ छोटी बच्चियों का खाता खुलता है, जो कि बच्ची की एज 10 साल से कम होनी चाहिए, जिसके लिए हमें बच्ची का आधार कार्ड और बच्ची के माता या पिता में से किसी एक के आधार कार्ड पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसमें हमें लगभग 7.5% का ब्याज मिलता है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इसमें 15 साल तक पैसा जमा होता है और इसमें हम कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं कभी भी। ये गुल्लक की तरह काम करता है ये खाता, हमारे पास जब भी जितने भी पैसे हों हम इसमें जमा कर सकते हैं, कोई इसमें बंदिश नहीं है कि हर महीने हमें इतने ही पैसे जमा करने हैं।
1: जवाब तो बहुत अच्छी कही आपने कि कोई बंदिश ना है। तो 15 साल के बाद हमारे भैया बहनों को कितने फिर जमा बढ़ के मिलता है?
0: इसमें 7.5% का ब्याज मिलता है लगभग, अभी 8.2 चल रहा है, उसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज लगता है इसमें और कभी बढ़ता चढ़ता रहता है ब्याज, तो ऐसे एक साथ बताना हम कंफर्म नहीं कर सकते कितना मिलेगा।
1: अच्छा, यानी कि समय समय पर बदलता रहता है ब्याज?
0: 8 के आसपास रहता है,
1: ऊपर नीचे होता रहता है।
0: हाँ, ऊपर नीचे होता रहता है।
1: अच्छा, तब तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके लिए हमारे भैया बहनों को आपके डाकखाने में ही जाने होता है या फिर आप गांव-गांव में जाते हैं?
0: हम भी गांव-गांव चले जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन खाता खुलवाने के लिए उन्हें हमारे पास आना होता है, हम भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स लेने चले जाते हैं।
1: अच्छा, कहूँ ऐसे तो ना कि कोई भैया बहन आपसे जा कहते हो कि अरे हम ना देंगे अपना आधार कार्ड, बताना आप हमारे आधार कार्ड को क्या करोगे, तो फिर आप उन्हें किस तरीके से समझाते हो?
0: नहीं, लोगों से हमारी जान पहचान हो जाती है, डाकघर में हम काफी टाइम से हैं एक जगह पे, तो हमारी बात सुन लेते हैं, लोग हमें जानते हैं।
1: अच्छा, तो आपकी बात समझ जाते हैं वो अच्छे से? हाँ। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे से भैया बहनों को समझाते हो और उन्हें इतने फायदा दिलवाते हो। आप को जो काम है, यानी कि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर हो, तो ये ब्रांच पोस्ट मास्टर अगर हम अपने भैया बहनों को समझाएं तो वो किस तरह से समझाएंगे कि ये पोस्ट आपकी क्या है, इसकी पहुंच क्या है, इसके काम क्या है?
0: ब्रांच पोस्टमास्टर ये एक गांव में एक डाकघर होता है, उसमें जो डाकघर संभालता है वो ब्रांच पोस्टमास्टर होता है। एक डाकघर होता है बड़ा डाकघर, जो कि थोड़े से शहरी इलाके में होता है, उसके अंतर्गत काफी सारे ब्रांच ऑफिस आते हैं, जो कि एक ब्रांच ऑफिस है सड़कड़ा। सड़कड़ा ब्रांच ऑफिस में मैं काम करता हूँ, जहाँ का मैं पोस्टमास्टर हूँ। मेरे अंतर्गत 10 गांव आते हैं, 10 गांव के जो भी डाकघर का काम है वो सारा मैं देखता हूँ।
1: अच्छा, सब डाकघरों का काम आप देख?
0: 10 गांव को अगर डाकखाने में कुछ काम है तो उनकी सहायता मैं करता हूँ।
1: अच्छा, 10 गांव की आप सहायता करते हो, तब तो आप पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है कि इतने गांव को आपको एक साथ संभालना है, यानी कि परिवार की तरह आपको 10 गांव को देखना है। तो बहुत से ऐसे भैया बहन होते हैं जो कि इस काम को करते हैं और इससे फायदा भी लेते हैं, वो आपसे मिलते होंगे, आपसे जानकारी जुटाते होंगे, तो आप उन्हें क्या क्या जानकारियां देते हो कि आप ये काम करवाओ, आप वो काम करवाओ? क्या क्या ऐसे काम है जो हमारे भैया बहनों को बताते हो?
0: हम काफी सारी सुविधाएं देते हैं लोगों को, जैसे कि हम AEPS विड्रॉल भी कर सकते हैं और हम एक IPP अकाउंट खाता खोलते हैं जिसमें सम्मान निधि लोगों

0: की आ जाती है। अच्छा। जिसमें सम्मान निधि इस वजह से आ जाती है क्योंकि वो डीबीटी हम अपने उस खाते में आसानी से कर देते हैं। अच्छा। एनपीसीआई से लिंक कर देते हैं हम, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का खाता है जो सुविधा डाकखाना प्रदान करता है।
1: आपने अभी जो बताई कि किसान सम्मान निधि का फायदा भी हमारे भैया बहन इस तरीका से मतलब आपके यहाँ खाता खुलवा कर ले सकता है, लेकिन हमारे बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सिर्फ जनसेवा केंद्र पर ही जाकर हमें जो काम करवाना चाहिए तो बाई से हमें जो फायदा मिलता है, फिर आपके यहाँ पे उन्हें क्या क्या कागज जमा करने होता है और किस तरीका से आप उन्हें काम करवाते?
0: जनसेवा केंद्र पे सम्मान निधि का सिर्फ फॉर्म अप्लाई होता है, वहाँ से फॉर्म भरा जाता है, लेकिन जो खाता लिंक हम करते हैं आधार से, जो कि हम खाता खोलते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, जो कि आधार से डायरेक्ट लिंक हो जाता है, एनपीसीआई डीबीटी लिंक होता है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, जो कि हम ही करते हैं, हम खाता खोलते हैं, जो जनसेवा वाले खाता नहीं खोलते हैं ये वाला।
1: अच्छा। हाँ जी, आप ही खोलता हूँ तो आपको क्या क्या कागज उनके जमा करने होते हैं? जामा
0: अभी इससे पहले तो सिर्फ आधार कार्ड से खुल जाता था खाता ये, लेकिन अब हमें पैन कार्ड की भी आवश्यकता होती है।
1: अच्छा, तो कोई फार्म वार्म भरने पड़ता है क्या हमारे भैया बहनों को?
0: नहीं, जिसका खाता खुलना है उसे स्वयं आना होता है, उसका फिंगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से खाता खुल जाता है।
1: तब तो बहुत अच्छी बात है, जो किसान सम्मान निधि योजना को लाभ है वो हमारे भैया बहनों को आसानी से मिल जाता है इसके माध्यम से।
0: हाँ, अगर उनके सारे कागज पूरे हैं, उन्होंने अपना अप्लाई करा दिया है और उनकी सम्मान निधि सिर्फ डीबीटी लिंकेज की वजह से रुकी हुई है, जो कि हम कर देते हैं तो सम्मान निधि आ जाती है।
1: तब तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भैया बहनों को इसका भी फायदा मिल जाता है। और आपने एक और बात बताई इससे पहले, तो वो खाता किस प्रकार से खुलता है, क्या क्या लाभ होते हैं उसको?
0: सेविंग खाता जो कि है, तो बचत खाता होता है हमारे डाकघर में, जो कि और बैंकों के मुकाबले हम उस खाते में ज्यादा ब्याज देते हैं। अच्छा। और बैंक जो है वो बचत खाते में लगभग 2-2.5 के आसपास ब्याज देते हैं, लेकिन हमारा डाकघर बचत खाते पे लगभग 4% का ब्याज देता है।
1: अच्छा, 4% का। हाँ। कितने दिनों तक मतलब ये होता है कि हमें इतने दिनों की ही अपने रुपया है वे इतने ही दिन तक हम जमा करेंगे, जब भी कोई लिमिट लगी हुई होती?
0: नहीं, ये बचत खाता है, इसमें जब मर्जी आप डाल सकते हैं, जब मर्जी निकाल सकते हैं।
1: अच्छा, तो भी निकालिए सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, जब मर्जी जितने भी जमा कर सकते हैं और जितने भी निकाल सकते हैं।
1: बहुत से भैया बहन जो काम करवाते होंगे और डाकखाने में जाते भी होंगे और आपसे पूछते भी होंगे, आप उनको इतने अच्छे तरीका से बताते हो, लेकिन हमारे आज कार्यक्रम के माध्यम से बहुत से भैया बहन आपको सुन रहे हैं, उन सबको संदेश के रूप में आप क्या कहना चाहोगे?
0: मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग डाकखाने से जुड़े और डाकखाने का लाभ उठाएं। डाकखाना जितने भी खाते खोलता है, सभी खाते और बैंकों के मुकाबले ज्यादा ब्याज देते हैं, और हम जो बीमा करते हैं, बीमा भी हम और कंपनियों के मुकाबले अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, और हमारे डाकघर में आधार की सुविधा भी है, हम आधार का काम करते हैं।
1: अच्छा, आपने जो हमें बताया कि आधार को काम आप करते हो, तो आधार को काम आप किस तरीका से करते हो?
0: आधार का मैं अपने ब्रांच ऑफिस में 0 से 5 साल के बच्चे का आधार बना सकता हूँ और लोगों के आधार में मोबाइल नंबर लिंक कर सकता हूँ। अच्छा। बाकी सभी कामों के लिए हमें बड़े डाकघर में सब ऑफिस में जाना पड़ता है।
1: तो जो बना देते हो तो आप को कितने मतलब कितने गांव को बनाने के लिए परमिशन मिली हुई होती है कि आप इतने गांव को आधार बना देते हो, ऐसा कुछ होता है?
0: मैं अपनी ऑफिस में बैठकर कहीं का भी आधार बना सकता हूँ। अच्छा। लेकिन हमें जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है और बच्चे के मम्मी या पापा में से किसी को साथ आना होता है।
1: अच्छा, देखिए है कि बहुत से भैया बहन ऐसे हैं जो जैसे समस्या से जूझ रहे हैं कि उनको जो आधार न बन पा रहे हो, या उनके बच्चा को है, या उनको छोटा बच्चा है, किसी को न बन पा रहे हो, तो बाकी जो भैया बता रहे हैं कि वहाँ आके आप आराम से अपना आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और भैया बता ही रहे थे कि इतनी सारी बातें उनने आप सबको समझाई, हमें उम्मीद है कि हमारे सब भैया बहन सुनकर लाभान्वित होंगे और आपने बहुत सी ऐसी जानकारी उनको दी जिससे उन्हें लाभ होगा। भैया बहनों को संदेश के रूप में कुछ और भी बता दें?
0: बाकी सब मैं बता चुका हूँ, यही कहना चाहूंगा आखिरी में, डाकखाने से ज्यादा से ज्यादा जुड़े।
1: आप कार्यक्रम से जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे भैया बहनों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अब हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता डाकघर की बचत योजनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्री रवि कुमार और आपसे बातचीत कर रही बहन पूनम।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: आरबीआई कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: तो पूनम महन, देखो आपने जो बात करी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत डाकघर की बचत योजनाएं, तो देखो सरकार तो बहुत सी योजनाएं चलाती है, लेकिन बामे जा है कि जागरूकता अगर हम लोग ना रखेंगे तो हम उन योजनाओं को लाभ ना ले
1: हाँ
0: पाएंगे।
1: भैया, तो जहाँ में कुछ बात जो आ जाती है कि हमारे बहुत से भैया बहन पढ़े लिखे ना होता है, तो बेजा कहता है अरे हो ही जा से का फायदा है। लेकिन हाँ, अगर हमारे जो समझदार भैया बहन हैं जो जा कह रहे हैं कि उन्हें समझ में आ रही है कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें कौन सी जानकारी दी जा रही है, तो भी उन्हें बता सकते हैं कि देखो जैसा आपको जो फायदा होगा, जैसा आपको इतने रुपया बढ़ती मिलेंगे। कुछ लोग तो आपने देखी वही जकाते हैं अरे हाँ जितने हम जमा करेंगे उतने ही हमको मिलेंगे। तो भैया जवाब तो ना है, थोड़े बहुत तो बढ़कर मिलते ही है।
0: अरे ना है, देखो जो योजनाएं होती हैं सब में ब्याज मिलते हैं, और जा है कि देखो अब बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं,
1: हाँ
0: तो
1: भैया,
0: जब हम पहली बूंद बामे डालेंगे तई धीरे धीरे घड़ा भर हो जाए। अब हम सोचें एक संग हमें बहुत ज्यादा फायदा हो जाए तो ऐसा ना है। तो डाकघर की जो बचत योजना है वो जा है कम पैसा से शुरू कर सकते हैं हमारे भैया, और देखो बचत तो जिंदगी में बहुत जरूरी है।
1: हाँ भैया, बचत तो जरूरी है लेकिन समय की भी बचत जरूरी है भैया।
0: हाँ,
1: कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना बचा होगा कि अपने भैया बहन से घर के कुछ और बात करें।
0: तो भैया बहनों अब आज के कार्यक्रम ग्राम जगत से हम दोनों बहन भैयन को दो अनुमति। भैया बहनों राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिलाइए 7:15 और 34 सेकंड हुए हैं।

श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना सुनिए। आप हैं विवेक पुत्र राजपाल, आप मुझियाना थाना विनावर जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी आयु लगभग 21 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 5 इंच लगभग। ये 15 अप्रैल 2025 से लापता हैं। हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। इकहरा जिस्म, रंग गेहुआ व चेहरा गोल है। इन्होंने गुलाबी शर्ट व काली पैंट पहनी हुई है। इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। खोई व्यक्ति की सूचना में एक और नाम है, कुबेर पुत्र नौबतराम का। आप नवापुरा थाना फैजगंज बेहटा जनपद बदायूं के निवासी हैं। इनकी उम्र 52 वर्ष है, लंबाई 5 फीट 6 इंच। ये हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं। ये 20 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इकहरा पतला जिस्म, रंग गेहुआ व चेहरा गोल है। इन्होंने आसमानी शर्ट, काली पैंट व काले जूते पहने हुए हैं। इनसे जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं से संपर्क करें। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
3: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय

0: द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूं कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
1: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही अब प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: जेठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बचरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल

0: शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:31 हुए हैं। समय है रेडियो हेल्पलाइन का।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
4: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
5: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
4: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
5: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
4: सांस नियंत्रण के लिए CPAP वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
6: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
7: बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
4: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथेरेमिया बाय क्रिटिकूल,
5: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
4: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
6: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल OPD,
4: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय,
5: गंगवार हॉस्पिटल,
4: निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
6: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
8: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मुकेश कुमार पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
9: श्रोताओं, आप सभी को और पांडे जी आपको मेरा नमस्कार।
8: जी डॉक्टर साहब, और आज हम बात करेंगे समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के बारे में, उनकी जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी बात करेंगे, साथ ही जो गंभीर बीमारियों के इलाज में वेंटिलेटर और मशीनों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में आपसे जरूर जानेंगे।
9: जी
8: तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे किसी श्रोता की फोन कॉल आए, देखिए कॉल आने की बात हम कर रहे थे और कॉल आ गई है, इनकी समस्या सुन लीजिए।
9: हेलो।
10: हेलो, आकाशवाणी बरेली।
9: यस,
8: बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या नाम है, कहाँ से फोन किया है?
10: हम मुन्ना लाल बोल रहे हैं, ग्राम डाकपुर, जिला बरेली से।
8: जी बताइए मुन्ना लाल जी, आज क्या प्रश्न पूछने वाले हैं आप? डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं, बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ।
10: सर, हमारा एक बच्चा है जो कि 7 माह का पैदा हुआ है बच्चा।
9: जी।
10: जिसका वजन 1 किलो 600 ग्राम है, जो कि माँ का दूध खींचने में असमर्थ है।
9: जी।
10: और बच्चे की पतली भी तेज चल रही है, सांस में गड्ढे पड़ रहे हैं, दूध पी नहीं पा रहा है, बुखार भी लग रहा है उसको, हम क्या कर सकते हैं सर?
9: कितने दिन का बच्चा है पहले ये बताइए?
10: 7 माह का बच्चा है।
9: 7 माह का मतलब पैदा

0: हुआ था और आज पैदा हुए कितने दिन हो गए उसको?
1: अभी तो बच्चे को 2 दिन ही हुए हैं।
0: और 2 दिन में क्या क्या परेशानी आना शुरू हुई?
1: एक तो बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है
0: जी,
1: बच्चा किना रहा है और सांस भी तेज चल रही है और पैर उसके नीले पड़ रहे हैं।
0: अच्छा, ये किनाना कब शुरू किया उसने? पैदा होने के कितने देर बाद किनाना शुरू किया था?
1: पैदा होने के करीब 1 घंटे के बाद किनाना शुरू कर दिया बच्चे ने।
0: अच्छा, और ये बताइए, बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, ऑपरेशन से पैदा हुआ है?
1: बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ था मगर टाइम लगा था पैदा होने में बच्चे को।
0: देखिए, जैसे मुनालाल आपने बताया कि आपके बच्चे को इसको पैदा होने में समय लगा और बच्चे ने किनाना शुरू कर दिया, तो देखिए जो समय से पूर्व बच्चे पैदा होते हैं जिनका वजन कम होता है उनको जो अक्सर परेशानियां होती हैं वो एक तो ये कि ये बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं तो इनके लंग्स भी प्रीमेच्योर होते हैं, मतलब लंग्स भी उतने डेवलप नहीं हो पाते जितने नॉर्मल डेवलप होने चाहिए। तो कई बार इन बच्चों में सर्फेक्टेंट की कमी होती है जिसकी वजह से सांस लेने में बच्चों को परेशानी होती है, बच्चों की पसली चलने लगती है और बच्चा किनाना शुरू करता है। दूसरी तकलीफ होती है इनमें बच्चों में सेप्सिस। सेप्सिस में ये कि बच्चे को बुखार आना शुरू करता है, बच्चा किनाना शुरू करता है, दूध कम पीता है, दूध नहीं पी पाता, बच्चा नीला पड़ने लगता है, कई बार उसको दौरे पड़ने लगते हैं और बच्चे का पेट फूलने लगता है या बच्चा दूध नहीं पी पाता। जो बच्चे समय से पूर्व पैदा होते हैं उनको अक्सर दूध पीने में परेशानी होती है क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं होती कि वो माँ का दूध खींच पाए और माँ का दूध पी पाए। तो जो बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं उनको कई बार नली से दूध पिलाना पड़ता है। और जैसे बताया आपने आपके बच्चे को सांस में तकलीफ है, तो इस बच्चे को हो सकता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हो, और या फिर ये कि उसको कंजेनाइटल निमोनिया हो, या तीसरी चीज ये कि बच्चे को सेप्सिस हो रही हो जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। तो इन बच्चों के इलाज के लिए जरूरी है कि आप ऐसी सेंटर पे इलाज कराएं जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे कि वेंटिलेटर है, एबीजी है और आपका इन्फ्यूजन पंप्स हो, अवेलेबल हो, और अगर सर्फेक्टेंट की कमी है तो उसको सर्फेक्टेंट डालना पड़ सकता है बच्चे को। और स्पेशली इस माँ को ये बताइए, ये किसी लेडी डॉक्टर को दिखा रहे थे तो एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी डेक्सोना या बीटामेथासोन इंजेक्शन माँ को लगे हैं। अगर जैसे माँ को एंटीनेटल स्टेरॉइड लगे हुए होते हैं तो उन बच्चों में हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज की जो इंसिडेंस है, जो चांस है, वो कम हो जाता है। इंजेक्शन नहीं लगे तो आप इस बच्चे को तुरंत दिखाइए एक अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को और जहाँ पे कि इसके इलाज की सारी सुविधाएं हो, एनआईसी हो, जहाँ पे इनका इलाज किया जा सके।
2: और कोई प्रश्न है मुन्नालाल जी आपका?
1: नहीं है सर।
2: जी धन्यवाद फोन करने के लिए, और इतनी महत्वपूर्ण बात आप हमारे श्रोताओं के लिए उठाते हैं जो हमेशा ही कुछ न कुछ अर्थ होता है उसका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए,
1: हमारा भी आकाशवाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही और बहुत ऐसी समस्या उठाई जो कई बार होती है बच्चों के साथ और समझ नहीं पाते माता पिता, उसके बाद पछताना पड़ता है। आपने भी डॉक्टर साहब कहा कि हाईलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होती है, कुछ इंजेक्शन की बात की, थोड़ा स्पष्ट कीजिए ताकि हमारे श्रोता समझ पाए कि क्या कहना चाह रहे थे आप, कौन से वो इंजेक्शन है जो माता को अगर लग जाए तो उस बीमारी की संभावना कम हो जाती है।
0: देखिए, जो गायनकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है, जो लेडी डॉक्टर है, उसके ट्रीटमेंट में अगर माँ है और उनको ये लगता है कि इस माँ की डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, समय से पूर्व ये बच्चा पैदा हो सकता है, तो एंटीनेटल स्टेरॉइड इन माँ को लगाया जाता है जिसमें कि इंजेक्शन डेक्सोना लगता है माँ को, और वो आप अपने लेडी डॉक्टर से बात करके ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसके कई फायदे हैं, जिसमें से एक फायदा ये है कि हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज होने के चांस कम हो जाते हैं, दूसरा आपका और परेशानियां जैसे कि नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस है या और इस तरह की जो परेशानी है वो भी कम हो जाती है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज है उसके भी चांस कम हो जाते हैं।
2: जी जी जी, यानी जो डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन इंजेक्शन है
0: जी,
2: ये खास परिस्थितियों में यदि गर्भवती माता को लग जाते हैं
0: जी,
2: तो बच्चों की कई बीमारियों से रक्षा हो जाती है।
0: हाँ, नवजात शिशु की कुछ बीमारियों से,
2: कुछ बीमारियां हैं,
0: बचाव हो जाता है। तो अगर लेडी डॉक्टर को या मतलब जो माँ का इलाज कर रही है डॉक्टर, वो अगर एंटीनेटल स्टेरॉइड, खासतौर से हिंदुस्तान के अंदर जो हम एंटीनेटल स्टेरॉइड यूज करते हैं वो डेक्सोना यूज करते हैं, क्योंकि बेटनिसोल का वो सॉल्ट जो कि यूज किया जाना चाहिए, जो कि एक्चुअली अगर ट्रीटिंग डॉक्टर को ये पता है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो सकता है तो माँ को डॉक्टर इंजेक्शन लगवा सकते हैं जिसके एंटीनेटल स्टेरॉइड, जिसमें कि डेक्सामेथासोन और बीटामेथासोन इंजेक्शन, इनमें से कोई एक इंजेक्शन माँ को लगता है और उसका एक कोर्स है, उस कोर्स को पूरा किया जाता है। हिंदुस्तान में अक्सर जो हम लोग यूज करते हैं वो डेक्सामेथासोन यूज करते हैं, क्योंकि बीटामेथासोन का वो सॉल्ट जो कि लगाया जाना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर

0: उपलब्ध नहीं है।
1: जी
0: तो ट्रीटिंग डॉक्टर माँ को एंटीनेटल स्टेरॉइड यानी डेक्सोना या डेक्सामेथासोन
1: जी
0: लगा
1: तो
0: सकते।
1: ये डॉक्टर को ही तय करना है कि किस परिस्थिति में लगाना है और कितना लगाना है।
0: अगर हाँ डॉक्टर ये उसको ये लग रहा है कि बच्चा समय से पूर्व पैदा हो जाएगा और इसको परेशानी हो सकती है, खासतौर से अगर 27 वीक्स या 34 वीक्स गर्भकाल का जो पीरियड है उसमें अगर डिलीवरी होने के चांस हैं तो ये
1: जी
0: माँ को इंजेक्शन लगाने से कई फायदे मिल जाते हैं, जिसमें कि IVH यानी इंट्राक्रानील हेमरेज कम होता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस कम होती है, और सबसे बड़ी चीज जो है हाइलाइन मेमरी डिजीज
1: जी
0: जिसको
1: जी
0: कि अब न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं उसके होने के चांस कम हो जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे श्रोताओं को ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इलाज वाली बात आपने बताई है, बड़ा सोच समझ कर कराना है। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। बात डॉक्टर साहब

0: बताइए, बड़ा सोच समझ कर कराना है। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। बात डॉक्टर साहब आज की ये है कि जो समय से पूर्व बच्चे पैदा होते हैं उनकी समस्याएं हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन सी हो सकती है, इलाज जानेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए डॉक्टर साहब, समय से पूर्व पैदा होने का क्या तात्पर्य है, और जो बच्चे समय से पूर्व पैदा हो रहे हैं उनमें किस तरह की समस्याएं होती हैं?
1: ये समय से पूर्व पैदा होने का तात्पर्य, नॉर्मल जो डिलीवरी होती है वो 37 वीक्स के बाद होती है।
0: जी जी,
1: तो अगर 37 वीक्स से पहले बच्चा पैदा हो रहा है तो वो समय से पूर्व पैदा हुआ।
0: हम अपनी बात जारी रखेंगे, एक और श्रोता लाइन पर आ गए डॉक्टर साहब, इनकी समस्या सुन लेते हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
2: मैं योगेंद्र सिंह गंगवार
0: जी,
2: CSC कुआ डांडा से बोल रहा हूँ।
0: जी, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है कि सर, जो समय से पहले के बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
0: डॉक्टर साहब प्रश्न इनका पर फिर वही है, क्या समस्याएं आ सकती हैं?
1: देखिए, समय से पूर्व जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें देखिए परेशानियां जो आती हैं वो इस वजह से आती हैं कि हमारा जो समय से पूर्व बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, जो ऑर्गन्स इतने बन जाने चाहिए थे कि, लेकिन वो समय से पूर्व बच्चा पैदा हो गया तो उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरह की बीमारियां आती हैं। जैसे कि अगर सांस में बच्चे को परेशानी होती है तो सबसे कॉमन बीमारी है जो, जैसे कि अभी मुन्नालाल जी ने पूछा था, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, जिसको कि हम न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें सर्फेक्टेंट एक सब्सटेंस होता है जो लंग्स में कम होता है, जिसकी वजह से उसके फेफड़े ठीक से काम नहीं कर पाते, तो उस सर्फेक्टेंट आप बाहर से बच्चे के फेफड़ों में डाल सकते हैं। दूसरी जो परेशानी आती है वो बच्चों की, कई बार जब बहुत कम वजन के बच्चे होते हैं तो इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने के चांस बहुत होते हैं। तीसरी जो परेशानी आती है इन बच्चों को, इनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, तो इनको सेप्सिस होने का डर बहुत ज्यादा रहता है। चौथी चीज जो है कि ये बच्चे टेम्परेचर कंट्रोल करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये मशीनों में रखे जाते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर है या कुछ जैसे और मशीन है जिनको कि ओमनी बेड या जिराफ बोलते हैं, जिसमें कि डुअल पर्पस कर सकते हैं आप, एज ए ओपन सिस्टम यूज कर सकते हैं और क्लोज सिस्टम की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो और इसी तरह से उनके आंतों की दिक्कतें आती हैं, दूध पचाने में परेशानी आती है। दूसरा एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइट, वो होने का बहुत डर रहता है। चौथी चीज, इन बच्चों को कई बार जब ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल है वो 94-95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेचुरेशन लेवल आप 88 से और 94 के बीच में मेंटेन करना चाहिए। ज्यादा ऑक्सीजन देने पर इन बच्चों को आरओपी होने का डर रहता है। आरओपी बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। आरओपी में बच्चे के जो विजन है, जो आंखों की देखने की ताकत है, वो कम हो सकती है और या देखने की ताकत जा सकती है। तो आरओपी हुआ, आईवीएच हुआ, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हुआ, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज हुई, या फिर सेप्सिस हुई, और लास्ट में ये कि कई बार इनको गुर्दे भी इनके मेच्योर नहीं होते तो गुर्दे भी कम काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है।
0: जी, और कोई प्रश्न है आपका?
1: फॉलोअप में देखिए, बच्चा अगर एक बार पैदा होने के बाद ठीक हो गया है, आपके यहाँ से छुट्टी हो रहा है, तो उससे पहले इनकी बच्चों की कुछ जांच करके ही भेजना चाहिए।
0: जी,
1: जिसमें कि जैसे कि उनके हियरिंग स्क्रीन करना चाहिए, हियरिंग स्क्रीन सुनने की क्षमता कैसी है, और दूसरी चीज इनका आरओपी चेक कराना चाहिए, आरओपी डेवलप तो नहीं हो रही है ना, और तीसरी चीज इनका वेट गेन का पैटर्न क्या है, और जब बच्चा आप डिस्चार्ज करें तो वजन इतना होना चाहिए कि बच्चा अपने आप दूध पी रहा है उसमें बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। ये ना हो कि आपने बच्चा डिस्चार्ज किया और घर जाके उसका वजन कम हो गया। और इन बच्चों के पेरेंट्स को अच्छे से हाइजीन के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। जब बच्चे को छुए तो हमेशा से हाथों को धो के किसी साबुन से या किसी सैनिटाइजर यूज करके बच्चे को छुए, और ज्यादा लोग बच्चे के कॉन्टेक्ट में ना आए, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। और तीसरी चीज ये कि अगर किसी को घर में सर्दी जुकाम खांसी बुखार है तो बच्चे से बिल्कुल दूर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन बच्चों को आप माँ का ही दूध दें, ऊपर का दूध ना दें। माँ के दूध देने पे इनको GIT इन्फेक्शन भी कम होते हैं और इनको नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस होने का डर भी कम रहता है।
0: और कोई प्रश्न है आपका? जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए डॉक्टर साहब। एक और श्रोता लाइन पर हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय दें और प्रश्न बताएं।
2: रुकुम सिंह बोल रहा हूँ
0: जी।
2: अमरीश से, और मैं CHO करते हूँ गुलाब मलिमान।
0: अच्छा,
2: डिलीवरी होती है स्वास्थ्य केंद्र है, तो वहाँ पे प्रीमेच्योर बच्चे की डिलीवरी होती है
0: जी,
2: तो मैनेज करना बहुत दिक्कत होती है, तो कैसे मैनेज

0: देखिए, जब भी कोई प्रीमेच्योर बच्चा हो तो उसके लिए एक तो ये जरूरी है कि बच्चा अगर ठंडा ना होने पाए, उसको हाइपोथर्मिया ना हो, तो उसको पैदा होने के तुरंत बाद आप उसको ड्राई कर दें, और उसका सांस कैसी है उसको ध्यान रखें। अगर उसकी सांस खराब है तो उसको जल्दी जल्दी एक ऐसे सेंटर पर रेफर करें जहाँ पे की सारी फैसिलिटीज हो, क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों को बहुत सारी की परेशानियां होती है, और जैसे कि हाइपोथर्मिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है या फिर HMD है या फिर बच्चे का दूध नहीं पी पाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए कि आप बच्चे को अच्छे से कॉटन में रैप करके, और अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे, लेकिन ऑक्सीजन देते समय ये भी ध्यान रखें कि ऑक्सीजन ज्यादा ना दी जाए, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन देने से भी इन बच्चों को नुकसान होता है। ठीक है,
1: और कुछ जानना चाहते हैं रुकुम सिंह जी?
2: हाँ सर, यही जानना था ऑक्सीजन का, अगर उसमें सिलेंडर सर हमारे पास बड़ा ही होता है।
0: नहीं, सिलेंडर बड़ा होता है वो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उनको इतना ऑक्सीजन देना है कि उनका सेचुरेशन आपको 88 और 93 या 94 तक रखना है। सेचुरेशन उनका 95 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और दूसरी तरफ उनका सेचुरेशन 88 से कम भी नहीं जाना चाहिए। तो आप पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आप उनका सेचुरेशन देखते रहिए, उस हिसाब से उनको ऑक्सीजन दीजिए, और दूसरा उनका टेम्परेचर चेक करते रहिए जिससे हाइपोथर्मिया ना हो, तीसरा उनका ब्लड शुगर चेक कर लीजिए कि हाइपोग्लाइसी में ना हो। ठीक है
1: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो अंग विकसित नहीं होते हैं, खास तौर से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले जो बच्चे के स्वास्थ्य को, वो कौन से अंग हैं जो कि पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमारे फेफड़े अच्छे से काम करें। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसको सारी ऑक्सीजन सप्लाई माँ से मिलती है, सारे न्यूट्रिशन सप्लाई माँ से मिलती है। तो बच्चा पैदा होने के बाद दो तरह की चीजों को जरूरी है कि एक तो उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाए, दूसरा उसका टेम्परेचर कंट्रोल का, और तीसरा उस बच्चे की सांस कैसी है। वो अपनी सांस उसको इस तरह से लेना चाहिए कि उसको सांस लेने में कोई किन्हाना नहीं चाहिए बच्चा, और बच्चे का सांस बहुत तेज नहीं चलनी चाहिए, बच्चा नीला नहीं पड़ना चाहिए, और बच्चे का सेचुरेशन अगर आप नाप सकें तो सेचुरेशन उसको 88 से 94 के बीच में मेंटेन करना चाहिए।
1: सेचुरेशन से क्या तात्पर्य
0: है? ये देखिए, एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन होती है जिससे कि हम ऑक्सीजन लेवल नापते हैं।
1: अच्छा,
0: और दूसरा उसमें और भी मॉनिटर में चीजें होती हैं जैसे कि हार्ट रेट कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, टेम्परेचर वाले भी मॉनिटर्स होते हैं, टेम्परेचर भी आप उनसे नाप सकते हैं, रेस्पिरेटरी रेट नाप सकते हैं, और कोई भी बच्चा जो किन्हा रहा है, जिसका तापमान कम है, उसको आप जल्दी से जल्दी ऐसे सेंटर पे रेफर करनी जहाँ पे सारी सुविधाएं इसके मिल सके।
1: जी बिल्कुल, लाइफ सपोर्ट जिसे कहा जाता है वो मिल सके। चूंकि डॉक्टर साहब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप बता रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए, लेकिन फिर भी कई बार कुछ न कुछ गलतियां हो जाती। डॉक्टर साहब, आपने ये भी बताया कि गुर्दे जिन बच्चों के पूर्णतः विकसित नहीं होते उनमें गुर्दे कमजोर ही रह जाते हैं, इसके अलावा और भी कई ऑर्गन्स के आपने नाम लिए थे, तो हम चाहेंगे हमारे श्रोता जान लें जो प्रीमेच्योर बच्चे हैं उनमें फेफड़ों के अलावा और कौन कौन से अंग हैं जो कमजोर रह जाते हैं और जिनका गलत प्रभाव बच्चों के जीवन पर आगे पड़ सकता है।
0: देखिए, प्रीमेच्योर बच्चों में एक प्रॉब्लम लंग्स की तो होती है, दूसरी जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है वो कई बार ये होता है कि बच्चे टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तीसरा यह दिक्कत आती है वो कि आपका दूध पीने में, दूध डाइजेस्ट करने में परेशानी आती है, चौथा ब्रेन के अंदर इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होने में इन चांस रहते हैं, ज्यादा IVH होने के चांस रहते हैं, और इन बच्चों में फिर कई बार आरओपी रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी देखा जाती है, सेप्सिस होने का चांस बहुत ज्यादा होते हैं, सेप्सिस मीन्स इन्फेक्शन बच्चे के शरीर में हो जाना। तो और प्रीमेच्योर बच्चों में सेप्सिस बैक्टीरियल सेप्सिस तो होती है, और कई बार फंगल सेप्सिस होने का भी बहुत डर रहता है। और प्रीमेच्योर बच्चों में फिर बाद में आपको फॉलोअप भी करना होता है कि उनका इंटैक्ट जो सर्वाइवल है वो, यानी जैसे कि किसी अंग में कोई कमी तो नहीं आ गई है, तो वो चीजों के लिए आपको लगातार मॉनिटरिंग करनी होती है, देखना होता है कि भविष्य में आने वाले समय में कि बच्चे के ब्रेन पे कोई बुरा असर तो नहीं आया, आंखों पे तो कोई बुरा असर नहीं आया, कानों पे तो कोई बुरा असर नहीं आया, तो उन बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का अच्छे से फॉलोअप करना होता है, बच्चे का वेट गेन कैसा हो रहा है, बच्चे के माइलस्टोन्स कैसे हैं, बच्चे ने कब गर्दन संभालना शुरू किया, कब बच्चे ने बैठना शुरू किया, कब बच्चे ने चलना शुरू किया, कब बच्चे ने बोलना शुरू किया, उन सब चीजों का ध्यान रखना होता है। बच्चे का वेट गेन का पैटर्न कितना है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब बच्चा 5 से 6 महीने का होता है तो उसका वजन दूना हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और जब बच्चा 1 साल का होता है वजन 3 गुना हो जाता है। तो वो मॉनिटरिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ती है, और फिर आपको माइलस्टोन्स देखने पड़ते हैं, और समय समय पर आपको हियरिंग देखनी पड़ती है, और हियरिंग मतलब उसका सुनने की क्षमता किस तरह से प्रभावित तो नहीं हुई है, और आंखों में अगर ऑक्सीजन

0: ये प्रीमेच्योर बच्चों को तो आंखों की जांच होना बहुत जरूरी है कि आरओपी होना, और इन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना बहुत जरूरी है। और इन बच्चों को जो दूध देना चाहिए वो सिर्फ माँ का ही दूध देना चाहिए, क्योंकि ऊपर दूध देने में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी इन्फेक्शन होने का डर रहता है।
1: जी, डॉक्टर साहब, ये जो समस्याएं आपने बताई हैं, इन समस्याओं के नियंत्रण के लिए खास तरह की मशीनें भी जरूर हैं आज, चूंकि चिकित्सा विज्ञान में बहुत कुछ नया हो चुका है, तो ये भी बताइएगा किस तरह की मशीनों की ऐसे बच्चों के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ती है, और वेंटिलेटर का कहाँ कहाँ उपयोग है, चूंकि वेंटिलेटर की बात हमारे कार्यक्रम में कई बार कही जाती है कि बच्चों के इलाज में वेंटिलेटर की जरूरत कब है, तो क्या बताएंगे?
0: देखिए, प्रीमेच्योर बच्चों का जो हम देखभाल शुरू करते हैं तो सबसे पहले टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद उसको अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करते समय ये ध्यान रखें कि बच्चा ठंडा ना हो जाए। फिर उसको हम या तो इंक्यूबेटर जो क्लोज सिस्टम होता है उसमें रखते हैं अगर बच्चे का वजन बहुत कम है, खासतौर से अगर बच्चे का 1.5 किलो से कम वजन है, या फिर दूसरे सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम लेडेंट बार्मर्स बोलते हैं इनको, उनको बच्चे अंडर रख के उनका टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, उनका हमें सांस का उनके ऑक्सीजन लेवल को लगातार मॉनिटर करना होता है। तीसरा, अगर उनको सांस बच्चे का रोक रहा है या बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बच्चा किना रहा है, अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर रहा, तो इन बच्चों को कई बार सर्फेक्टेंट देने के साथ में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। फिर इन बच्चों को आपको लगातार ये भी मॉनिटरिंग करना होता है कि बच्चे का यूरिन कितना हो रहा है, पेशाब पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर जब आप फीड देना शुरू करते हैं तो फीड देते समय आपको ये देखना पड़ता है कि बच्चे का फीड डाइजेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चे को हाथों में इन्फेक्शन या फिर नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस की परेशानी तो नहीं आ रही है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, इन सब के लिए जो मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो किस स्तर की मशीनें होती हैं?
0: देखिए, मशीनें जो हैं न्यूनेट्स के लिए, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के लिए जो मशीनें यूज की जाती हैं, वो एक तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और डेडिकेटेड मशीनें होती हैं।
1: डॉक्टर साहब अपनी बात जारी रखेंगे, एक और श्रोता लाइन पर हैं, इनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो रेडियो जी, रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: सर, मैं मिलक से बोल रहा हूँ।
0: बताइए
2: सर, मेरे बच्चे के लिए एक दौड़ा पड़ा था और ये चलते चलते सर ये थोड़े दिनों के बाद में चलते चलते अपने आप गिरता है।
0: कितना बड़ा बच्चा है आपका ये?
2: 7 साल का।
1: क्योंकि बात तो डॉक्टर प्रीमेच्योर बच्चों की हो रही है, लेकिन फिर भी इनकी समस्या शायद इसी से जुड़ी हुई।
0: बच्चे को पहली बार दौरा कब पड़ा था?
2: ये सर होगा लगभग 3 महीने करीब होगा सर।
0: अच्छा, इसको बचपन में कोई अभी कोई परेशानी तो नहीं हुई थी पैदा होने के बाद?
2: नहीं सर, कोई परेशानी भी नहीं हुई थी।
0: कभी सिर में चोट वगैरह लगी?
2: सर मेरे सामने तो कई सर।
0: अच्छा, घर में किसी और को दौरे तो नहीं पड़ते?
2: सर मेरे बहू के लिए पड़ते थे।
0: अच्छा, बच्चे तो देखिए आप, बच्चे की माँ के साथ भी दौरे की समस्या, तो आपके बच्चे को जैसे आप बता रहे हैं दौरे पड़ते हैं और ये एपिलेप्सी यानी मिर्गी की तकलीफ है, और तो आप इसमें कुछ जांचें करा के ये तय कर सकते हैं हम लोग कि इसको सेकेंडरी एपिलेप्सी है प्राइमरी एपिलेप्सी है, जिसमें कि जैसे ब्रेन की जांच है, MRI ब्रेन करवा सकते हैं, और जिससे कि कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, कोई अंदर किसी तरह की कोई गांठ है वो सिस्ट वगैरह तो नहीं है। दूसरी चीज ये कि कुछ बाकी आपको इनको दौरे की दवाई लगातार देनी पड़ेगी जिससे कि दौरे ना पड़े। तीसरी
2: चीज, सर ये चलते चलते अपने आप गिर भी जाता है सर, ये अपने आप गिर जाता है?
0: ये जो गिर जाता है ये भी हो सकता है हल्का दौरे का असर होता हो उस समय गिर जाते हो। कई बार जब दौरा हमें मालूम पड़ता है तब तो हम देख लेते हैं कि दौरा है, अगर दौरे का बहुत हल्का सा असर हुआ तो कई बार बच्चे गिर जाते हैं या बच्चा बैठा हुआ तो लुढ़क जाता है बच्चा, तो वो एक तरह से हल्का दौरे का संकेत है।
2: अच्छा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए आपका। डॉक्टर साहब, मशीनों की बात हमने की, बीमारियों के विषय में आपने बताया, और विशेष तौर से जो समय से पूर्व पैदा हुए बच्चे हैं उनकी गंभीर बीमारियों की, गंभीर स्थितियों के विषय में आपने जानकारी दी। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक जरूर पहुंचनी चाहिए, इन सभी समस्याओं के उपचार में, इलाज में जिन मशीनों की जरूरत होती है, क्या वो मशीनें बरेली या आसपास के क्षेत्र में कहीं उपलब्ध हैं?
0: जी बिल्कुल, एक इंटेंसिव केयर देने के लिए न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है जिसपे की डिफरेंट मशीन इस्तेमाल की जाती है, जैसे की इंक्यूबेटर्स हैं, वार्मर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, या फिर CPAP मशीन हैं, या फिर HFNC है, और आपका फिर को इन सब चीजों को देखने के लिए कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसे चल रही है, आपको फिर और जो मशीन है मॉनिटरिंग है, मॉनिटर्स हैं, और फिर पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, फिर आपका ABG मशीन है, आर्टेरियो ब्लड गैस एनालिसिस है, या फिर बेड साइड आपको इको करने करने पड़ते हैं या बेड साइड आपको अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है लंग्स का या ब्रेन का, जिससे कि आपको बच्चे के बारे में पता चलता रहे। दूसरी चीज ये कि हर माता पिता को ये जानना जरूरी कि कोई भी नवजात शिशु है उसमें खतरनाक लक्षण कौन से हैं। और तीसरी चीज, प्रीमेच्योर बच्चे जो होते हैं इनमें हमने ये सब बातें तो की है, साथ में इनको काफी एक और समस्या होती है वो न्यूनेटल जॉन्डिस, क्योंकि इन बच्चों को पीलिया होने के चांस भी ज्यादा होते हैं।

0: तीसरे दिन चौथे दिन अक्सर पीलिया हो ही आता है,
1: जी
0: तो उसको तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, लेकिन एक पीलिया एक लिमिट से ज्यादा होता है तो ब्रेन को नुकसान करता
1: जी
0: है।
1: जी बिल्कुल
0: तो हमें ये भी चेक करना होता है कि पीलिया कितना है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा पीलिया हो रहा है तो उसको फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। अगर पीलिया बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको जो थेरेपी करते हैं वो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब पूरा ब्लड बच्चे का बदला जाता है।
1: पूरा खून बदलना पड़ता है
0: जी
1: डॉक्टर
0: जी
1: साहब।
0: जी तो जो मशीनें हैं वो आपको बेड साइड इको है, बेड साइड आपका अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, आरटीओ ब्लड गैस एनालिसिस है, वार्मर्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, और आपको जब नर्सरी एक अच्छी स्टैंडर्ड की नर्सरी चलानी होती है तो जो बच्चे पैदा होने के तुरंत बाद नहीं रोते हैं, जिसको हम
1: जी
0: लोग हाइपोक्सिक इश्मिक इंजरी कहते हैं, होती है उस बर्थ एस्फिक्सिया बर्थ एनोक्सिया के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो लेटेस्ट थेरेपी है वो है होल बॉडी हाइपोथर्मिया या थेरेपेटिक हाइपोथर्मिया।
1: जी
0: तो उसके लिए भी मशीन उपलब्ध है, हमारे शहर में भी उपलब्ध है, मेरे यहाँ भी उपलब्ध है,
1: जी जी
0: तो वो करना है। और कई बार कुछ बच्चों को, जो बच्चे गंदा पानी सांस में ले लेते हैं और देर से रोते हैं, उनको एक और कंडीशन बहुत कॉमन होती है, पीपीएचएन जिसको कहते हैं, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन।
1: जी
0: तो उसके लिए जो दवाइयां भी दी जाती हैं, दवाइयों से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर एक थेरेपी है नाइट्रिक ऑक्साइड थेरेपी।
1: जी जी
0: तो नाइट्रिक ऑक्साइड देने की भी सुविधा मेरे अस्पताल में उपलब्ध है
1: जी
0: और वो कभी कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, चूंकि समय हमारे कार्यक्रम का सीमित है और अभी भी बहुत से हमारे श्रोता ऐसे हैं जिनकी शायद समस्याएं हम तक नहीं पहुंच पाई हैं, जिनकी कॉल हम तक नहीं पहुंच पाई किसी वजह से, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे, अगर समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की जो समस्याएं आपने बताई हैं, जो दिक्कतें बताई हैं, उनका समय पर निदान ना हो, समय पर इलाज ना हो, तो उन बच्चों का आगे का जीवन कितना, किस तरह प्रभावित हो सकता है?
0: देखिए, अगर समय से इलाज ना हो तो दो चीजें,
1: जी
0: एक तो आगे का जीवन तो अफेक्टेड होगा ही होगा, उस समय जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें बच्चे का जीवन खतरे में अब हो सकता है,
1: जी
0: बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाता है अगर बच्चा हम लोगों के पास लेट पहुंचता है। दूसरी चीज, उसका समय से और जो इलाज होना चाहिए वो इलाज मिलना चाहिए उसको,
1: जी
0: है ना। ऐसे सेंटर पे इलाज होना चाहिए जहाँ पे देखभाल उचित हो, दूसरी मशीनें उपलब्ध हो, तीसरी चीज उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, है
1: बिल्कुल
0: ना। किसी भी नवजात शिशु का इलाज करना वो नहीं है कि आप ऑक्सीजन लगा दीजिए और उसको वार्मर में लिटा दीजिए, ना। उसकी प्रॉपर जांच होना, उसके मॉनिटरिंग होना, और उसके ऑक्सीजन लेवल क्या चल रहा है, उसका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है, उसका आउटपुट कितना हो रहा है, उसका हार्ट रेट क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का क्या स्टेटस है, वो सब चीजें मेंटेन करना जरूरी है, उनको मॉनिटर करना जरूरी है।
1: जी जी
0: तो ये तो हुआ एक्यूट स्टेज में। जब अगर बच्चा आपने उस समय बचा लिया
1: जी
0: तो बाद में जो आपको देखना हुआ होता है कि हमारे बच्चे में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या कोई कमी ना रह जाए,
1: अच्छा
0: तो उस कमी के लिए भी आपको मॉनिटर करना होता है और आपको समय समय पर देखना पड़ता है। तो बाद में जो कमी होने का डर रहता है उसमें सबसे बड़ी एक जो कमी है वो है सेरेब्रल पाल्सी होने का डर,
1: अच्छा
0: जिसको कि आम भाषा में कह सकते हैं कि मानसिक रूप से बच्चा कमजोर हो जाना
1: जी
0: या शारीरिक रूप से बच्चे में कुछ अपंगता आ जाना।
1: जी जी
0: तो फिर इन अगर इस तरह से कुछ होता है तो फिर बच्चे देर से बैठते हैं, देर से बोलते हैं, देर से चलते हैं, और उनका जो शारीरिक और मानसिक जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। कई बार बच्चे पढ़ने लिखने में अक्षम होते हैं, इनको कई बार बाद में दौरे भी पड़ते हैं, और इन बच्चों को फिर पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है, माँ बाप उसमें लगातार फंसे रहते हैं।
1: जी जी जी तो जरूरी है श्रोताओं कि समय से पूर्व बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी अगर कोई भी गंभीर समस्या है तो उनका उचित समय पर, उचित तरीके से, उचित स्थान पर और एक अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ के निर्देशन में इलाज हो, तभी बच्चे और उनका जीवन स्वस्थ रह पाएगा। डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर एवं अन्य मशीनों की भूमिका के विषय में, उपयोगिता के विषय में विस्तार से जानकारी दी। आपका स्टूडियो में आने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक
3: गंगवार हॉस्पिटल, निकट महिला थाना, चौकी चौराहा, बरेली।
4: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा,
3: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी,
4: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड,
3: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप, वेंटिलेटर, HFNC और ईयर वो मशीनें,
5: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए बिना खून निकाले पीलिया की जाँच,
3: खास तरह के वेंटिलेटर, HFO ऑक्सीलेटर, थेरेप्यूटिक हाइपोथर्मिया बाय क्रिटिकूल,
4: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM, बेडसाइड इको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा,
3: साथ ही बच्चों में पीलिया, सेप्टिक इन्फेक्शन, निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक चैरिटेबल

0: ओपीडी
1: बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
2: गंगवार हॉस्पिटल
1: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
4: अभी आप सुन रहे थे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन 100.4 FM पर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। आगे के कार्यक्रमों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
5: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में आपको सुनवाते हैं एक वार्ता जिसका विषय है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर। वार्ताकार हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान।
6: हजारी प्रसाद द्विवेदी का विशद और पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान उनकी पारदर्शी जीवन दृष्टि का द्योतक है। द्विवेदी जी के साहित्य में किसी राष्ट्र के विकास की तलाश उसके सामाजिक जीवन की अनंत संभावनाओं में की गई है। आचार्य द्विवेदी का सामाजिक दृष्टिकोण राष्ट्रीय संदर्भ में कितना विशद है, अनामदास का पोथा उपन्यास में देखने को मिलता है। उन्होंने राष्ट्रीय संदर्भ में बाणभट्ट की आत्मकथा तथा चारु चंद्र लेख के माध्यम से भारत की कलात्मक संस्कृतियों की पुनर्रचना की है। बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य द्विवेदी का प्रथम उपन्यास है जिसकी रचना 20वीं शताब्दी के 5वें दशक के मध्य की गई है। यह उपन्यास उस समय रचा गया जिस समय भारत में उग्र रूप में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। जैसे सभा को संबोधित करते हुए महामाया का यह कहना, आर्य सभापति, मैं सभा को संबोधित करके दो चार वाक्य बोलना चाहती हूँ और एक लंबा भाषण देना इस बात का ही द्योतक है कि भारत में प्रजातंत्र और वाक स्वातंत्र को बहाल करना पहला उद्देश्य है। वह कहती है, अमृत के पुत्रों, मृत्यु का भय माया है, राजा से भय दुर्बल चित्त का विकल्प है, प्रजा ने राजा की सृष्टि की है, न्याय के लिए प्राण देना सीखो, सत्य के लिए प्राण देना सीखो, धर्म के लिए प्राण देना सीखो। अतएव यह कथन सामंती और औपनिवेशिकता के विरोध स्वरूप है तथा स्वच्छंद जनतांत्रिक चेतना को ही व्यक्त करता है। इसी प्रकार तिलक के स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन की याद दिलाते हुए भी उसने कहा कि यदि तुम नहीं समझो कि न्याय प्राप्ति मनुष्य का धर्मसिद्ध अधिकार है और उसे न पाना अधर्म है तो भारतवर्ष का भविष्य अंधकार से आच्छन्न है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के शिरोमणि लेखक हैं। भारत के इतिहास, समाज, धर्म और जातियों की चर्चा तथा भारतीय संस्कृति का बोध उनके निबंधों की रीढ़ है। यद्यपि राष्ट्रीय संदर्भ में उनके निबंधों की चर्चा करें तो सभी निबंधों में राष्ट्र, भाषा, राष्ट्रीयता मुखरित होती है और स्थान स्थान पर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके निबंधों के अधिकांश शीर्षक ही उनके राष्ट्र मर्मज्ञ होने का संकेत करते हैं। उनके कुछ निबंधों के शीर्षक देखिए, जैसे राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली, जनगण मन अधिनायक है, अंग्रेजी का व्यामोह, हिंदी की समृद्धि, भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति, लोकतंत्र और भाषा, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक शिव, पुरानी पोथियां, हिंदू संस्कृति के अध्ययन के उपादान, भारतीय संस्कृति की देन, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, प्राचीन भारत में मदनोत्सव, भारत में द्यूत क्रीड़ा, मेरी जन्मभूमि, वंदे मातरम, भारत की समन्वय साधना, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, भारतीय साहित्य का मेरुदंड, भारतीय संस्कृति, भारतीय मेले, भारतीय खगोल विज्ञान की भूमिका। इसी प्रकार भारतवर्ष की मिट्टी का प्रभाव उनके कुछ और निबंधों में देखने को मिलता है, जिनमें क्या निराश हुआ जाए, प्रायश्चित की घड़ी, गतिशील चिंतन, सौंदर्य सृष्टि में प्रकृति की सहायता, यहाँ क्या निराश हुआ जाए निबंध में द्विवेदी जी ने भारतीय समाज के धैर्यवान चरित्र को उजागर करते हुए कहा, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। इन्हें सदा संयम

0: के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। वे अपने इस निबंध में निराशाजनक वातावरण के विपरीत भारत की महानता के प्रति दृढ़ और स्थिर हैं। वे कहते हैं, यही क्या भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? विवेकानंद और रामतीर्थ का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत के गुहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपने का भारत है और रहेगा। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों न दिखाई दे रही हो, नीचे शांत अचंचल गांभीर्य में अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है। भारतवर्ष को समझने के लिए आचार्य द्विवेदी ने प्रायश्चित की घड़ी निबंध रचा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष क्या है। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भारतवर्ष उन करोड़ों दलित और मूक जनता से अभिन्न है जिन्हें छूने में भी पाप अनुभव किया जाता है। इनकी संख्या कम नहीं है। वे आगे यह भी कहते हैं कि मनुष्य जब मनुष्य समझा जाएगा, उस दिन युग युग के संचित संस्कारों को बड़ी ठेस लगेगी, भयंकर प्रतिक्रिया होगी। और यदि उस महाआघात को सहने योग्य तप और स्वाध्याय हमने अभी नहीं संचय कर लिया तो इस गरीब देश का क्या होगा, सो नहीं कहा जा सकता। द्विवेदी जी यह भी कहते हैं कि हम आज भी काल्पनिक भारत माता का जय निनाद करते जा रहे हैं। भारत माता वस्तुतः क्या है, यह समझने की चेष्टा बहुत कम हो रही है। पूर्व और पश्चिम में जिस प्रकार की जन जागृति हो रही है, उसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत माता जिस दिन अपने कोटि कोटि दलित हीन निरन निर्वस्त्र बालकों को लेकर जाग पड़ेगी, उस दिन की हालत कल्पना के बाहर होगी। उस दिन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। गतिशील चिंतन में द्विवेदी जी ने लिखा है, भारतवर्ष उपयुक्त रास्ते पर सारथी के अनुरोध पर फिर रथारूढ़ होते हुए मैंने सोचा। हजार हजार जाति और उपजातियों में विभक्त शत शत साधु संप्रदायों द्वारा जर्जरी कृत विविध आचार परंपरा का शत छिद्र कलश भारतवर्ष, यही क्या सत्य है? या विराट मानव महासमुद्र भारतवर्ष, जहां आर्य और अनार्य, शक और हूं, चैनिक और तुरुष्क, मुगल और पठान एक दिन दृप्त वीर्य होकर आए और सब भूलकर एक हो रहे। भारतवर्ष का अतीत उसके साथ है, वर्तमान उसके आगे है और वह सुदूर उदयाचल के पास सुवर्ण ज्योति झिलमिला रही है। यही उसके तेजोमय भविष्य की निशानी है। इसका प्रथम प्रकाश मेरे इस दुग्ध ध्वल गांधी किरीट पर ही पड़ रहा है। मेरा रथ अब गंतव्य पर आ गया। राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व निबंध में द्विवेदी जी ने चीन की गीदड़ भभकियों को चुनौती देते हुए लिखा है। शायद आक्रांता यह समझ रहा था कि उसकी गीदड़ भभकियों से डरकर हम घुटने टेक देंगे और उसके इशारे पर चलने को लाचार हो जाएंगे। द्विवेदी जी मानवता का संदेश देते हुए कहते हैं, लड़ाई से आज तक कभी कोई समस्या सुलझी नहीं है, आगे भी नहीं सुलझेगी, यह ध्रुव सत्य है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना करते हुए अपने निबंधों, उपन्यासों तथा अन्य सभी रचनाओं में इस मंतव्य को उजागर किया है। राष्ट्रीय संकट और हमारा दायित्व में वे स्पष्ट कहते हैं, हमें उन सब प्रयत्नों के संवर्धन का संकल्प करना होगा जो देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाते हैं। इस समय हमें संकोचनशील मनोवृत्ति की नहीं, विकसनशील मनीषा की आवश्यकता है। उन्होंने अपने निबंध संकीर्णताओं पर हथौड़े की चोट में भी यह बात स्पष्ट की है कि हमारा भारतवर्ष मानवता का प्रबल समर्थक है, जिसका दूसरे देश लोहा मानते हैं। उन्होंने लिखा है, भारतवर्ष की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ी है, हमारा देश शांति और मानवता का प्रबल समर्थक सिद्ध हुआ है, संघर्ष और कटुता के वातावरण को शांत करने में हमारा सहयोग सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके लिए हमें दंड भी भोगना पड़ रहा है, पर ऊंचे आदर्श के लिए ऊंचा दाम देना ही पड़ता है।
1: हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर अब्दुल रहमान। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में पेश खिदमत है गुलशन भारती की आवाज में चंद गजलें। सबसे पहले आइए सुनते हैं फैज अहमद फैज का कलाम गुलशन भारती की।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कलाकार गुलशन भारती की आवाज में गजलें। अब पेश खिदमत है फिराक गोरख।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे गुलशन भारती की आवाज में फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी और अल्लामा इकबाल का कलाम। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म संजोग से।

0: भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
1: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करेंगे।

0: मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के साथ जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय

में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रोग्राम आपके

पराया धन, ये था फिल्म का नाम। किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज थी। लीजिए आपके लिए मैं अगली पेशकश। फिल्म वक्त से ये गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, रवि की धुन है और साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

0: दीवाना हुआ बादल। कश्मीर की कली से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, ओ पी नैयर का संगीत।
1: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारतीय

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।

दिल्ली में एक प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ न कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक, अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई

नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर।

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर वन ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर टू में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म

को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनके मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश

0: द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़कर के खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं, जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि यह लड़का यह खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DOPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिया में, जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहाँ पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी ज्ञान नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है, एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है, नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है, उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है
2: जी।
1: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में?
2: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहाँ तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ, मनुज हो तो पौर उस अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहाँ पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा

0: रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं, कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़, आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है, इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहाँ पर खिलाड़ी था राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था, और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरेगांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्हें नेशनल में फर्स्ट किया, और अर्जुन पुरस्कार जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं, और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूं कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, यही बगल पचराव गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र ही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की है, सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी, बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला, और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल, और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
1: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
0: जी जी,
1: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशतता है, लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, 2-4-5 उदाहरण आपने दिए, इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के समय में।
0: जी बिल्कुल,
1: तो बढ़ाने की आवश्यकता है। वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का खास करके खेलों में वो उज्ज्वल हो।
0: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा, उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम ही लोग छोटे थे, गांव जाते दौड़ने वाले आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है, पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में।

0: ले जाकर के सुदूर अंचलों में, ग्राम भारत की 80% जनता गांव में रहती। अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है। और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर के अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे को लीजिए, पोल वाल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी जितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करें। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है
1: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेंद्र सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPA डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना, अभी तो मैं खिलाड़ी ही बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, चूंकि मैं पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
3: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
4: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई, मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इस इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती हैं। वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी से ट्रीट करते रहते हैं और इनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके

0: बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
0: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
0: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना, अगर सामान्य चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रोताओं, बातचीत के इस सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
0: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
0: मैडम, ये बता दें कि एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
0: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
0: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, या जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
0: जी हाँ, बच्चे मैडम यह कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
0: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मेनू तैयार वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मेनू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस आ सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके, हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है?
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जम्पर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है, लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, विशेष कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत

0: भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं। एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
1: मैम बहुत अच्छा है आगे, क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
0: एक अकेला ही काफी
1: है। और शुरुआत हो गई है, अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग आर्चरी रेसलिंग एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है। और हर एक गाँव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में। जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलो कूदो हो गए खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलो कूदो हो गए तो लाजवाब। तो खेल का फ्यूचर अच्छा है मैम। अभी ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
0: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के BHU कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
1: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती है तो महिलाएं अब आगे हो गई हैं पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
0: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सृष्टि माथुर का राग जोग में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सृष्टि माथुर का राग जोग में ख्याल गायन। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं।

0: है। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और ओडिशा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
2: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era